印度日语广播电台，听众朋友们，我们现在播送阿萨姆邦的民间歌曲，请收听。

因此，这里广播电台听众朋友们，我们现在播送 Ustad Bismillah Khan 的《请收听》。

因为我们现在播送 Indie 电影歌曲，请收听。

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिव जी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिव जी ने उन्हें अपनी बाई ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। इसके अंतर्गत आज आपने सुना बालकांड भाग 43। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। निर्वाचनायोगेन पश्चिमबंगालस्य 15 मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदान

डॉलर पढ़ाता हूँ, दुआ रिबू दुआ पुलु लिमा सम्पै दुआ पुलु सम्पै दुआ रिबु दुआ पुलु नाम नाइक दारी लेबी दारी दिलापर मिलार पढ़ाता हूँ, दुआ रिबु दुआ पुलु एम्पात सम्पै दुआ पुलु दुआ रिबु दुआ पुलु नाम कदुआ पिहाक मनी रोटी पेरान कमिते सबागाए प्लेटफॉर्म कुंची उन्तुक मलियले सायकान मसाला प्रदागागान दान मम प्रोमोसी कान कतर लिबाता आन इकोनोमी पम बिचारा आन जुगा मन चाकू पनियली सायान प्रदागागान दलाम माता उंग लोकल विसा जांका पंजांग यंग लेबी मुडा उन्तुक पंगुसाहा इंडिया दान केरजा सामार रेगुलासी यंग लेबी कुआ दी बिडांग फार्मासी डिस्कुसी मलुआस क कोलोब्रासी दी बिडांग कसाहतान आयुष पंडिरिकान पंब बुआतान कपाल दान पर तांबांगान तरमासुक पंगंबांगान सेक्टोर बातु परमाता दान इनिशियाटिव पन इंगातान कतर अम्पिलान पेरांग ईरान ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप तिल्लाह मनोलाक प्रपोजल तरबारू ईरान उन्तुक मंगा कीरी कॉन्फ्लिक्ट यंग सेडंग बरलांगसुंग मनिम्बुल कान करांगुआन तेंतांग प्रोस्पेक्ट पन लेलिसायन मलालुई नेगोसियासी दन मंपर इंगातान रिसिको एक्स क्लासी लेबी लांजुत ईरान मंगाजुत कान तावारान रेविसिनिया मलालुई मेडिएटर दंगान मीडिया पमेरिंता मंगोन फार्मासी मनिये आहतान तरसबूत दिया जुगा मंगाम्बार कान कम इम्पान ईरान सबागाय सांगा तीरा तरको ओर्दिनासी मंदा मन मनांदा कान बरलांजुतनिया क तीडा परचाया आन अंतारा क दुआ विलाह पिहा मीडिया यंग तरकाई दंगान पमिरिंता ईरान तरमासु कांतोर बरिता फार्स मलापुर कान बहवा क पमिम्पिनान नेगारा इतुतता सपुनु निया तरलिबात दलाम मंगावासी दान मन अंगापी सब स्पेकुलासी तंतांग क तिंडा स्टाबलीना इंटरनल कबू कबुंतुआन डिप्लोमैटिक इनी तरजारी दी तेंगा मन इंका निया ककारासान दी टेम्पात लाइन दी आसिया बरात दी लेबनान सेरांगान इजराइल दी लापुरकान तेला मनेवासकान लेबी दारी तिगा पुलु औरंग दलाम सातु हारी तरमासुक दुआ अनक मनिम बुलकान क हवातिरान अतास पेलंगारान गंजाता आन संजाता यंग दी में दियासी अमेरिका सरिकात यान दी से पकाती बुलान लालू सरंगन मन मंगहंताम इंफ्रास्ट्रक्चर सिपिल दिकोता तियरे दी सलातान समंतारा पर्यंता इवक्वासी दी का लुआरकान उन्तुक बबरापा कोटा दी सपंजांग पर बातासान हिजबुल्लाह तेला मरंगापी दंगान सरंगान बालासान तरमासुक सरंगान पेशावत ताक बरावाक यंग मला मलुकाई तंतारा इजराइल दी उतारा कॉन्फ्लिक्ट यंग लेबी लुआस दी लेबनान की नीतला मनेवास कान लेबी दारी दुआरिबु ओरंग दान मनियबाप कान लेबी दारी सातु जुता ओरंग मंगुंसी गोयल तंतांग चेपा इंडिया उई मंत्री प्रदागान दान इंडस्ट्री यूनी इंडिया पीयूष गोयल मंगाता कान बहवा परजांजियान कमित्रान इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया यूएई यंग बरलाकू सलामा एम्पत ताहुन तेला मनचिप्ताकान प लुआंग ट्रांसफॉर्मेटिव बागी पतानी ऊ एम के एम दान बिजनेस इंडिया दलाम उंगाहान मीडिया सोशियल दिया मंचातात बहवा परदागागान बरांग बिलित्राल अंतरा इंडिया दान उनी इमीरात अरब तेला मलमपुई $100 मिलियन समंतारा परदागागान जासा जुगा मनिंकात सचारास्ता बिल मंबू का पासार बारू दन मनिंकात कान पंचिप्ता आन निलाई दिया मनंबाह कान बहवा सेक्टर उतामा सप्रति परतामा दन पर ही आसान बारंग बारंग टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक दन परतानयान मंगालामी पन इंकातान यंग सिग्निफिकान गोयल जुगा मनियोरोटी पन इंकातान आरुस मासुक एफडीई यूईए दन इन्वेस्टासी लुआर नगेरी इंडिया मनियबुतकान सबागा इतांडा समाकिन दलामनिया हुबुंगान इकोनॉमी अंतारा कदुआ नेगारा पार्लियामेंट यूरोपा पार्लियामेंट यूरोपा तेला मंगुतुक हुकुम पर सातवान एथनिस बारू चाइना मम पर इंगातान बहवा पार्लियामेंट यूरोपा तेला मंगेचाम उंडांग उंडांग पर सातवान एथनिस बारू तियोंकोक मम पर इंगातान बहवा उंडांग उंडांग तरसबूत मरूपाकान उपाया सिस्टेमातिस उन्तुक मन
menggikis identitas budaya, agama, dan bahasa masyarakat.

0: Estafet Atlantic Dunia 2026 India Mangrim Squad 2021 Atlet untuk bertanding di 5 nomor estafet pada World Athletics Relays 2026 di Gaborone Botswana hingga 3 Mei tanpa ikut di 4x400 putri ajang ini menampilkan 6 nomor estafet dan menjadi edisi pertama yang digelar di Afrika. 6 tim terbaik di nomor estafet campuran akan lolos ke World Athletics Ultimate Championship di Budapest. Demikian tadi warta berita, berikutnya muzik instrumentalia.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है रोहित प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग देश. विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. Now listen to a flute recital in Raag Desh by Rohit Prasanna. The Vilambit Gat is set to Ek Taal and Drut Gat is set to Teen Taal.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश

0: पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और

0: प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग चेलिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोकसत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning. I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of two assembly constituencies in West Bengal. Field operations for houseless

0: है जिन्हें वो कबूल नहीं कर सकते। बैडमिंटन में डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की टीम फ्रांस के साथ खेलेगी। और फुटबॉल में भारतीय ख्वातीन की टीम चीन में 21 साल बाद 17 साल तक की उम्र के ख्वातीन के AFC एशियाई कप में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए तैयार है। खबरें तफसील से। चुनाव कमीशन ने मगरी बंगाल के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग के अहकाम जारी किए हैं। रियासत में मगराहट पश्चिम असेंबली हलके के 11 पोलिंग स्टेशनों और डायमंड हार्बर असेंबली हलके के 4 पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। चुनाव कमीशन ने कहा है कि यह फैसला मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान और मुशाहिदीन की जानिब से मौसूल रिपोर्टों की बुनियाद पर किया गया है। मगरी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में इन पोलिंग स्टेशनों पर बुध के रोज वोट डाले गए थे। रिपोर्टों की बुनियाद पर कमीशन ने इन पोलिंग स्टेशनों पर होने वाले चुनाव का कल अदम करार दिया। कमीशन ने इस सिलसिले में मगरी बंगाल के आला चुनाव अफसर को तहरीर भेजी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मगरी बंगाल के 2 हलकों के 15 पोलिंग मराकज पर दोबारा पोलिंग का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया। चुनाव कमीशन ने बेजाबतगियों की इतलात मिलने के बाद इन मराकज पर दोबारा पोलिंग के अहकाम जारी किए थे। इस दौरान एक और वाकये में सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की कोलकाता हाईकोर्ट के खिलाफ अपील की फौरी सुनवाई के लिए खसूसी बेंच कायम की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने गिनती के मराकज पर सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के जरिए गिनती कराए जाने का हुक्म दिया था। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच आज सुबह 10:30 पर इस मामले की सुनवाई करेगी। वोटों की गिनती का अमल पीर को किया जाएगा। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने मामले की फौरी समाअत की दरख्वास्त की थी। जुमेरात को कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की अर्जदाश्त को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि अदालत गिनती के अमल की तकरूरी के बारे में इंतखाबी कमीशन के फैसले में दखलअंदाजी नहीं कर सकती। इसके जवाब में पार्टी ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कल छुट्टी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की बिला ताखीर सुनवाई को यकीनी बनाने के लिए एक खसूसी बेंच तशकील दी। कोलकाता से संदीपोन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल से मकानात की फहरिस्तबंदी और मकानात की गिनती के अमल के लिए फील्ड ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। इन रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों में अजखुद शुमारी के अमल के मुकर्रा 15 दिन मुकम्मल होने के बाद ये काम शुरू हुआ। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: उमूर दाखिला की वजारत के मुताबिक यह अमल इस माह की 30 तारीख तक जारी रहेगा। इस दौरान तरबियत याफ्ता अमला घर घर जाकर आदाद शुमार इकट्ठा करेगा। मर्दमशुमारी 2027 के तहत अजखुद शुमारी की सहूलत दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में कल से शुरू हो गई। ये ऑनलाइन सहूलत इस माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके बाद 16 मई से 14 जून के और इन रियासतों और मरकज के दरमियान के जेर इंतजाम इलाकों में घर घर जाकर मकानात की फहरिस्तबंदी का अमल अंजाम दिया जाएगा। मर्दमशुमारी 2027 के लिए अपनाए गए डिजिटल तरीके के हिस्से के तौर पर अब तक तकरीबन 82 लाख घरों ने सरकारी पोर्टल SE.census.gov.in के जरिए खुद शुमारी की सहूलत से इस्तेफादा किया है। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने खाम तेल के वसीले की बुनियाद को 41 मुल्कों तक तौसी दे दी है। पहले इन मुल्कों की तादाद 27 थी। ये तौसी तवानाई के आलमी बहरान के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। जनूबी गुजरात में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तवील मुद्दती मनसूबाबंदी ने बहरान से निमटने में बुनियादी किरदार अदा किया है। घरेलू पैदावार में इजाफा करने के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि रिफाइनरीज में LPG की ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और हमने घरेलू पैदावार में 60% तक इजाफा कर दिया है। ये पैदावार पहले 36,000 मीट्रिक टन रोजाना थी, जबकि अब यह पैदावार 54,000 मीट्रिक टन रोजाना हो गई है। जनाब पुरी ने आलमी कीमतों में इजाफे से अपने सार्फीन को महफूज रखने के लिए किए गए इकदाम का भी जिक्र किया।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से

0: अनुमति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को खत्म करने की ईरान की ताजा तरीन तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुजाकरात पर मबनी एक हल्के मंजरनामे पर शक का इजहार किया है और मजीद कशीदगी के खतरे का इंतबाह दिया है। ईरान ने अपनी असर नौ पेशकश सालिसों के जरिए दी थी, जिसकी तस्दीक सरकारी मीडिया ने की। ट्रंप ने एतराफ किया है कि ईरान ने मुजाकरात में पेशरफ्त की है, अलबत्त उन्होंने कहा कि वो पेश की गई शराइत से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जो वो कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने ईरान की क्यादत को बेरब्त करार दिया है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान लगातार गैर एतमादी का इशारा मिल रहा है। फारस खबर एजेंसी समेत ईरान के सरकारी राबते वाले मीडिया ने बताया है कि मुल्क की क्यादत अंदरूनी गैर इस्तेहकाम की कयास आराइयों से निमटने की निगरानी में पूरी तरह मसरूफ है। यह सिफारती तातुल लबनान में तशद्दुद में इजाफा हो जाने के दौरान पेश आया है। लबनान में इसराइल के हमलों में एक ही दिन में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की इत्तला है, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं, जिससे अमरीका की सालिसी वाले पिछले महीने के जंगबंदी मुआहिदे के खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इन हमलों में जनूबी शहर सूर में शहरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया, जबकि कई सरहदी कस्बों में लोगों से इलाके को खाली करने के अहकाम जारी किए गए। हिजबुल्ला ने जवाबी हमले किए हैं, जिनमें एक ड्रोन हमला भी शामिल है, जिसकी वजह से शिमाली इलाके में इसराइली फौजी जख्मी हो गए। लबनान में इस सरहदी जंग में अभी तक 2000 से ज्यादा लोग हलाक और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, सिक्किम और जैली हिमालयी मगरी बंगाल में आज शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने अलबत्ता साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक और तमिलनाडु में आज गर्म मरतूब मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहेगा और अगले तीन दिन में गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। महकमे ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें बारिश और तेज हवाओं के मद्देनजर इस दौरान किसानों से कहा गया है कि वो खेतों में अपना कामकाज मुअत्तल रखें। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज से जम्मू कश्मीर वादी के दरमियान मुसलसल रेल खिदमात बाजाबता तौर पर शुरू कर दी हैं। सुबह 6:20 पर यह रेलगाड़ी जम्मू से रवाना हुई, जो इस खित्ते में रेल राब्तों को मजीद बेहतर करने की समत एक अहम कदम है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस रेल खिदमात का जुमेरात को इफ्तिताह किया था। एटमी तवानाई के इंजिबाती बोर्ड AERB ने कुडमकुलम न्यूक्लियाई तवानाई प्रोजेक्ट के यूनिट 5 और 6 में अहम आलात नस्ब किए जाने का इजाजतनामा जारी कर दिया है। इस इजाजत के तहत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यह अख्तियार हासिल हो गया है कि वो रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर्स और कूलेंट पंपों के प्लांट्स पर अहम आलात नस्ब कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि तकरीबन 3 साल पहले 2000 रुपए के करेंसी नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था, जिनमें से 98.47% नोट वापस लिए जा चुके हैं। आरबीआई ने करेंसी के बंदोबस्त से मुतालिक अपने कामकाज के हिस्से के तौर पर 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। ताजा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक इस रकम में बहुत तेजी से कमी आई है और यह 30 अप्रैल 2026 को 5,451 करोड़ रुपये थी। 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सहूलत आरबीआई के 19 दफ्तरों में उसी वक्त से दस्तयाब है, जब से इन नोटों की वापसी का ऐलान किया गया था। पंचायती राज की वजारत आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल से मुतालिक एक वर्कशॉप का एहतमाम करेगी। हर एक तक रसाई से मुतालिक इस वर्कशॉप में आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम के विजन, मकासिद और अमल आवरी के फ्रेमवर्क के बारे में शराकतदारों को रोशनास कराया जाएगा। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज की वजारत की पहल है। पंचायती राज की वजारत के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज अपने कलीदी खुतबे में प्रोग्राम के विजन का खाका पेश करेंगे। इस मौके पर आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल के कामकाज का बराह रास्त मुजाहरा पेश किया जाएगा। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत मुतहदा अरब अमारात जामे इकतसादी शराकतदारी मुआहदे

0: CEPSA जो 4 साल पहले अमल में आया था, भारतीय किसानों, MSMEs और दीगर तरह के कारोबार को यकसर तब्दीली लाने वाले मौके हासिल हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि भारत और मुत्तहिद अरब अमारात के दरमियान दो तरफा तिजारती ताल्लुकात में काफी मजबूती आई है और यह तिजारत 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई है। बैडमिंटन में आज डेनमार्क के हॉर्सेंस शहर में थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की बैडमिंटन टीम का मुकाबला फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल्स में चीनी ताइपाई को 3-0 से हराने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की तरफ से लक्ष्य सेन ने बेहतरीन शुरुआत की और एक सनसनीखेज मुकाबले में आलमी नंबर 6 खिलाड़ी को 18-21, 22-20, 21-17 से शिकस्त दी, जबकि सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी ने एक सख्त मुकाबले में चियोसियांग शी और वैंग ची लिन की जोड़ी को 23-21, 19-21, 21-12 से हराकर सबकत हासिल की। फुटबॉल में भारत 2005 के बाद से अब तक 17 साल की उम्र तक के AFC खवातीन एशियाई कप में अपनी पहली कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। आज भारतीय टीम का मुकाबला चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 5 बजे शुरू होगा। टेनिस में मैड्रिड ओपन में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में 9वीं सीड की मेरा एंड्रीवा का मुकाबला यूक्रेन की मार्टा क्योत्सक से होगा। 9वीं सीड की मेरा ने स्पेन की राजधानी में जुमरात के रोज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को शिकस्त दी थी, जबकि मार्टा कोस्तेक मैड्रिड में जारी WTA 1000 मुकाबले में पहली मरतबा फाइनल में पहुंची हैं। मर्दों के सिंगल्स में आला दर्जे के खिलाड़ी जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को 6-2, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। ये उनकी 22वीं जीत थी। बोत्सवाना के शहर गैब्रोन में आज से शुरू होने वाली आलमी एथलेटिक्स रिलेज 2026 में 21 अरकान पर मुश्तमिल भारतीय टीम 5 मुकाबलों में हिस्सा लेगी। ये मुकाबले 3 मई को इख्तिताम पजीर होंगे। भारतीय टीम 6 में से 5 मुकाबलों में हिस्सा ले रही है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारों ने मरई बंगाल की 2 असेंबली सीटों के 15 पोलिंग बूथों पर आज दोबारा पोलिंग की खबर को शहसुर्खी बनाया है। खबरों के मुताबिक ईवीएम से छेड़छाड़ और तशद्दुद की शिकायत के पेश नज़र इंतखाबी कमीशन ने फैसला लिया है। रोजामा इनकलाब और प्रताप ने राजधानी दिल्ली में डिजिटल मर्दमशुमारी के आगाज की खबर को अहमियत दी है। इस बार इस अमल में RWA को भी अहलकारों की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक भारत और तंजानिया के दरमियान माली साल 2025-26 में दोतरफा तिजारत $9 बिलियन से तजावज कर गई। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सिक्किम को मुल्क की पहली पेपरलेस रियासती अदालत करार दिया। इन खबरों को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खसूसी तौर पर शाये किया है। खजाने के वजीर मुल्कत पंकज चौधरी ने 70वें इन्फोर्समेंट डे की तकरीब में ईडी की कामयाबियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि माली जराइम के खिलाफ ईडी मजबूत ढाल की तरह काम कर रहा है। इस खबर को रोजाना प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरी बंगाल में 2 असेंबली हलकों के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोट डालने का अमल शुरू हो गया है। 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 1 इलाके में पहले मरहले के तहत घर घर जाकर मकानात की फहरिस्त तैयार करने और इनकी गिनती करने का काम शुरू हो गया है। IMD ने शिमाल मशरकी खित्ते और जनूबी जजीरानुमा में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को खत्म करने की ईरान की तजवीज मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जिन्हें वो कबूल नहीं कर सकते। और बैडमिंटन में डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की टीम फ्रांस के साथ खेलेगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूजा भार्गव। आप

0: होम्योपैथ हैं और साथ ही साथ आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफस्टाइल जो डिजीजेस होती हैं, यानी जीवन शैली जनित जो रोग होते हैं, उनका होम्योपैथी से कैसे उपचार किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पूजा आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ।
0: हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि हमारे जो श्रोता है जिनको इंतजार रहता है कि हम तरह तरह की विषयों पर उनको जानकारी देते हैं, तो आज ये एक बहुत जरूरी विषय है। और आजकल जीवन शैली जनित जो रोग हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले इसी को जान लेते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीजेस किन किन को कहा जाता है।
1: जी, तो अगर हम जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करें तो नाम से ही आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लाइफ प्लस स्टाइल, जो हमारे जीने का, जैसे हम रोज की जो हमारा रूटीन है उसके ऊपर ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं इसके ऊपर निर्भर करती हैं। यानी कि जैसे आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी हुआ, कि ज्यादा आपका काम जो है वो बैठने का हुआ, ज्यादा आप चल फिर नहीं रहे, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज नहीं हो रही, या फिर जैसे आप रेगुलर वॉक पे नहीं जा रहे, तो उसका एक कारण ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ये कॉज होती हैं। दूसरा एक कारण है कि डाइट इसका, यानी कि जो आपका खान पान है वो अगर आप नियमित रूप से नहीं खाते, या अगर आप जैसे बाहर ज्यादा जंक खाते हैं, ज्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, उससे भी ये लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। तीसरा जो कारण है, बेसिकली सबसे ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट कारण है, वो है स्लीप। यानी कि आपकी अगर नींद भी, अगर आप टाइम से नहीं सोते या आपकी नींद जैसे साउंड नहीं है, तो भी उसके कारण भी ये लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। एंड आखिर में जो सबसे बड़ा कारण आजकल देखा गया है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्योंकि आजकल के जमाने में आप देखते हैं स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, बूढ़ा है, हर एक की लाइफ में स्ट्रेस एक रेगुलर पार्ट है, तो उसके कारण भी ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ये कॉज होती हैं। तो अगर हम लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में बात करें तो लाइफस्टाइल डिजीजेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ, या जैसे ये हार्ट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जो हार्ट की ब्लॉकेड होती हैं, या डायबिटीज है, या ओबेसिटी यानी कि मोटापा, या PCOD, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारी जो डिजीजेस हैं जो हम कहते हैं कि एक दूसरे से फैलती नहीं है बट हमारे लाइफस्टाइल के कारण जो क्रिएट होती हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस कहलाती हैं।
0: और जिन जिन बीमारियों का आप नाम ले रही हैं डॉक्टर पूजा, वो बीमारियां आजकल बहुत कॉमन है और ये बीमारियां धीरे धीरे हम देखते हैं कि बढ़ती भी जा रही हैं कम होने की जगह। और इसका कारण मैं आपसे जानना चाह रही थी लेकिन आपने काफी कुछ विस्तार से पहले ही बता दिया कि क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही बहुत बिगड़ती जा रही है, उसका कारण बहुत सारे हैं, उन कारणों पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये इससे पहले जानना चाहूंगी कि बच्चों में भी लाइफस्टाइल डिजीजेस अब आ रही हैं, तो इसका कारण यही है कि लाइफस्टाइल उनका बिगड़ रहा है, उनका सोना खाना पीना, या कोई और कारण भी हो सकता है?
1: इसके पीछे आप खुली हवा में जाके अपने दोस्तों के साथ खेलते थे
0: जी।
1: बट अब क्या है, अब वो सारा दिन यही गैजेट्स हैं, चाहे लैपटॉप हुआ या मोबाइल हुआ, तो उनका जैसे बाहर घूमना फिरना, खुली हवा में जाना, ये बिल्कुल बंद हो गया है। और अगर हम जैसे बड़ों की बात करें, जैसे आप अगर नॉर्मल एडल्ट्स की बात करो, तो आगे क्या होता था, पुरानी अगर हम जीवन शैली देखें तो हम एक दूसरे के साथ अपना मन खोलते थे, जैसे चाहे रिश्तेदार हो चाहे हमारे दोस्त हो, पर अब क्या है, अब हम सब अपनी ही एक जीवन में सिमटे हुए हैं। एक मतलब आप देखो कि टाइमलाइन कितनी होती है कि ये अचीव करना है, इतना कंपटीशन है। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर हम जैसे अपने दोस्तों के साथ अपना दिल खोल लें तो सर्जन के पास जाके हमें अपना दिल खुलवाने की जरूरत
0: जी। बिल्कुल सही आपने बोला। आजकल जैसा आप बता रही हैं, मैं और मेरा मोबाइल, दुनिया वहां पे सिमट के रह गई है और लोग डिजिटल या वर्चुअल वर्ल्ड में ही अब रह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि मिलजुल नहीं रहे हैं, सोशल नहीं हो रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, और एक ही घर में रहते हुए माँ बाप और बच्चे आपस में नहीं घुल मिलकर बात कर रहे हैं, अपने मन की बात नहीं निकाल पा रहे हैं, और इसी कारण से शायद जो आपने कहा इसका एक रीजन स्ट्रेस भी है, तो वो स्ट्रेस एंग्जाइटी जो बढ़ रही है वो भी इसका कारण बन रही है। मुझे ये बताइए कि ये बढ़ रही है और बहुत व्याप्त है लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये तो हम मान गए, क्या एक बार ये हो जाए तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, क्या इंसान ठीक हो सकता है?
1: जी बिल्कुल, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जीवन के प्रति आपको वो सजग होना है कि आपको देखना है आप कैसा आपका लाइफस्टाइल है। थोड़ा सा वक्त आपको उसमें अपना, जैसे थोड़ा चलना फिरना, थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज, योगा आजकल भारत में इतना ज्यादा प्रचलित है
0: जी।
1: तो योगा के लिए, मेडिटेशन हुआ, ये सब चीजें अगर हम ध्यान रखें, और उसके साथ साथ अगर हम जैसे अपना खाना पीना वो भी हम नियमित रूप से जैसे खाएं, और एक ये है कि बहुत ज्यादा जंक या तला हुआ ये चीजें अगर

0: हम नहीं खाते, अगर हम अपनी नींद ठीक रखें, तो हम देखेंगे कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ये इतना ज्यादा जैसे आगे बढ़ेंगी नहीं, तो ये रिवर्सिबल है। तो इसका मेजर जो आप क्या कर सकते हैं वो यही है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस का जो जैसे बहुत ज्यादा अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है इसको हम टैकल कर सकते हैं।
1: तो इससे हम ये समझें क्या डॉक्टर पूजा कि अगर किसी को लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है और वो मेडिकेशन पे है तो अगर वो अपनी लाइफस्टाइल सुधार ले तो मेडिकेशंस बंद हो सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ के क्रिएशन में उसके जैसे पैदा होने में यही एक बड़ा कारण है। तो अगर हम उसको सही कर लें तो धीरे धीरे जैसे आप मान लो डायबिटीज के केस में लोग इंसुलिन पे आ जाते हैं, तो अगर वो अपना जैसे लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक करें तो धीरे धीरे इंसुलिन की डोज जैसे कम होते होते बिल्कुल बंद भी हो जाती है, तो ये रिवर्सिबल है।
1: जी, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितने लोग सुन रहे हैं बहुत जरूरी ये जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रही है और लाइफस्टाइल डिजीजेस को जीता जा सकता है। मुझे ये बताइए, आप एक होम्योपैथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप बताएंगे कि पोषण के दृष्टि से अगर हम बात करें, लेकिन पहले मैं यही जानना चाहूंगी क्या होम्योपैथी में इसकी दवाई है लाइफस्टाइल डिजीजेस की, अगर है तो किस तरह से ली जाती है?
0: जी, अगर मैं जैसे होम्योपैथी की बात करती हूँ, होम्योपैथी में हम जो है हम बीमारी को ठीक नहीं करते, हम इंसान को ठीक करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम जैसे होम्योपैथ किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा शुरू से लेके आखिर तक हमसे बहुत सारे सवाल पूछता है। हमें लगता है कि अरे ये मतलब बिल्कुल कोई इन सवालों का इतना ज्यादा कि आपको क्या अच्छा लगता है, कैसे गर्मी लगती है, बट इन सबका एक कारण है। हम इंसान को अलग से जानते हैं कि क्या ऐसी चीज उस इंसान में है जो दूसरे इंसान से उसको सेपरेट करती है।
1: अच्छा,
0: तो इसीलिए होम्योपैथी जो है वो जड़ से वो चीज, मान लो अगर आप डायबिटीज लेते हो उसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई स्ट्रेस है जिसके कारण ये डायबिटीज डेवलप हुई, या जैसे कई बार आप डिप्रेशन, एक वो भी आजकल बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो उसमें भी एज अ होम्योपैथ मैं उस जैसे उस पेशेंट की पूरी प्रॉपर केस टेकिंग लेती हूँ, ये जानती हूँ कि क्या कारण रहा होगा कि जिसके कारण उनको ये डायबिटीज या जैसे ये डिप्रेशन की दिक्कत हुई, तो वो पूरी एक प्रॉपर उस पेशेंट की डिटेल्ड केस हिस्ट्री ली जाती है, उससे जाना जाता है कि क्या कोई ऐसा उसको स्ट्रेस था, क्या उसका खान पान बिगड़ा, या क्या चीज है जिसके कारण ये डायबिटीज या ये जैसे और जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ये डेवलप हुई।
1: अच्छा, तो पूरी हिस्ट्री लेने के बाद आप उनको डोजेस देते हैं
0: जी।
1: तो ये बताइए कि ये डोज जो वो चलती है उनकी दवाइयाँ, ये कितनी लंबी चलती हैं, कितने समय में आराम मिल जाता है, और एक बार शुरू होने के बाद क्या ये बंद हो जाती हैं या इनको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है?
0: अगर आप दवाई के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करते हो, अगर आप प्रॉपर जैसे अपना खान पान सुधारते हो, या जैसे आप थोड़ा सा रेगुलर वॉक करते हो, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया जिससे स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, एंड साथ में आप रेगुलरली जब होम्योपैथी दवाई लेते हो तो आप देखते हो कि बहुत जल्दी आपको ये आराम लगता है। अगर आपके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो आपके नॉर्मल आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर की जो भी आपकी दिक्कत है वो आपकी नॉर्मल आती है, तो जैसे अगर ये आप वो कह सकते हो कि जो दवाई है मेडिसिन और जो आपका लाइफस्टाइल है उन दोनों का मिलाप करके हम जैसे ये जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है दवाई। अगर आप जैसे होम्योपैथी ने क्या करना है, आपके अंदर जो एक वाइटल फोर्स होती है, जो आपके अंदर एक अंदर आपकी आंतरिक शक्ति होती है, उसको जगाना है। तो जब आप उसको वो जगा लेते हो तो उसमें इतनी वो आ जाता है अंदर पावर कि वो खुद ही जो आपकी डिजीजेस है उसको क्योर करती है।
1: अच्छा, ये बताइए, अप्रैल को पोषण पखवाड़ा के रूप में हम लोग मनाते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को बताएं कि न्यूट्रिशन की बहुत वैल्यू है, अगर आप सही खान पान रखते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, और यही आप कह रही हैं और आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो किस तरह का पोषण होना चाहिए, किसको आप सही पोषण मानती हैं?
0: देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम जैसे न्यूट्रिशन की बात करें या पोषण की बात करें, उसमें जो अलग अलग जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम डाइट के बारे में बात करें तो उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुए, विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए, प्रोटीन्स हुए, फैट्स हुए, सबका अपना अपना एक कार्य है। तो आपको वो सब एक बैलेंस डाइट के हिसाब से लेना है कि आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना विटामिन मिनरल चाहिए, तो वो आपके बॉडी के वेट के हिसाब से, बॉडी के आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से ये नापा जाता है।
1: तो ये बैलेंस डाइट आपने बताई, लेकिन जैसे हम लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ बदलाव होता है उनके खान पान में? आप कुछ ऐसा डाइट भी प्रिस्क्राइब करते हैं जब आप होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं जिसको लाइफस्टाइल डिजीजेस

0: उनको।
1: जी, जैसे इसमें अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी में हमें क्या करना चाहिए कि हमें जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो उसकी क्वांटिटी है वो हमें कम करनी है, और जो प्रोटीन है जैसे अंडा हुआ, दूध हुआ या पनीर हुआ, ऐसी चीजें जिसमें सोयाबीन हुआ जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है वो हमें ज्यादा खानी है। जिससे क्या है कि अगर ये जैसे हम जो कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे तो फिर जो हमारा एक्स्ट्रा फैट जो डिपोजिशन होता है वो हमारी बॉडी में नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके और प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा लेना है।
2: जी बिल्कुल, मैं अब यही जानना चाह रही थी कि ओबेसिटी भी आपने बताया लाइफस्टाइल डिजीज है, और ओबेसिटी से भी बहुत सारी लाइफस्टाइल और बीमारियों हमें मिल जाती हैं, तो इसको कम करना बहुत जरूरी है। और इसको करने के लिए एक बैलेंस डाइट, या आपने कहा प्रोटीन को बढ़ाना और कार्बोहाइड्रेट को कम करना, ये जरूरी है। लेकिन क्या कोई दवाई भी ऐसी है होम्योपैथी में जो मोटापा कम कर सकती है?
1: जी, होम्योपैथी में ऐसी कई दवाइयां हैं। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि जब किसी को डायबिटीज होता है तो वो जामुन खाने को बोलते हैं, तो ऐसे ही होम्योपैथी में एक मेडिसिन है साइजीजियम जो जामुन से बनती है। ऐसी और बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, लाइकोपोडियम हुई या नेट्रम्योर हुई, बट ये क्या है कि ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो हमारे पास 10 पेशेंट आए तो 10 पेशेंट को हम ये नहीं है कि एक ही मेडिसिन साइजीजियम देंगे, वो डिपेंड करेगा कि उस पेशेंट की अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है, उसके हिसाब से मेडिसिन होती है। तो मेडिसिन बहुत सारी है, वो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट क्या हमें सिम्टम बताता है, क्या उसकी दिक्कत है, उसको क्या सिम्टम्स हैं।
2: तो सुन के सिर्फ ये दवाई है और इसको ले लिया, ये नहीं करना है। आपको किसी होम्योपैथी स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा
1: जी,
2: और वो आपके सिम्टम्स को जज करके आपकी हिस्ट्री लेके आपको बताएगा कि ये आपको सूट करेगी
1: जी,
2: और तभी आपको फायदा होगा
1: जी।
2: तो ये भी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि कई लोग सुनी सुनाई चीजों पर भी करते हैं तो वो नुकसान भी हो सकता है
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो एक और मेरा दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि जैसे आपने बीपी का बताया, थायराइड का बताया कि ये भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं और इनकी दवाइयां बहुत बिकती हैं। अगर हम देखें मार्केट की सर्वे करें तो बीपी बहुत कॉमन है, थायराइड बहुत कॉमन है, तो इनकी दवाइयां जो एलोपैथी में चल रही हैं क्या उसके साथ साथ होम्योपैथी की जा सकती है कि उसे छोड़कर फिर होम्योपैथी लेनी पड़ेगी?
1: जी, उसका भी मैं आपको जैसे इसके पीछे एक डिटेल्ड लॉजिक है। जैसे अगर आप मान लो कोई भी आपसे ब्लड प्रेशर के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो ये जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है इसका काम होता है कि वो जैसे आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करता है। तो जब भी आप मेरे पास जैसे पेशेंट आते हैं कोई जिसे ये हाई ब्लड प्रेशर के हुए वो ऑलरेडी मेडिसिन पे चल रहे होते हैं एलोपैथी, तो बेसिकली होम्योपैथ हम एज ए होम्योपैथ हम क्या करते हैं कि उनको वो दवाई एकदम से बंद नहीं कराते, क्योंकि अगर वो इंसान है वो कितने टाइम से वो दवाई लेता है तो बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है, एक उसको आदत पड़ गई होती है। तो हमारा क्या उसमें वो क्राइटेरिया होता है कि हम अपनी मेडिसिन उसको जैसे देते हैं साथ में एलोपैथी भी चलती है, और उन दोनों मेडिसिन के बीच में थोड़ा सा हम गैप रखते हैं। जैसे पेशेंट को बोलते हैं एक से दो घंटे का गैप रखें, एंड धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे वो हमारी मेडिसिन लेगा तो उसका जो बेसिकली रूट कॉज है वो रिमूव होगा, तो हम साथ के साथ जो उसकी एलोपैथिक मेडिसिन की डोज वो कम होती जाएगी, एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि वो होम्योपैथी लेगा तो एलोपैथी उसकी बंद हो जाएगी, एंड फाइनली जब होम्योपैथी अपना पूरा काम कर लेगी तो होम्योपैथी की मेडिसिन भी बंद हो जाएगी।
2: अरे वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो जितने लोग बहुत पुरानी दवाइयां ले रहे हैं वो भी होम्योपैथी के जरिए उससे निजात पा सकते हैं। तो चलते चलते कुछ और आप कहना चाहें हमारे श्रोताओं को?
1: श्रोताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आप किसी भी बीमारी की वेट मत कीजिए, आप पहले ही अपने जैसे अपनी जीवन शैली में सुधार लाइए, रेगुलर आप एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर खुली हवा में वॉक कीजिए, एंड खाना ना अपना अच्छा रखिए, एंड नींद के लिए आप जैसे उसके लिए बहुत ज्यादा सजग हो जाइए कि हाँ कोशिश कीजिए कि आप 6 से 8 घंटे की नींद आप जरूर लें, एंड स्ट्रेस के लिए जो आजकल बहुत एक बड़ा भयंकर रूप जिसने धारण किया है उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें या प्राणायाम करें, जिससे अगर आप अपनी जीवन शैली पहले से ही सुधार लेंगे तो ये बीमारियां आप बिल्कुल भी आपको आपके नजदीक आएंगी भी नहीं
2: जी। और बीमारियां नहीं आएंगी तो इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पूजा भार्गव को। आप एक होम्योपैथ हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आपने समय निकाला स्टूडियो में आए और लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड होम्योपैथी पर इतनी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
0: इस भागती दौड़ती जिंदगी

0: में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर। आयुर्वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। क्या आयुर्वेद, योग और व्यायाम को अपनाकर मोटापे को जीता जा सकता है? बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर महेश व्यास। आप डीन PhD हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर महेश व्यास। आयुर्वेद की दृष्टि से हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें सुधार करना चाहिए अपने खान पान में और जीवन शैली में, जिससे मोटापा ना हो। स्वागत है, नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: तो सबसे पहले तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि इसके क्या मुख्य कारण हैं?
2: देखिए, मोटापे का मेन कारण जो है वो लाइफ स्टाइल है कि व्यक्ति को हमेशा जो है अपनी जीवन शैली जो है वो एक्टिव रखना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में खास तौर से कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, घर से गाड़ी में निकले, ऑफिस में भी बैठने का काम, वापस गाड़ी से घर आ गए, मतलब उनकी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रहती है, तो अगर शरीर चेष्टायुक्त रहेगा तो शरीर में ओबेसिटी कभी नहीं बढ़ेगी। और आयुर्वेद उसके लिए कहता है व्यायामम आचरेत नित्यम, मतलब आप कोई भी काम करते हो अगर प्रतिदिन व्यायाम करते रहें तो आप स्वस्थ रहेंगे। और मोटापा इस कारण से होता है कि खास तौर से हम चेष्टा युक्त हमारी जीवन शैली नहीं रहती है। तो मेरा कहना है कि अपन क्या काम करते हैं उसके अनुसार निर्धारित कर लें कि प्रतिदिन मैं व्यायाम करूंगा। अगर दिन में हमारी जो क्रियाशीलता है वो ज्यादा है तो आप थोड़ा कम व्यायाम करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो थोड़ा सा व्यायाम की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर ओबेसिटी से युक्त है, मोटापे से युक्त है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस जो है वो बाधित होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो हम BMI की बात करते हैं वे 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आयुर्वेद एक और कहता है कि प्रातःकाल जो लोग जल्दी नहीं उठते हैं वो भी मोटापा बढ़ने का कारण है। अच्छा। कि अगर सुबह ज्यादा देर तक सोते रहते हैं। और दूसरा, खाने पीने का जो है वो विशेष रूप है, क्योंकि आयुर्वेद ने तो यहां तक कहा कि शक्यते अपि अन्न मात्रेण नरक कर्तुम निरामय। अगर हम डाइट और लाइफस्टाइल के नियमों का पालन करें तो व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। उसमें से डायबिटीज भी एक है। जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उन सब में जीवन शैली की मुख्य कारणता है, माने आहार और विहार। तो ओबेसिटी में भी आहार की एक अपनी भूमिका है, और आहार में खास तौर से जो गुरु पदार्थ रहते हैं, जो स्निग्ध चीजें रहती है, वो वजन को ज्यादा बढ़ाती है, और उसमें से ऑयल भी एक है जो स्निग्ध गुण से युक्त होता है।
1: आयुर्वेद की दृष्टि से कौन सा तेल सही होना चाहिए खाने के लिए और कितनी मात्रा में होना चाहिए?
2: देखो, आयुर्वेद में कहा गया कि घृतात अष्टगुणम तेलम मर्दने न तो भक्षणे, मैंने तेल को श्रेष्ठ बताया है मर्दन अभ्यंग व्यायाम मालिश के लिए। खाने के लिए घी को श्रेष्ठ बता रखे गोघृत अगर मिलता है तो, लेकिन आज जितनी आवश्यकता उस मान से अगर वो नहीं मिल पाता है तो तेल का भी प्रयोग करते हैं। और उसमें तेल के प्रयोग में बेस्ट बता रखा तिल का तेल। उसके साथ में अलग अलग प्रदेशों में, जैसे कि जहां पर गर्मी ज्यादा होती है तो वहां पर जो जिसका स्वभाव शीत रहता ऑयल का, जैसे कोकोनट ऑयल खोपरे का तेल जो रहता है, नारियल का तेल, वो शीत स्वभाव का रहता है, तो साउथ में विशेष करके उसका प्रयोग किया जाता है। जिन प्रदेशों में थोड़ी ठंड का मौसम रहता है वहां पर सरसों का तेल या तिल का तेल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर मुख्य बात यह नहीं कि आप कौन सा तेल उपयोग कर रहे हैं, मेन बात है कि आप तेल की क्वांटिटी कितनी उपयोग कर रहे हैं। अगर आप अधिक मात्रा में तेल का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ओबेसिटी को बढ़ाने वाला है।
1: किस तरह से खाने को बनाया जाए जिससे कि वो खाना हमारे शरीर को सही तरह से लगे, यानी हमारे मोटापा ना बढ़ाए?
2: बिल्कुल। तो देखिए, भोजन की एक प्रॉपर विधि है
1: जी।
2: और उसमें भी भोजन निर्माण की विधि है कि बाहर जो अपन भोजन करते हैं उसमें एक ही ऑयल का उपयोग वो कई बार करते हैं तो ट्रांसफैट बढ़ता है, और वो केवल ओबेसिटी को नहीं बढ़ाता है, वो डायबिटीज को बढ़ाता है, हृदय रोग को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इवन यहाँ तक कि कई बार कैंसर तक की जो व्याधियां होती है उनकी भी उत्पत्ति इनके कारण होती है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि डीप फ्राई की हुई चीजों का कम प्रयोग करें। दूसरा ये कहने का कि जो अपन फ्राई करते हैं कोई भी चीजें घर में उसमें तेल की क्वांटिटी कम हो। हम कई बार देखते हैं कि अपने शरीर के लिए जो आवश्यक है प्रतिदिन एक से डेढ़ चम्मच छोटी वाली जो रहती है टेबल स्पून, उतनी मात्रा शरीर के लिए पर्याप्त है, यानी 10 ml

0: से 15 ml तक आप ले लें, मैक्सिमम 20 ml, इससे ज्यादा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हम अगर ध्यान रखें कि घर में 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, तो उनके मान से अगर कैलकुलेशन किया जाए कि एक महीने के इतने ऑयल की जरूरत है, उससे भी थोड़ा और कम ऑयल अगर हम परचेस करके लेके आए, और जो भोजन बनाते हैं वो अगर ध्यान रखना शुरू कर दे कि मैं हर दिन जितना ऑयल का प्रयोग करती हूँ उससे 10% कम कर देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। और ऐसा हम अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अगर बोले कि आप थोड़ा सा ऑयल का उपयोग कम कर दें, तो निश्चित रूप से ये ओबेसिटी के क्षेत्र में हम क्रांति ला सकते हैं छोटे से प्रयास से। क्योंकि आयुर्वेद तो कहता है आहारो महाभैषज्यम, भोजन के जो छोटे छोटे नियम है जैसे ऑयल का उपयोग कम करना, व्यायाम प्रॉपर करते रहना, समय पर भोजन करना, कई बार क्या होता है दिन में 3 बार अपन भोजन कर रहे हैं, भूख नहीं लगी फिर भी भोजन कर रहे हैं, मिठाई का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो ओबेसिटी हो ही नहीं सकती है। और जहां पर ओबेसिटी ज्यादा बढ़ती जाती है, आज अगर देखें तो 8 व्यक्तियों को अगर देखें तो अपने को हर 8वां व्यक्ति ओबेसिटी के साथ मिलता है, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो ओबेसिटी कम करने के लिए आहार का ध्यान रखें, और खासतौर से आहार में ऑयली चीजें इनका प्रयोग कम करें, मिठाई वगैरह को भी आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करें, नियमित व्यायाम करते रहें और ताजा बना हुआ भोजन लें, तो निश्चित रूप से देश को ओबेसिटी से हम बचा सकते हैं।
1: बच्चे जो हैं आजकल वो भी बहुत मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी उनमें भी आ रही है, तो ये क्या कारण है आपको लगता है कि बच्चों में ये आदत आ रही है?
0: आजकल बच्चों में अपन देखते हैं तो काफी बच्चों में ओबेसिटी मिलती है, और उसका मेन कारण है तो फास्ट फूड, इसका सेवन थोड़ा सा कम करें। इसलिए सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए कि घर का बना हुआ खाना खाएं, बच्चों की जो इच्छा वो घर पे बना के दें, बाहर का खाना नहीं खाएं। उसमें भी खासतौर से फास्ट फूड है जो अपन कहना चाहिए कि डीप फ्राई वाली चीजें हैं, ऑयली चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है, बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद रहते हैं, तो एक तो स्निग्ध और मधुर, ये दो चीजें ओबेसिटी को बढ़ाती है। तो स्निग्धता में ऑयल ज्यादा हो गया अगर उसका उपयोग कर रहे हैं, और मधुरता में जितनी भी स्वीट वाली चीजें इनका प्रयोग अगर ज्यादा करते हैं तो ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। तो बच्चों में खास तौर से मीठा खाने की प्रवृत्ति को थोड़ा कम करवाएं और ऑयल का उपयोग कम करवा दें। अगर उनमें भी ऑयली चीजें खाना कम हो जाती है तो इससे अपन रोक सकते हैं, और बच्चों को डीप फ्राई की हुई चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो हम थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान रखें कि उनको फ्रूट्स खिलाएं। अगर फल खाते हैं अपन तो फल जो है वो ओबेसिटी को नहीं बढ़ने देते हैं, जैसे गुआवा है, पपीता है, ड्रैगन फ्रूट है, ऑरेंज है, ये सब चीजें ऐसी है कि जो शरीर में फाइबर जो है उनके द्वारा पहुंचता है और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो मेरा कहने का कि चॉकलेट, आइसक्रीम या ऐसी स्वीट चीजों को खाने के बजाय फल खाएं, और फल में भी ऋतु फल खाएं जो जिस सीजन में फल उपलब्ध हैं। अगर बच्चों की आदत हम फल की डालते हैं, ऑयल की उपयोग थोड़ा कम करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें भी ओबेसिटी को हम रोक सकते हैं।
1: तो योग और ध्यान का क्या महत्व है?
0: देखिए, योग तो व्यक्ति को हर रूप में स्वस्थ करने में काम करता है, माने चाहे वो शारीरिक व्याधि हो या मानसिक व्याधि हो। तो शारीरिक में अपन कह सकते हैं कि मोटापा ज्यादा होता है, और मोटापे को कम करने में नियमित व्यायाम और नियमित योग अगर करते हैं किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। और नियमित व्यायाम के रूप में योग, प्राणायाम, आसन, हर एक व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है। अब अगर अपने पास में कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो या कोई योग सेंटर हो तो वहां पर जाकर के, और अगर अपने को वजन कम करना है उसके लिए विशेष रूप का व्यायाम है, उसके लिए एक अलग प्रकार के आसन है, उसके लिए अलग प्रकार का प्राणायाम है। तो अपने को क्या करना है, अगर आप वेट बढ़ा हुआ नहीं है केवल स्वस्थ रहना है तो उसके लिए परामर्श ले लें, अगर अपना वेट काफी बढ़ा हुआ है तो उसके लिए प्रतिदिन कौन कौन से आसन करना है उनका अपन जो है खासतौर से परामर्श लें और उनका अगर पालन करें तो योग की भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका है। व्यक्ति को स्वस्थ रखने में जिस प्रकार से हम बीमार होने के बाद औषधि का प्रयोग करते हैं, अगर हम योग का प्रयोग करें तो हम बीमार ही नहीं होंगे। तो उचित आहार, उचित व्यायाम, योग, प्राणायाम, ये अगर देश में हर एक व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता
1: है। क्या ऐसी तकनीक करी जाती है आयुर्वेद में जिसके जरिए मोटापे को कम किया जाता है?
0: देखिए, पहला तो आहार के द्वारा, उसके साथ में कुछ औषधियों का प्रयोग।
1: अच्छा।
0: अब मोटापा जब आता है तो वो केवल मोटापे तक सीमित नहीं रहता है, उसके कारण व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ हो जाती है, डायबिटीज की उसको तकलीफ होने लग जाती है, कई लोगों को कैंसर तक की, क्योंकि डाइट का ध्यान नहीं रखते उसके कारण कैंसर भी हो जाता है। उसी प्रकार से जो हड्डियां रहती है ये कमजोर होने लग जाती है, और उसको अगर अपन देखें कि जो पित्ताशय उसकी बीमारियां कई होने लग जाती है, साथ में कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लग जाता है, और अगर देखें तो लीवर और फैटी लीवर होने लग जाता है ओबेसिटी के कारण ही। उसी प्रकार से नींद, स्लिप एपनिया जो बोलते हैं, या कहना चाहिए कि सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, गठिया बात हड्डियों की बीमारी होने लग जाती है, और कई लोगों में तो जैसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो होती है ये भी ओबेसिटी के कारण होती है, थायराइड की प्रॉब्लम, माने ओबेसिटी अपने साथ में कितनी बीमारियों को लेके आता है। तो एक तो केवल ओबेसिटी है, तब हम थोड़ा सा डाइट में ध्यान रखें कि मीठी चीजें, मधुर चीजें, दूध से बनी हुई चीजों का थोड़ा अवॉइड करें, और एक्सरसाइज रोज करते रहें। अगर बाकी और कोई व्याधियां हो गई तो उन व्याधियों के मान से अपनी डाइट को ध्यान रखें, क्योंकि हर एक व्याधि के लिए कुछ कुछ स्पेसिफिक डाइट बता रखी है। और आयुर्वेद में तो आचार्य चरक ने औषधियों का प्रयोग बाद में बताया, उनने शुरू में ही दूसरा चैप्टर अपामार्ग तंडुली एक चरक संहिता का सेकंड चैप्टर है, उसमें पहले 28 यवागु बताई, माने खाने पीने की रेसिपी कि जिससे अलग अलग बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, तो ओबेसिटी से उसके द्वारा बचे, और साथ में हम थोड़ा सा व्यायाम आदि करते रहें, और कुछ औषधियां जैसे अपने कहना चाहिए कि हमारे घर में प्राय रहती है, त्रिफला का चूर्ण है, वो बहुत अच्छा ओबेसिटी को कम करता है। पर मेरा सबको एक अनुरोध है कि औषधि का प्रयोग किसी भी चिकित्सक के परामर्श से लें, ताकि आपको कितनी मात्रा में कब लेना है, क्योंकि क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनको गर्म पानी के साथ लेने पर उनका परिणाम अलग है, उनको ठंडे पानी के साथ लेने पर उनका परिणाम अलग है। तो आपको और कौन कौन सी व्याधि है, ओबेसिटी है, तो चिकित्सक से परामर्श ले लें, और त्रिफला चूर्ण है, गिलोय है, अलग अलग छोटी छोटी रेमेडीज है जो हमारे घर में रहती है, हम तो कहते हैं कि किचन रेमेडीज जो रहती है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, पर वो सब चिकित्सक की परामर्श से अगर ले तो न केवल ओबेसिटी, अभी तो ओबेसिटी के कारण होने वाला डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, या और कई प्रकार की बीमारियां हो, उनसे भी सामान्य नियमों का पालन करके हम बच सकते हैं।
1: एक चलते चलते प्रश्न और करना चाहूंगी कि हमने बहुत सुना है आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा की जाती है, ये कुछ क्रियाएं होती हैं, तो क्या वो भी मोटापा कम करने में सहायक होती हैं?
0: जी, मोटापा कम करने के लिए पंचकर्म भी एक बेस्ट चिकित्सा है।
1: अच्छा।
0: तो जैसे जिनको बहुत ज्यादा मोटापा है, जैसे थोड़ा बहुत अगर बड़ा हुआ वेट है तो उसको तो अपन डाइट से भी ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिनमें बहुत ज्यादा ओबेसिटी है फिर उनमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और उनमें पंचकर्म बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए तीन दोष होते हैं, एक वात, पित्त और कफ। जब भी शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है माने मोटापा फिर बढ़ता है, और उसको कम करने के लिए आयुर्वेद में वमन कर्म बता रखा है। उसी प्रकार से विरेचन कर्म है, कुछ प्रकार की बस्ती है जिसको निरूह बस्ती बोलते हैं, कई प्रकार का डिकॉक्शन बस्ती के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये तीनों ही पद्धतियां मोटापे को कम करने में बहुत प्रभावी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत यही समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती आकाश।
1: धरती आकाश में आप सबका स्वागत है। पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण सतत विकास के लिए अनिवार्य है। शिक्षा और वैज्ञानिक जागरूकता के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों को विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझकर ही हम प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग कर सकते हैं। ये जागरूकता प्रदूषण नियंत्रण, आवास बहाली और प्रजातियों के विलोपन को रोकने के लिए आवश्यक है। विस्तृत जानकारी के लिए सुनिए ये परिचर्चा, पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए वैज्ञानिक जागरूकता। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी और शिक्षाविद, कहानीकार, सांस्कृतिक विशेषज्ञ माल

0: विका जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आप दोनों का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि अनुसंधान पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, तो वर्तमान में जो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान चल रहे हैं उसमें आपका अनुभव क्या है, आप किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उसका आम जनों के लिए क्या महत्व है?
3: नमस्कार। सबसे पहली बात तो कृषि अनुसंधान में आपने बोला कि बहुत सारगर्भित काम हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत मूलभूत हमारी आवश्यकता है कि कृषि से जुड़े हुए जितने भी आयाम है हमें हर समय उनकी जरूरत पड़ती है। आम जनता को अगर हम कृषि से अलग करके देखें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कृषि के साथ साथ आजकल स्वास्थ्य की चिंताएं कर रहे हैं। हमने कोविड के बाद से देखा कि लोग बाग हेल्थ के लिए अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। हम दिन पे दिन अब चर्चा करने लगे हैं पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग की हम बात करने लगे हैं। इसके साथ साथ हम चर्चा करने लगे हैं कि हम समय अनुकूल चीजों का हम अगर ग्रहण करें, पोषण करें, तो हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता के कारण हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता रहेगा। तो मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक वैज्ञानिक हूँ और इस क्षेत्र में भारत की जो पूरी कृषि की व्यवस्था है और कृषि की जो वैज्ञानिक सोच है वो बहुत अच्छे से एक प्रगतिशील मार्ग पर चल रही है। हम एक तरफ हम ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं जो कि बदलते वातावरण के परिदृश्य में आगे के लिए तैयार रहे कि हमारी क्रॉप के ऊपर, हमारे लाइव स्टॉक के ऊपर, हमारे सीड के ऊपर, हमारे प्लांट सिस्टम के ऊपर अगर वातावरण बदल रहा है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको हम कैसे लड़ सकते हैं, उसके ऊपर एक पूरे की पूरी टीम काम कर रही है। उसके साथ साथ हम ये भी काम कर रहे हैं कि कैसे करके हम अपनी पूरी क्रॉप्स को पेस्टिसाइड और फंगिसाइड फ्री बना सकें जिससे कि हम कम से कम केमिकल का प्रयोग कर सकें। इसके साथ साथ क्योंकि कृषि में हम लाइव स्टॉक को अलग नहीं कर सकते तो नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग प्रधानमंत्री ने इस मिशन की भी लॉन्च की है कि हम एक तरफ अपनी भूमि की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम ह्यूमन के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम पर्यावरण के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये सतत प्रगतिशील तरीके से काम कंटिन्यूअसली चलता रहे क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हो गए हैं। तो हमारे ऊपर एक महती जिम्मेदारी ये भी है कि कैसे हम अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के पेट में हम पोषण युक्त भोजन दे सके। तो इन सारे विषयों पर काम चल रहा है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं।
1: मालविका जोशी जी, आपका स्कूली शिक्षा बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा अनुभव रहा है, आप खुद भी साइंस बैकग्राउंड की ही हैं। आप अपने अनुभव से हमारे सुनने वालों को बताइए कि इस क्षेत्र में जब हम शिक्षा की बात करते हैं, वैज्ञानिक शिक्षा की बात करते हैं, तो उसका क्या महत्व हो जाता है और जो अनुसंधान की बात करते हैं, प्रतिफल की बात करते हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए आप किस किस तरह के माध्यमों को उचित मानती हैं और उसका अनुभव आपका क्या है?
2: देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि यदि कोई चीज हमें आगे तक लेके जानी है तो वो बच्चों के माध्यम से ही हम लेके जा सकते हैं क्योंकि कच्ची मिट्टी को ही गढ़ा जा सकता है, जो पकी मिट्टी है उससे तो कुछ नहीं होगा। तो जो टीचर्स हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को ये बात बताएं, उनको समझाएं कि उनको क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। हर चीज का एक माप होता है। अब जैसे मौसम के अनुसार यदि आप खाते हैं तो आपको वो सब पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं आपके शरीर को। यदि इस समय अमरूद का सीजन है तो आप अमरूद खाइए। अब अमरूद के सीजन में आप एप्पल खाना चाहेंगे तो वो एप्पल आपको कोल्ड स्टोरेज का मिलेगा और उसके पोषक तत्वों में कमी 100% आएगी, यानी आप दाम भी ज्यादा दे रहे हैं और आपके फायदा भी
1: पौष्टिकता भी कम मिल रही है।
2: तो ये बात हम हर अनाज के बारे में, हर सब्जी के बारे में, हर जगह के बारे में जब हम कहते हैं और बच्चों को समझाते हैं तो वो अपने घर जाके बताते हैं। हर एक क्षेत्र में ऐसा ही होता है। और जब आप घर जाके बच्चा बताता है, क्योंकि बच्चे के लिए टीचर होती है सबसे सही, तो टीचर का अपना एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए बिना किसी टैबू के कि हाँ ये ऐसा होना है और बच्चे को मैंने ये सिखाया है। मैंने कहा हाथ से खाना खाओ, हाथ से क्यों खाना खाओ? तो मैं कांटे चम्मच से खा रही हूँ और मैं बच्चे को बोलूंगी कि नहीं बेटा हाथ से खाना चाहिए, तो मुझे बताना पड़ेगा कि बेटा मैं भी हाथ से खा रही हूँ, हाथ से खाने के क्या फायदे हो सकते हैं, दाल चावल ही खा रहे हैं, पर दोनों में पोषक तत्वों का जो शोषण है बॉडी में उसमें फर्क पड़ता है। आप स्टील के चम्मच से खाएंगे और आप अपने हाथ से खाएंगे तो, और बाकी चीजें भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों को बताना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए आपको करना होता है, परिवार को करना होता है, परिवार की भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पहले सब गेहूं, अब चावल, और चावल से अब हम अपने मोटे अनाज पे आ गए हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, तो क्यों? और बच्चा भी आजकल खाना चाहता है। छोटे छोटे बच्चों से आप पूछिए न्यूट्रिशनल फूड मम्मा, न्यूट्रिशनल फूड, तो ये न्यूट्रिशनल फूड मम्मा को भी पता होना चाहिए ना। तो मम्मा को पता चले, परिवार को पता चले, उसके लिए हम जैसे टीचर्स काम करते हैं, साइंटिस्ट से हम सीखते हैं और

0: हम परिवार को बताते हैं।
1: डॉक्टर अमित जी, आप एक वैज्ञानिक हैं फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर डिवीजन में, इसी ये पता लगता है बहुत सारे डिवीजन होते हैं कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान विकास के लिए। जब हम फूल की और फलों की बात करते हैं, वर्तमान में ये एक बहुत बड़ा बाजार है और ये बहुत पुराने समय से दुनिया में रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज है मनुष्य को हमेशा प्रिय रही है और हमेशा उसके लिए लाभकारी है। इसमें वर्तमान अनुसंधान इस क्षेत्र में क्या है, वो किस तरह से किए जा रहे हैं?
2: देखिए, फल एक ऐसी चीज होती है कि जो बहुत रीजन स्पेसिफिक होती है, तो बहुत अच्छे एक बिजनरी माइंडसेट से आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, वहाँ लीची का अनुसंधान बनाया गया, अभी मखाने का अनुसंधान बनाया गया, मध्य प्रदेश में खरपतवारों का भी अनुसंधान है, सॉइल का भी अनुसंधान है, हमारे पास फार्म मशीनरी का अनुसंधान है, महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ अनार पे मिलेगा आपको, अंगूर पे मिलेगा, संतरे पे मिलेगा या सिट्रस वर्गीय पे मिलेगा, आप और आगे जाएंगे कश्मीर जाएंगे तो वहाँ टेम्परेट फ्रूट्स में है। सो पूरे देश के अगर आप मैप को अपनी आंख से बंद करेंगे तो हर राज्य में ICAR के अनुसंधान केंद्र है। ये तो रही बात कि हम फलों की स्पेसिफिक हम क्लाइमेट के हिसाब से हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, और उन अनुसंधान केंद्रों में आज की और आज से 50 साल के आगे की जो भी रिसर्च की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंडेटरी वो काम शुरू हो चुके हैं, जिससे कि जलवायु के परिवर्तन के क्या इम्पैक्ट रहेंगे और इससे हमारी फलों की गुणवत्ता में, फलों की क्वालिटी में, फलों की उत्पादकता में, या किसी भी तरीके से रोग एवं कीट व्याधियों में या एबायोटिक स्ट्रेसेस जितने भी हैं उन सब के ऊपर सिस्टमैटिकली बड़े प्लान तरीके से काम हो रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चर सेकेंडरी एग्रीकल्चर के सप्लायर थे, उसके पीछे क्या था, उसके पीछे व्यापार था और हमारी गुणवत्ता थी। तो अब ICAR ने अपने विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के साथ में कोलैबोरेशन करके एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया भारत सरकार ने, जिसमें देश की जितनी भी रिसर्च की लैब्स हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं पूरे देश की। ICAR सिर्फ अकेले नहीं काम करेगा, DST अकेले काम नहीं करेगा, DBT अकेले काम नहीं करेगा, हम इसरो के साथ भी हमारे कोलैबोरेशन होंगे। सो अब क्या होगा कि जैसे कोई भी रिसर्च का आउटपुट जो आएगा वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, बहुत जल्दी आएगा और वो बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। एक तो ये काम हो गया कि हमारी रिसर्च का हमारे इम्पैक्ट एनालिसिस से क्या काम चल रहा है, क्लाइमेट चेंज पे कैसे काम हो रहा है, इसके साथ साथ जो आपने बात बोली कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसकी चर्चा सिर्फ वैज्ञानिक नहीं करेगा, इसकी चर्चा आप जैसे सोशल रिफॉर्मर को भी करनी चाहिएगी। ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से भी हम देश के दुनिया के सेकेंड ओबेसिटी के देश बन रहे हैं। उसके पीछे देखिए हमारी दादी, नानी, माँ, बहन, पत्नी, बेटियां, बेसिकली यही हमारे डॉक्टर्स थे, इनके दिया गया जो पोषण था, जो हमारी रसोई थी, हमारी उस रसोई में प्रोसेस फूड कितना खाना है, फ्रेश फूड कितना खाना है, इस रेशो को कौन बताता है? इस रेशो को तो जो मार्केट में सब्जी लेने वाले दादाजी जाते हैं, पापा जी जाते हैं या हम जैसे लोग जाते हैं, उनको अपने उस सब्जी की थैली में अपना शेयर डिसाइड करना है कि इसमें प्रोसेस फूड कितना रहेगा और इसमें फ्रेश फूड कितना रहेगा। जब ये हम डिसाइड कर लेंगे तो अपने आप ही हमारे फ्रीजर में, हमारे रेफ्रिजरेटर में उसकी संख्या धीरे धीरे अनुपातिक रूप से कम रहेगी। देखिए, हमारे पास अचार हुआ करते थे, हमारे पास शहद हुआ करते थे, हमारे पास पापड़ हुआ करते थे, हमारे पास बड़ी हुआ करती थी, हमारे पास दालें हुआ करती थी, हमारे पास में सारी सूखी सब्जियां हुआ करती थी, ये भी भाई साहब प्रोसेसिंग का पार्ट था। अब प्रोसेसिंग का मतलब सिर्फ केमिकल के अंदर इम्प्रेसमेंट करके या डीप फ्राइंग करके या डीप फ्रीजिंग करके, वो प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं था, वो तो अपन को स्टोरेज की एक ऐसी विधि हो गई कि कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो वो भी यूज कर लो। सो हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, हमें उनकी रिवाइवल के ऊपर उन पर भी चर्चा करने की जरूरत है।
1: और निश्चित रूप से इस तरह की चर्चाएं चलती रहती है और यही एक विज्ञान संचारक का काम होता है। इसीलिए आकाशवाणी के जो प्रसारण केंद्र है वहाँ डेडिकेटेड साइंस सेल होता है, एक उसका ऑफिसर होता है, प्रोग्राम अधिकारी होता है, जो अपने हिस्से का काम करता रहता है कि किस तरह से विज्ञान की बातों को लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से स्थानीय लोगों की भाषाओं में पहुंचाते रहना चाहिए। मालविका जी, एजुकेशन में इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो एजुकेशनल ट्रेंड है वो कितना प्रभावी है बच्चों को शिक्षित करने और उनको जागरूक करने के लिए, एक दीर्घकालिक उनके फायदे के लिए और समाज के फायदे के लिए?
3: जिस समय कोविड का सब चल रहा था तो मैंने कुछ ऑनलाइन खेती के बारे में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको करिए, तो अब ऑनलाइन जुड़ तो गए सब, आप समझिए कितनी बड़ी स्क्रीन है, उस पे 100 बच्चा है, तो मैं क्योंकि क्लासरूम टीचिंग से हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर बच्चे का चेहरा दिखना चाहिए, जिससे कि मेरी बात वहां तक पहुंच रही है कि नहीं, इसको मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, ये जानूं। पर ऑनलाइन में अधिकतर कैमरे बंद रहते हैं और आपको पता नहीं होता, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स बन के रह जाता है कि आपकी अटेंडेंस लग गई है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 20 लेक्चर्स में जैविक खेती को मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। अब वो उन्होंने उसी में कैमरा एक दिन ले गए खेत के ऊपर और वहाँ खेत पर दिखाया कि देखिए ऐसी जमीन है, अब वो जमीन मैं आंख से देख रही हूँ, पर जमीन आंख से देखने की चीज नहीं होती, जमीन को फील करना होता है कि वो कैसी जमीन है, उसको फिर हम टेस्ट करेंगे कि क्या नेचर है उस जमीन का, और उसमें

0: क्या उगा सकते हैं। उस जमीन की टोपोग्राफी भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उस टोपोग्राफी के हिसाब से हम उसमें फसलें या जो भी पेड़ पौधे हैं वो उगाएंगे, हमारे फ्रूट्स उगाएंगे या सब्जियां उगाएंगे। कई बार होता है हम लेयर्ड फार्मिंग कर लेंगे या कुछ भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन में इस तरह की जो बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको लेके चलना। तो मुझे हमेशा लगता है कि इंट्रोडक्शन के लिए ठीक है, आपके अंदर की महत्वाकांक्षा को जगाने के लिए ठीक है ऑनलाइन क्लास, पर जब आप सच्ची में बहुत ज्यादा यदि आप फोकस्ड हैं और आप करना चाहते हैं तो कितनी भी प्रॉब्लम है आपको ऑन ग्राउंड होना पड़ेगा।
1: अमित जी, जब हम भारतीय प्रदेश में बात करते हैं जहाँ की हमारी इतनी सारी जैव विविधता है, इतनी तरह के फल है, हर क्षेत्र का एक फल विशेष भी है, और आपने पपीते पे भी काम किया है, अमरूद पे भी किया है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो फल है वो किस तरह से पौष्टिक है? और अगर हम तुलनात्मक रूप से अपने लोगों को, अपने जनता को, अपने छात्र छात्राओं को बताना चाहें तो किस तरह से बताएंगे कि ये फल इस तरह से महत्वपूर्ण है और उनको किस सीजन में फलों का सेवन करना चाहिए?
2: भारत भूमि को देखेंगे आप तो कश्मीर में केसर भी हो रहा है, कश्मीर के एकदम कॉर्नर में जाएंगे वहाँ खुबानी भी हो रहा है। किसी ने सीवक थॉर्न का नाम सुना है, इसको हम बद्री फल कहते हैं। सीवक थॉर्न लोगों को पता है, बद्री फल नहीं पता है। बद्रीनाथ में जाने वाले यात्रियों को बद्री फल मिला करता है। आप सोचिए उसमें की पी केमाइन करके एक सब्सटेंस होता है जो लोगों के इमोशनल सिंड्रोम को बैलेंस रखता है। अब उस हिली ट्रैक्ट पे भी भगवान ने ऐसा फल दिया है जो कि वहां पे आइसोलेशन में लोगों के घर रहते हैं, इंडिविजुअल लाइफ जीते हैं, एक एक किलोमीटर तक एक एक मकान होता है, तो वहीं पे एक ऐसा फल भी दे दिया कैप्सूल की तरह जो आपके इमोशनल उसको बैलेंस को मैनेज करके रख रहा है। के नीचे आएंगे आप लोगों को तो पूरा प्लेन का, तो उसमें आप आड़ू मिलेंगे, आपको बढ़िया नाशपाती मिलेगी, बाकी सारे अमरूद आपको 20 राज्यों में हो रहे हैं। सेब भी खाइए, सेब को सेब के सीजन में खाइए। जो किन्नौर का सेब होगा वो आपको नीचे लोअर बेल्ट के सेब में वो मजा नहीं आएगा, लेकिन लोअर बेल्ट के सेब में और भी बहुत सारे हैं। प्लम मिलेगा आपको, पियर मिलेगा, पीच मिलेगा, उसके और नीचे आएंगे लीची मिलेगा, मैंगो मिलेगा, बेर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है। जब हमारे पास में इतनी सारी डाइवर्सिटी अवेलेबल है तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं भाई? उनके रेट भी अच्छे मिल जाते हैं, रेट भी ऐसे नहीं है कि हमें कोई एक फल महंगा मिलता है बाकी सब सस्ते मिलते हैं। और नो डाउट हमारे उस समय जब एप्पल इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, एट दैट टाइम विट्सर्स वाज देयर, और विट्सर्स के रहने के कारण क्योंकि उनकी जलवायु एक ही टाइप की थी तो उनके पास में बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं था। लेकिन हम अगर मान लीजिए हम बोले कि हम तो इतने पुण्य भूमि में पैदा हुए हैं, क्यों अपने आप को सीमित रखें, हमको तो सारी चीजें खानी चाहिए। मजे की बात यह है कि जितने भी आपके ड्राई एरिया के फ्रूट्स हैं वो मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं।
0: देखिए हमारे जो भी घर में पूजा पाठ कहीं भी होती है, पांच फल चढ़ाना है तो वो सीजनल पांच फल चढ़ेंगे, ड्राई फ्रूट्स है तो ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ेंगे। तो ये क्या है, इस बहाने आप वो सब चीजें खाते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन मिलेगा, और चढ़ाएंगे वही जो वहाँ मिलेगा कहीं दूर से। तो
2: अपनी डाइट में शहद कम कर दिया, बल्कि हमारे पास में दुनिया का सबसे बड़ा मिशन चला पड़ा है, शहद के ऊपर मिशन चला पड़ा है। केसर हमारे पास में बहुत, हमारे महिलाएं जो आज की महिलाएं, कितने लोग जानते हैं कि जायफल को किसके कब खिलाना होता है, कब अपन को छुआरे को किसके खिलाना है, मुनक्के का क्या काम है, दाग का क्या काम है? इसके कारण हमारी दवाइयों की दुकानों पर चक्कर ज्यादा हो रहे हैं। हर छोटी छोटी बीमारियों में हम अपने ट्रेडिशनल विजडम को छोड़ के हम केमिकल विजडम पे जा रहे हैं। हमको बैलेंस रखना है, मेरा ये कहना है।
1: डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी और मालविका जोशी जी, जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया।
0: बहुत धन्यवाद।
3: पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए वैज्ञानिक जागरूकता, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी और शिक्षाविद, कहानीकार और सांस्कृतिक विशेषज्ञ मालविका जोशी। परिचर्चा का

قد جاءكم بصائر

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे मेरे सनम फिल्म से ये गीत। और साथियों, आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन, जिसे आप सुनते हैं रोज 12:10 पर हमारे साथ यहीं FM गोल्ड 100.1 MHz पर। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आपकी क्रिया, आपकी प्रतिक्रिया, हर बात हमारे लिए अनमोल होती है और ये जानने के लिए हम हमेशा प्रतीक्षारत होते हैं। तो आपके लिए, आपके संदेशों को पाने के लिए हमारा एक दरवाज़ा है जो आपके पास तक पहुंचता है, और वो दरवाज़ा है fmgoldga@gmail.com, जहां पर हम प्रतीक्षा करते हैं आपके संदेशों की, आपके मेल्स की, कि आप बताएं आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। और देखिए, इसी प्रतीक्षा में हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो हैं नवीन भाटिया जी मोती नगर नई दिल्ली से, जो कहते हैं कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिले, लेकिन हर सफलता के कारण कोशिश ही होती रहे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप करते जाइए कोशिश और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल सही बात आपने कही। उसी तरह हमारी नियमित श्रोता साथी हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, जो शांति नगर सोनीपत से हैं। उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने एक बात और कही है कि सफलता मेहनत से मिलती है, किस्मत से नहीं। बहुत खूब फरमाया आपने सिमरन जी और सुदर्शन मुखी जी, ये बात सचमुच में बहुत सही है कि अगर हम प्रयास करते रहें निरंतरता के साथ, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। तो सुनते रहिए आप हमारे साथ और करते रहिए ये बातें कि कैसे हम आगे बढ़ें आपको लेकर। चलिए चलते हैं और सुनते हैं आपके लिए ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर और रफी की आवाज में आप सुन रहे थे दूसरा आदमी फिल्म से ये गीत। दोस्तों, जितनी तेजी से हमारी जलवायु बदल रही है उतनी ही तेजी से पर्यावरणीय प्रभाव भी नजर आ रहे हैं। देखिए ना, दिल्ली एनसीआर सहित लगभग पूरे देश में हीट वेव्स के आसार भी बन रहे हैं, वो भी मई महीने की शुरुआत में। सोचिए ना, क्लाइमेट क्राइसिस की चिंता पूरी दुनिया का विषय है, पर जानते हैं आज समस्या की नहीं, हम समाधान की बात करेंगे। समाधान को जीवन का ध्यान बनाने वाली उस शख्सियत की बात करेंगे जिन्हें लोग प्यार से जनक दीदी कहते हैं। जी हाँ, वो हैं पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा मैक गिलिगन। पर्यावरण संरक्षण जिनकी कवायद नहीं बल्कि जीवन शैली है। वो रहने वाली तो इंदौर की हैं, लेकिन पहचान पूरे देश की बन चुकी हैं, क्योंकि उनका घर और उनकी जीवन शैली जीरो वेस्ट का प्रमाण बन चुके हैं। वहां न कचरा है न बिजली का बिल आता है, क्योंकि पवन चक्की और सौर कुकर से चलने वाला उनका घर खुद को ही रोशन नहीं करता बल्कि आसपास के 50 घरों तक रोशनी भी बिखेरता है। उनके बगीचे में हैं करीब 160 पेड़ और 13 तरह की फसलें भी। इतना ही नहीं बल्कि अब तक वे 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं और 6,000 से अधिक ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सौर ऊर्जा, स्वच्छता और सस्टेनेबल जीवन की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। इस योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। सभी प्यार से उन्हें जनक दीदी कहते हैं, क्योंकि माँ की तरह वो सिखलाती हैं प्रकृति के साथ तालमेल और कम में खुश रहने की कला। प्रकृति हमें सब देती है दोस्तों, अब लौटाने की बारी हमारी है। इसलिए चलिए आज यहीं से प्रण करें कि पर्यावरण प्रेम सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि पानी बचाने, प्लास्टिक घटाने और प्रकृति मित्र बन जीवन को अपनाने में भी लगाएंगे।

0: आन मिलो सजना, इस फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन रहे थे साथियों ये गीत। और दोस्तों, छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जैसे गर्मियों के इस मौसम में छोटी सी एक आदत हमारी जो है वो पारंपरिक आदत की मैं आपको बात बताने जा रही हूँ और याद दिलाने भी जा रही हूँ, जिससे आपकी राहत और सुकून भी जुड़े हुए हैं। और वो है इको फ्रेंडली पारंपरिक हथपंख, यानी बचत और स्वास्थ्य का संगम। हाथ का पंखा, एक ऐसा जुगाड़ जो सिर्फ हवा नहीं, समझदारी की ठंडी मिसाल भी कहा जा सकता है। इसे प्राकृतिक ताड़ के पत्तों, बांस या खजूर के पत्तों से बनाया जाता है। और पारंपरिक हथपंख जो ये होते हैं, ये पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि इको फ्रेंडली हैं। जरा सोचिए, जब बिजली कट जाए या वहीं पे ये देसी साथी काम आ जाता है, और जो सिर्फ आपकी बचत नहीं करता बल्कि हाथ की हल्की हल्की एक्सरसाइज या गतिविधि भी करवाता है, जिससे आप एक्टिव बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि लघु और कुटीर उद्योग से जुड़े जो ग्रामीण कारीगर हैं, उनकी आजीविका का माध्यम भी यही होते हैं। तो ये जो हाथ के पंखे हैं, यदि हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उन कुटीर उद्योग से जुड़े ग्रामीण कारीगरों की भी मदद कर रहे होते हैं। यानी छोटी सी खरीदारी किसी परिवार की बड़ी मदद बन सकती है दोस्तों। और ऐसे में हमारे घरों में ये परंपरा तो पहले से चली आ रही थी, पर चूंकि हम बहुत ज्यादा सुविधा भोगी हो चुके हैं, इसलिए हम भूल रहे हैं इन बातों को। और यही मेरी कोशिश है कि हम फिर से याद करें इन बातों को, इन समाधानों और इन परंपराओं का पालन करने की ओर हम आगे बढ़ें, पर्यावरण की मदद भी करें, सेहत की देखभाल और वोकल फॉर लोकल हुनर, यानी तीनों को सपोर्ट करने वाला ये रास्ता हम अपनाएं। तो इस गर्मी थोड़ा देसी बनते हैं, जब लाइट गुल हो जाए तो एक्सरसाइज करते हैं। क्या कहना है आपका?
1: पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा कि ही यारा में उठे ते हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में

0: साथियों, ये अंतिम गीत आप सुन रहे हैं गोदान फिल्म से, और इसी के साथ घर आंगन कार्यक्रम से आप अपनी दोस्त अपनी होस्ट मनीषा बोस को दीजिए अनुमति। अपना ख्याल रखिए, अलविदा, नमस्कार। घर आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
2: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगणन कर्मी का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के पहले दो घंटों में 16% से अधिक वोट पड़े। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती और जैसे ही उनका नाम आता है सुनते ही दिल सीधे हमें अपने कॉलेज के दिनों में ले जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक फिल्म की जिसने ना तो सिर्फ यारी दोस्ती को खूबसूरती से दिखाया बल्कि स्पोर्ट्स के जोश और जुनून को भी बड़े ही शानदार तरीके से पेश किया। ये कहानी है सपनों की, खुद को साबित करने की और उस जज्बे की जो हार मानना नहीं जानता। 90s का वो दौर जब ये फिल्म आई और हर यंग दिल की धड़कन बन गई। इसकी कहानी में हर किसी को अपना एक हिस्सा दिखा, किसी को दोस्ती दिखी, किसी को प्यार और किसी को अपनी स्ट्रगल और खुद को आगे बढ़ाने की चाह। इस फिल्म को आमिर खान के कज़िन मंसूर खान ने डायरेक्ट किया था और चाचा नासिर हुसैन ने फिल्म को प्रोड्यूस की थी और कहानी भी नासिर हुसैन और मंसूर खान ने मिलकर लिखी थी। सिनेमाटोग्राफी नजीब खान की थी और एडिटिंग जफर सुल्तान और दिलीप कोटलगी ने संभाली।

श्रोताओं, कहा जाता है कि ये कहानी हॉलीवुड फिल्म ब्रेकिंग अवे से इंस्पायर्ड थी, लेकिन जिस तरह से इसे भारतीय अंदाज में ढाला गया वो इसे बिल्कुल अलग बना देता है। और अगर कहा जाए कि ये 90s की सबसे यादगार स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में से एक है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर की। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है जो जीता वही सिकंदर। तो श्रोताओं, आप हमें मेल कीजिए iPRADIODELHI@gmail.com पे और बताइए कि आपको इस फिल्म का कौन सा सॉन्ग सबसे ज्यादा पसंद है। और हाँ, क्या आपको भी ये फिल्म, अगर आपने देखी है तो देखने के बाद क्या आपको अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं या नहीं? मुझे तो आते हैं भाई। तो अगर आपको आते हैं और आपका पसंदीदा सॉन्ग क्या है वो हमें मेल जरूर कीजिएगा।

जी हाँ श्रोताओं, फिल्म जो जीता वही सिकंदर का ये टाइटल ट्रैक यहाँ के हम सिकंदर, इंग्लिश रॉक बैंड द हू का मशहूर गाना पिनबॉल विजर्ड से प्रेरित माना जाता है। अगर आप पिनबॉल विजर्ड सॉन्ग ध्यान से सुने तो आपको इस प्रेरणा की झलक साफ महसूस होगी। आइए अब इस फिल्म के कास्टिंग से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। मुख्य भूमिका में नजर आए थे आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, माम

सिंह, पूजा बेदी और कुलभूषण खरबंदा, और इनके साथ सहायक भूमिकाओं में असरानी, देवेन भोजानी और आदित्य लाखिया थी। शुरुआत में विलन शेखर मल्होत्रा का जो किरदार था, मिलन सोमन निभा रहे थे और उन्होंने फिल्म का लगभग 75% शूटिंग भी पूरी कर ली थी, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद ये रोल दीपक तिजोरी को मिला। दिलचस्प बात ये है कि इस किरदार के लिए अक्षय कुमार ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उनके जो फुटबॉल सीन को देखते हुए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। हीरो के तौर पर आमिर खान पहले से ही तय थे, लेकिन उनकी हीरोइन को लेकर काफ़ी बदलाव हुए। शुरुआत में गिरजा सेट्टार को कास्ट किया गया था और उन्हें आप एक सॉन्ग जवां हो यारों में देख सकते हैं, उनके कुछ शॉट्स भी उस गाने में हैं, मगर निर्देशक मंसूर खान उनके अभिनय से खुश नहीं थे, इसलिए उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म के मुख्य भूमिका अंजलि के लिए जूही चावला को ऑफर मिला था, लेकिन डेट्स ना होने की वजह से बात नहीं बनी। फिर प्रतिभा सिन्हा और नगमा को भी अप्रोच किया गया, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्होंने भी फिल्म नहीं की। आखिरकार ये रोल आयशा जुल्का को मिला और उन्होंने इसे यादगार बना दिया। इन सभी बदलाव की वजह से फिल्म लगभग 80% हिस्सा दोबारा शूट करना पड़ा, जिससे इसकी लागत और मेहनत दोनों बढ़ गई। एक और खास बात, इस फिल्म में आमिर खान के भतीजे इमरान खान ने बाल कलाकार के रूप में छोटे आमिर खान का किरदार निभाया था, जो उनका शुरुआती स्क्रीन डेब्यू भी था। कुल मिलाकर इस फिल्म की कास्टिंग में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर कलाकार ने अपने किरदार को बेहद खूबसूरती से निभाया और यही वजह है कि फिल्म आज भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज की जो फिल्म है वो है जो जीता वही सिकंदर। तो श्रोताओं आइए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। देहरादून के अलग अलग कॉलेजों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा और उसी के बीच एक बड़ी साइकिल रेस, यहीं से शुरू होती है जो जीता वही सिकंदर की कहानी। मॉडल कॉलेज के रतन यानी मामिक सिंह और राजपूत कॉलेज के शेखर यानी दीपक तिजोरी के बीच मुकाबला होता है जिसमें रतन हार जाता है। वहीं रतन का छोटा भाई संजू यानी आमिर खान एक बेफिक्र मस्तीखोर लड़का जिसकी जो जिंदगी को हल्के में लेता है, लेकिन एक हादसा जब कुछ सब कुछ बदल देता है। रतन के घायल होने के बाद संजू पहली बार जिम्मेदारी समझता है और फिर अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए वो साइकिल रेस में उतरता है। कड़ी मेहनत, संघर्ष और हिम्मत के साथ आखिरकार संजू वो कर दिखाता है जो सबको नामुमकिन लगता है। वहीं शेखर को हार कर जीत हासिल करके अपने परिवार और कॉलेज का नाम रोशन करता है। यही है उस कहानी की असली जीत, जब एक लापरवाह लड़का जिम्मेदारी निभाते हुए सिकंदर बन जाता है। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है जो जीता वही सिकंदर। श्रोताओं, अब इस फिल्म के गाने, म्यूजिक और सिंगर्स के बारे में बात करें तो जतिन ललित का ये एल्बम उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल और आदित्य नारायण, साधना सरगम, अलका याग्निक, अमित कुमार, विजेता पंडित और जतिन पंडित जैसी आवाजों ने इन गानों को खास बना दिया। यही वजह है कि इस फिल्म का हर गाना आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है। और अब बात करते हैं इस एल्बम के सबसे आइकॉनिक गाने पहला नशा की। ये गाना उस दौर का एक अलग ही फील लेकर आया था और देखते ही देखते एक कल्ट सॉन्ग बन गया। और अब इससे जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा हम आपको बताते हैं कि इस गाने की कोरियोग्राफी सरोज खान ने की थी, लेकिन किसी कारणवश वो इस गाने की शूटिंग के दौरान मौजूद नहीं रह पाई। उस वक्त फराह खान उनके साथ असिस्ट कर रही थी, तो उन्होंने ही इस गाने की कोरियोग्राफी संभाली। पूजा बेदी डांसर नहीं थी तो उन्हें डांस करवाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए फराह ने एक क्रिएटिव तरीका निकाला। उन्हें कार पर खड़ा किया और फैन से उनके ड्रेस पर हवा मारी, और स्लो मोशन में आमिर खान का कूदना, दौड़ना और डांस करना दर्शकों को इतना पसंद आया कि ये सीन आइकॉनिक बन गया। सच कहे तो इस गाने से फराह खान को एक कोरियोग्राफर के तौर पर पहचान मिलना शुरू हुई। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं इसी खूबसूरत गीत को।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारे पास आपके मेल आ चुके हैं तो हम फटाफट आपके मेल पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित गोस्वामी का। राम बालक दास पश्चिम बंगाल कोलकाता हुगली जिला गोराब स्टेशन बाजार से लिखते हैं। नमस्ते राखी बैनर्जी जी, मैंने पहली बार आपका प्रोग्राम एक ही फिल्म से ट्रेन में सफर के दौरान सुन रहा हूं। अच्छा लग रहा है। इस फिल्म को देखने से कॉलेज के दिनों की मस्ती की बात याद आ जाती है। इस फिल्म का सुमधुर गीत मुझे भाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ट्रेन में बैठे हुए भी हमारा गीत प्रोग्राम सुन रहे हैं। और ये हैं संजय साहू पोटली कला दुर्ग से, और पहाड़गंज मुल्तानी ढाड़ा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक जी हैं हमारे साथ। और ये हैं हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटा पारा से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज फिल्म जो जीता वही सिकंदर, फिल्म से जुड़ी रोचक जानकारियां व इस फिल्म की बेहतरीन गीत सुनने को मिला, यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा एक ही फिल्म से जो जीता वह सिकंदर ये कहते हैं कि ये भी सुन रहे हैं और इनको अच्छा लग रहा है। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा दंतरेगी से। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी हैं। और ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार जी। और ये है विरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सनी भावसार। और ये लिखते हैं कि ये जो जीता वह सिकंदर के इनको सारे ही गाने बहुत पसंद हैं। और ये है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। ये लिखती हैं रेस्पेक्टेड राखी बैनर्जी जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्थी सैटरडे, गुड आफ्टरनून, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम एंड टुडे योर डिस्कशन ऑन जो जीता वही सिकंदर मूवी, सॉफ्ट स्वीट प्रेजेंटेशन, रेयर एंड वैल्यूएबल फिल्म नॉलेज एंड हिट सॉन्ग्स ऑफ नॉटी 90s एरा। योर बिग थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच टू यू टू। और ये है ज्योति मक्कर, संदीप, मन्नत भारत और कमल सहानी जी। और ये है राजकोट से परवीन बानो, रेशमा बानो, शकीला बानो, आसमा सुल्तान, सायरा बानो सुल्तान। तो श्रोताओं, ये थे हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के मेल, और थोड़ा सा कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें मैं आपको बताती हूँ कि फिल्म की कहानी भले ही देहरादून पर आधारित है और शुरुआत में वहाँ के कॉलेजों का जिक्र भी होता है, लेकिन असल में इनकी ज़्यादातर शूटिंग खूबसूरत लोकेशन ऊटी में की गई थी। और अगर आपने जवा हो यारो गाना ध्यान से देखा होगा तो उसमें एमटीवी की पूर्व वीजे मारिया गोरेटी भी एक छोटे से डांस रोल में नजर आती हैं। वहीं अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म ने अपनी छाप वहां भी छोड़ी। नासिर हुसैन को फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड मिला, और वहीं जफर सुल्तान और दिलीप कातलगी ने बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड अपने नाम किया। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। ये एक हिट फिल्म रही भले ही उस वक्त इसे ब्लॉकबस्टर ना कहा गया हो, लेकिन पहला नशा जैसे गाने और दिल को छू लेने वाली कहानी की वजह से ये धीरे धीरे एक कल्ट क्लासिक बन गई और आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह से बसी हुई है। तो चलिए चलते हैं, इस प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनते हैं।

दोस्तों, जो जीता वही सिकंदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि दोस्ती, प्यार, हार जीत और खुद को साबित करने की एक खूबसूरत कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हर बार देखने पर वही कॉलेज की पुरानी यादें ताज़ा कर जाती हैं। इसी के साथ आज का ये खास सफर यहीं ख़त्म होता है, लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी की रेस में वही सिकंदर है जो हार कर भी जीतना जानता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए गीत और गुनगुनाते रहिए संगीत।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को अहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के दो असम्बली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों के नए सिरे से तश्कील की है। भारत और नेपाल ने आइंदा मॉनसून से पहले सैलाब की पेशगोई के मॉडल के बारे में आज तबादले ख्याल किया। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और आज शाम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जोय मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने हिदायत दी कि इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। यह फैसला तृणमूल कांग्रेस के लिए एक धचका समझा जा रहा है जिसने इस इकदाम को अदालत में चैलेंज किया था। समाअत के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि अफसरान के इंतखाब का इख्तियार इंतखाबी कमीशन के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि हर काउंटिंग टेबल पर पहले से ही एजेंट्स, सुपरवाइजर्स और मुशाहिदीन मौजूद होते हैं, इसलिए मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की मौजूदगी पर एतराज की वजह समझ से बालातर है। कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग अफसरान रियासती हुकूमत के मुलाजमीन होते हैं, इसके अलावा दीगर अमले की तकरूरी के जिम्मेदार भी वही होते हैं। कमीशन ने अदालत को मुत्तला किया कि सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन तक महफूज रखा जाएगा। अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इरादा किया कि चुनाव कमीशन के सर्कुलर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल में जुनूबी 24 परगना जिले की 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग के दौरान वोट डाले जा रहे हैं। तफसील हमारे नामनगार से।
1: मगरबी बंगाल में मगरा घाट पश्चिम इलाके की 11 बूथों और डायमंड हार्बर हल्के की 4 बूथों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% पोलिंग दर्ज की गई। मजमुई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। एक और पेशरफ्त में सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस की अर्जी को खारिज कर दिया था। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीबुर रहमान।
0: केरलम में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। वहां अप्रैल की 9 तारीख को 140 हलकों में वोट डाले गए थे। आला चुनाव अफसर रतन यू केलकर ने बताया कि 43 जगहों पर बनाए गए तमाम 140 वोट शुमारी मरकजों पर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस काम के लिए मजमूई तौर पर 15,465 अहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, माइक्रो मुशाहिद, वोट शुमारी के लिए निगरान और असिस्टेंट शामिल हैं। सबसे पहले डाक से आने वाले वोटों की गिनती की जाएगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में रिकॉर्ड किए गए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों की असरे नौ तश्कील की है। लोकसभा के बीजेपी के मेंबर डॉक्टर संजय जायसवाल को तखमीना कमेटी का सरबराह बनाया गया है। इस कमेटी में ऐवान जेरी के 30 मेंबर शामिल हैं। बीजेपी के ही मेंबर बैजनाथ पांडे सरकारी इदारों से मुतालिक कमेटी के सरबराह होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबरों पर मुश्तमिल है। जनाब बिरला ने लोकसभा के कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल को सरकारी हिसाब किताब से मुतालिक कमेटी का सरबराह मुकर्र किया है। इस कमेटी में 15 मेंबर लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होंगे। दर्ज फहरिस्त और कबीलों की फलाह बहबूद से मुतालिक कमेटी के सरबराह लोकसभा के बीजेपी के मेंबर फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 मेंबरों पर मुश्तमिल होगी। कमेटी की मुद्दत इस महीने की पहली तारीख से अगले साल 30 अप्रैल तक होगी। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मकानात की फेहरिस्तबंदी और मकानात की गिनती के अमल के लिए कल से फील्ड ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये काम इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। मर्दमशुमारी 2027 के तहत अज खुद शुमारी की सहूलत दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में कल से शुरू हो गई। ये ऑनलाइन सहूलत इस माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी। इसी दौरान बिहार में 2027 की मर्दमशुमारी का पहला मरहला आज से शुरू हो गया है। वहां भी मकानात की फेहरिस्तबंदी की जाएगी। दूसरा मरहला अगले साल फरवरी में शुरू होगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा एमपी संदीप पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में आम आदमी पार्टी के 6 दिगर राज्यसभा अरकान के हमरा बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद पंजाब की सियासत में एक नई हलचल पैदा हो गई। जराए के मुताबिक पंजाब के 2 जिलों में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, ताहम दोनों जिलों के नाम अभी तक सरकारी तौर पर जाहिर नहीं किए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। काठमांडू में कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के बारे में मुश्तरका कमेटी की 11वीं मीटिंग जारी है। ये मीटिंग अप्रैल की 30 तारीख को शुरू हुई थी। दोनों मुल्कों के हुक्काम तफसीली तबादले ख्याल में हिस्सा ले रहे हैं और कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के तवील अरसे से चले आ रहे तकनीकी और इंतजामी उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए आफात से मुतालिक फौरी इंतबाही खिदमात फराहम करने की गरज से मुल्क में ही तैयार करदा टेक्नोलॉजी पर मबनी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस निजाम की जांच के लिए आज दोपहर शहरियों के मोबाइल फोन पर सायरन के साथ एक नोटिफिकेशन भेजा गया। जांच के दौरान भेजे गए पैगाम में कहा गया था, अलर्ट सिटीजन्स सेफ नेशन। इस पैगाम पर आवाम की जानिब से कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक आजमाइशी पैगाम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर लोगों को मोबाइल फोन पर ऐसा पैगाम मौसूल हो तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह भारत के मोबाइल पर मबनी आफात से मुतालिक नए मुवासलाती निजाम का पैगाम है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आसाम, मेघालय, सिक्किम, जैली, हिमालयी मगरबी बंगाल में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कौमी राजधानी में आज सुबह कम से कम दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यहां हल्की बारिश के बाद 2 दिन तक दर्जे हरारत में कमी

0: रही। आईएमडी ने अगले 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे ज्यादा रन के निशाने को पार करके जीत हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को अहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के 2 असेंबली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों की नए सिरे से तश्कील की है। काठमांडू में कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के बारे में मुश्तरक कमेटी की 11वें मीटिंग में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Supreme Court declines to interfere with Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. Says choice of officials rests with the Election Commission. Re-polling underway at 15 booths of 2 assembly constituencies of West Bengal. Over 55% voter turnout reported till 1 p.m. Lok Sabha Speaker reconstitutes 4 parliamentary committees for the year 2026-27. India and Nepal discuss flood forecasting model ahead of the upcoming monsoon season. IMD forecast heavy rainfall over several parts of northeast and peninsular India during the next 2 days. And in IPL cricket, Chennai Super Kings to take on Mumbai Indians this evening. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joy Mallya Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. During the hearing, Justice Bagchi observed that the choice of officials rests with the Election Commission. He noted that every counting table already has agents, supervisors and observers and questioned concerns over the presence of central government employees. The Election Commission told the court that the circular clearly provides for a mix of central and state government employees. It said the apprehension of the Trinamool Congress regarding any wrongdoing is misplaced. The bench, which held a special sitting, said the Commission can also choose counting personnel from a single pool, including central government staff, and its circular cannot be faulted. In its order, the Apex Court reiterated that the Election Commission's April 13 circular must be implemented in letter and spirit. Earlier, the Calcutta High Court had dismissed the TMC's petition, stating that there was no illegality in the Election Commission's decision to appoint counting supervisors and assistants from central government and public sector undertaking employees instead of the state government staff. Re-polling is underway at 15 booths in South 24 Parganas district in West Bengal. Of these, 11 booths are in Paschim Magrahat and 4 are in the Diamond Harbour Assembly constituency. The Election Commission had recorded the overall voter turnout of nearly 56% till 1 p.m. Magrahat Paschim registered 56.33% voter turnout, while in Diamond Harbor,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवी के पार्टी के बीच

0: त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
3: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास

0: हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित

0: आयोजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार, कहा अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। प्यारा सा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब आपको और स्वागत सभी सुनने वालों का। एक बार फिर से एक ही कलाकार लेकर आई हूँ मैं, लेकिन पहले ये गीत मैं आपको सुनवाऊंगी और आप खुद ही आज अंदाजा लगा लेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं और आप खुद ही हमें बता देंगे कि आज का कलाकार कौन है

अब आपको भी इजाजत है, क्या बता सकते हैं, एक मेल आया हमारे पास, सुनैना गुप्ता, नीना गुप्ता, रेखा गुप्ता और ये है ऋतु गुप्ता का, और ये मेल है टैगोर गार्डन से, और इन्होंने बता दिया है सबसे पहले कि आज हम किसे ले रहे हैं। आज हम ले रहे हैं शाइनी आहूजा को। बिल्कुल सही जवाब है आपका, और हम इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं आज। शाइनी आहूजा का जन्म 15 मई 1975 को नई दिल्ली में हुआ था, और इनके पिता भारतीय सेना में थे, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा रांची के सेंट जेवियर्स स्कूल से हुई, और बाद में उन्होंने नई दिल्ली में धोला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की, और उनकी शुरुआती योजना जो थी वो सशस्त्र बलों में शामिल होने की थी। 1992 से 1996 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे थिएटर की ओर आकर्षित हुए, और दिल्ली बैरी जॉन्स एक्टिंग स्कूल में भी दाखिला उन्होंने ले लिया।

और उन्होंने अपने अभिनय की जुनून को कॉलेज के दौरान विकसित किया और अभिनय कौशल के दम पर दिल्ली विश्वविद्यालय के थिएटर कोटा में प्रवेश किया और 1996 के कुछ समय बाद वे मुंबई चले गए और फिल्मों में पदार्पण करने से पहले शाइनी आहूजा ने मॉडलिंग और कुछ विज्ञापनों में भी काम किया। इसके बाद वे ब्रिटिश एशियाई बैंड स्टीरियो नेशन के एक संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए।

शाइनी आहूजा, इसके इस बारे में तो आपसे बात हो ही रही है। और मीरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर का एक मैसेज आया, उन्होंने भी कहा है हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आज जो नगमे सुना रही हैं शाइनी आहूजा के बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाइनी आहूजा ने समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी से अपने अभिनय की कैरियर की शुरुआत की। ये फिल्म 2004 में विभिन्न फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुई और 2005 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई।

और फिल्म में शाइनी आहूजा को खूब प्रशंसा दिलाई और इस वर्ष उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में काम किया। 2006 में यानी आहूजा को एक अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, IIF अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स और स्टारडस्ट अवार्ड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ मेल डेब्यू का पुरस्कार दिया गया।

और उन्होंने गैंगस्टर वो लम्हे 2006, लाइफ इन मेट्रो 2007 और भूल भुलैया 2007 जैसी सफल फिल्मों के साथ खुद को एक दमदार अभिनेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि उनके दर्शकों के बीच करम 2005 से अधिक पहचान मिली, जिसमें उन्होंने जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया था।

और शाइनी आहूजा को खास तौर पर 2006 में परवीन बॉबी और महेश भट्ट की जीवन कहानी पर आधारित फिल्म वो लम्हे में कंगना रनौत के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म को इसकी पटकथा, कंगना के अभिनय और प्रीतम के संगीत के लिए काफी सराहा गया।

आज शाइनी आहूजा बॉलीवुड से पूरी तरह दूर है। शाइनी आहूजा आखिरी बार पर्दे पर वेलकम बैक में नजर आए थे और अब फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर

और अगली बार फिर किसी कलाकार की बात करेंगे। आज बस इतना ही, हमें यूं ही सुनते रहिए सिवादी के साथ कि अगली मुलाकात के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब हमारे कार्यक्रम का वक्त हुआ है ब्रज माधुरी का, तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: चंपा जी,
1: हाँ
0: देखो जेठ मास को समय चल रहे हो है, एक रस बड़ो बरस रहे हो ब्रिज में, अगर ध्यान दिए हो तो।
1: अरे आप ही ध्यान दवाई दो।
0: अरे चंपा, तनिक याद करो तो सही कि ब्रज भाषा के कविवर बिहारी भाई है ना,
1: हाँ हाँ
0: उनने यह रस को बड़ो सुंदर वर्णन करो है। वे लिखे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सोह करे भोहन हसे देन कहे नट जाए।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, यही तो लीला है ब्रज की।
0: हाँ, जब गोपी उनको जब बात करनी हो ना कन्हैया ते, तो बात करवे को जो बतरस है वाकई ताई वो कछु न कछु कोई ऐसा माध्यम बना ले है।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, यही ते तो बहानो बनानो के में है। और आप देखो कन्हैया के प्रति ना ब्रज गोपीन को जो भाव है, वहाँ पे ना अटूट प्रेम की प्रधानता है, और प्रेम ऐसो है कि वहाँ में बड़ी निश्चल भक्ति है।
0: गोपीन के प्रेम में कोई बहाने जैसी चीज है ही ना।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, आप जो या निष्काम प्रेम की बात कर रहे हो ना, तो माखन चोरी लीला तो कन्हैया की ऐसी बाल लीला है के वा में आप देखो के गोपी यशोदा मैया थे के में उल्हानो दे में और तानो मारे, वे तो ये कह में कि नंद रानी जी हम तो आपके लाला थे, कनुआ थे, कछु ना के में कैसी हूँ कहा सोनी ना करें, पर ये हमारी गगरियान को तोड़ डार है, फोड़ डार है, हमारे ददी माकन को फैलाए दे, लुटाए दे, अपने ग्वाल वालन को खवाए दे।
0: चंपा, आप जो बात कह रही हो ना, ये गोपी जाएं उरहानो दें,
1: हाँ।
0: और तनिक सोचो तो सही, कन्हैया तो साफ मना कर दें, कहे मैया ते देख मैया मैंने तो कछु कही ना है।
1: सांची सांची कह में।
0: हाँ बिल्कुल, सांची सांची कहे कि मैंने तो कछु ना है कही, ये सबरी गोपी झूठ बोले, और मैया तो को ना समझ में आवे कि ये बहाने ते तेरे पास आमे।
1: तो नृत्य गोपाल जी देखो, याई के काजे तो ब्रज में एक कहावत है ना, मक्खन खायो मटकी फोरी और उल्हानो देत।
0: हाँ
1: गोपिन को ना अधिकार और प्रेम दो है कन्हैया पे।
0: यशोदा मैया ते एक दिन कह बैठी, अपनो गांव लेओ नंदरानी, हम कहूं अनत बसेंगे जाए।
1: हाँ।
0: बोले हमें तो इतना तंग कर रहे हो कन्हैया, तुम अपने गांव में अपने पास ही रख लो।
1: तो यहाँ में भी जो व्यवस्था है ना, ये सांची ना, ये व्यवस्था प्रेम में ही है।
0: जी
1: और
0: हाँ।
1: कहीं ना कहीं ये भाव भी निकल के आवे है के कान्हा गोपीन के घरों आए और उनको मार्ग में भी मिल गए, और गोपीन ने कन्हैया के जो दर्शन की लालसा है, कन्हैया के जो प्रेम की लालसा है, बामे वे खिंची चली आई है नंदे भवन तक।
0: अजी तनिक देखो तो सही, कितना प्यारो से लोकगीत गायो जाए, इकली घेरी वन में आज शाम तिन कैसी ठानी रे। और चंपा जी देखो, मुकु या समय सूरदास को

0: पद याद आ रहे हो, आप कहो तो मैं सुना दूं।
1: हाँ सुनाओ।
0: गोपी जाए मैया यशोदा के पास और कन्हैया की करतूतन की बात कहते वही कहे हैं, तेरे लाला ने मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढ ढंडोर आप ही आयो, खोल के बार पैठ मंदिर में दूध दही सब सखन खवायो, उखल चढ़ सीके को लीनो, अनभावत भूई पे ढरकायो, दिन प्रति हान होत गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हठक न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो।

प्यारी भैया बहनाओं, अभी आप ये मनभावंशी भक्ति रचना मदन मोहन ब्रजवासी जी के मधुर स्वर में सुन रहे हते नृत्य गोपाल जी। देखो, ब्रजराज कृष्ण की बाल रूप माधुरी है ना, और उनकी बाल लीला है, वहां में उनके ग्वाल हैं, गोपी हैं, ब्रजवासी हैं, ब्रज गोपी।

0: हैं या उनके माता पिता नंद हों या यशोदा हों, हैं उन सबको जो एक समावेश है उनके परिकर में, हर काऊ की भावना ते यही प्रतीत होवे है कि काऊ ना काऊ बहाने ते, काऊ ना काऊ बात ते, हर कोई है ना बालक कृष्ण को सामिप्य चाहवे है।
1: जी चंपा, देखो गोपी जब जाए उरानो देवे, तो आपने जो मैया यशोदा की बात कही है ना, देखो कितनो बढ़िया सो उनको भाव है। वे गोपीन ते कहे कि गारी मत दीनो मु गरीब नी को जायो री, जे तो जाको खायो ते तो तोल तोल लीनो, पर गारी मत दीनो मु गरीब नी को जायो री। तो भी यो कहे कि कन्हैया ने माखन खा लियो होगो, जितनो जाको खा लियो है मु पति दुगनो ले जाओ, पर मेरो कन्हैया मैंने बड़े वृद्धावस्था में देखो है, या कु गाड़ी मत दीनो।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, और ये ही है ना जो अमर प्रेम की जो ऐतिहासिक गाथा है, और यही के आकर्षण में बंध के ना आज हर कोई ब्रज धरा की ओर बार बार जावे है। तो नृत्य गोपाल जी देखो, ब्रजराज कन्हैया की बाल लीलान की इतनी बात चल रही है, तो कछु ऐसे ही विषय की ओर अपने श्रोता भैया बहनान को ले चलें।
1: जी हाँ चंपा, और आनंद आ जाएगा।
0: तो आओ प्यारी भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये वार्ता जाको विषय है अष्ट छाप के कवियों का कृष्ण रूप माधुरी वर्णन। या वार्ता को आलेख लिखो है मोनिश कमल ने और वाचन स्वर है नृत्य गोपाल जी को।
1: ब्रज माधुरी सुनवे वाले श्रोतान को मोनिश कमल की राधे राधे। श्रोताओ, मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्य में वल्लभ संप्रदाय के 8 कविन को बड़ो महत्व है। इन कविन को अष्ट छाप के कवि कहो जाए है। अष्ट छाप की स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र गोस्वामी श्री विट्ठल नाथ जी ने सन 1565 में करी। महाप्रभु वल्लभाचार्य मध्यकाल के प्रसिद्ध आचार्य, विचारक, चिंतक, सामाजिक संगठनकर्ता और श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। आपने ब्रज के गोवर्धन और गोकुल में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख स्थान स्थापित करके ब्रजवासियों को संगठित करो और भारत के विभिन्न भागन में श्री कृष्ण चरित्र की महिमा गाय के ब्रज आगमन को आमंत्रण दियो। यही कारण सो उनके विचारन सो प्रभावित है के भारत के विभिन्न भूभागन ते अनेक कृष्ण प्रेमी ब्रज में आए। ब्रज भक्ति के विकास में वल्लभ संप्रदाय को महत्वपूर्ण योगदान है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र गोस्वामी श्री विट्ठल नाथ जी विलक्षण सामाजिक संगठन करता हते। आपने कृष्ण भक्ति और श्री वल्लभाचार्य जी के विचारन को जन जन तक पहुंचाएवे के ताहीं सन 1565 में अष्टछाप नाम ते 8 कविन को एक समूह बनायो, जाकू उनने अष्टछाप नाम दियो। या समूह में श्री वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास को रखो गयो। ये 8 कवि श्री कृष्ण के परम भक्त है। इनने श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, लीला अवतारी और लोक रंजक स्वरूप को बड़ो मनोरम वर्णन करो है। कृष्ण की रूप माधुरी वर्णन में तो इन कवि ने सौंदर्य के समस्त उपमानन को झूठो कर दियो है। अष्ट छाप के कविन में सबसों चर्चित कवि सूरदास है। सूरदास गोवर्धन के पास पारसौली गांव में चंद्र सरोवर पर रहते। इनकी विनय, भक्ति, वात्सल्य और माधुर्य भाव की रचनान में विशेष आकर्षण है। माखन खाते भाई कृष्ण की छवि को जो वर्णन सूरदास ने करो है, वह बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर ले है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकन मनुमत मधुरगन मारक मधुही पिए, कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल एहि सुख का सत कल्प जिए। श्रोताओ, कुंभन।

गृहस्थ होते भये हो कृष्ण के अनासक्त भक्त है। घर में खेती किसानी को काम हो, संध्या समय यतिपुरा स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करवे जाए तो श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गाते रहते, बहुत मधुर गायवे वाले है। पता में है कि उनके मधुर गायन की प्रशंसा बादशाह अकबर ने सुनी, उनको दरबार में कछु गायवे के ताहीं बुलायो। उनने बादशाह अकबर के दरबार में जो भजन गायो वह कुंभन दास की अमर रचना है गई। या मैं श्री कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण के संग भारतीय संतन के स्वाभिमान को विलक्षण उदाहरण पायो जाए है। उनने गायो, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखे दुख लागे ताको करन परी पर नाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु यह सब झूठो धाम। परमानंद दास कन्नौज के निवासी है पर कृष्ण के परम उपासक हते। ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कविन में इनको अग्रणी स्थान है। इनको प्रसिद्ध पद रासलीला में बहुत गायो जाए है, या में माखन खाते भय कन्हैया को मधुर वर्णन भयो है। अरे मेरी भरी मटुकिया ले गयो री, कछु खायो कछु ग्वालन ने खवायो, रीति कर्मुई दे गयो री। परमानंद दास को ठाकुर गूठा दिखाए रस ले गयो री। आज हु ब्रज के मंदिरन में शयन के समय इनको यह पद बड़े भाव सो गायो जाए है, या में राधिका की छवि को वर्णन है। धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अतिश कोमल कमल के सी वरण, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। कृष्णदास इनको जन्म गुजरात के अहमदाबाद में भयो। बाल्यावस्था में ही ब्रज में आए गए और भजन कीर्तन गावे लगे। संगीत के बड़े जानकार हते। गोवर्धन नाथ की छवि पे इनको मन ऐसो अटक्यो कि वाही में रम्यो रह गयो। या छवि को वर्णन करते भये इनने यह छंद लिखो है, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चल गयो तहां ही अटक्यो। कृष्णदास कियो प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो। विठलनाथ जी के शिष्य नंददास ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि भये हैं। अष्टछाप के सबसे चतुर कवि कहे जाए हैं। इनके काव्य में अद्भुत विलक्षणता ही, दार्शनिक चिंतन में बड़ी प्रबलता देखी जाए। भंवर गीत इनकी श्रेष्ठ रचना है। सगुण भक्ति की अकाट्य स्थापना इनने इन शब्दन में करी है, जो उनके गुण नाहे और गुण भये कहाँ ते, बीज बिना तरु जमे मोय तुम कहो कहाँ ते। वागुण की परछाहरी माया दर्पण बीच, गुणते गुण न्यारे भये अमल वारी ज्यों कीच, सखा सुन श्याम के। गोविंद स्वामी भरतपुर के रहवे वाले हते, गिरिराज जी की तलहटी में रहते, कृष्ण की लीलान को गान करते, कृष्ण को लाड़ लड़ाते, कृष्ण की माधुरी को वर्णन करते भये इनने लिखो है, प्रात समय उठ जसुमत जननी, गिरधर सुत को उवट नवावत, कर सिंगार बसन भूषण सज, फूलन रच रच पाग बनावत। चीत स्वामी मथुरा के पंडा है। विठलनाथ जी ते ऐसी छनी के इन्हीं के शिष्य है गए। इनकी रचनान में ब्रजवाणी की मधुरता छलकती सी दिखाई पड़े। भोर भये नवकुंज सदन ते, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरग जी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी, बिनु गुण माल विराजत उर पर, नखछत द्वैज चंद अनुहारे, छीत स्वामी जब चितये मोतन, तब हो निरख गई बलिहारी। चतुर्भुजदास कुम्भनधारी के पुत्र है। विठलनाथ जी ने इनको अपनो शिष्य बनाई लियो। श्रीनाथ जी की सेवा करते और कृष्ण लीलान को वर्णन करते रहते। इनको बहुत ही मन मोह लेवे वारो छंद है, जसुदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मोपे, कहत कहे नहीं जात, भाजन फोर धारे सब गोरस, ले माखन दधि खात, दास चतुर्भुज गिरधर गुण हो, कहत कहत सकुचात। श्रोताओं, या प्रकार हम देखे हैं कि वल्लभ संप्रदाय के इन आठ कवि ने
श्री कृष्ण की रूप माधुरी को विविध छवि सो

0: वर्णित करियो है जय जय श्री राधे।
1: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये वार्ता सुन रहे हते, जाको विषय हो अष्टछाप के कवियों का कृष्ण रूप माधुरी वर्णन, आलेख हो मोनिश कमल जी को, और वाचन कर रहे हते नृत्य गोपाल जी। नृत्य गोपाल जी,
0: जी चंपा जी,
1: आपको बहुत बहुत आभार। देखो आपने कितनी सुंदर वार्ता मोनिश कमल जी की हमारे श्रोता भैया बहनान को सुनाई है। कितने व्यापक वर्णन या में बालक कृष्ण की बाल लीलान को हुआ है, उनके खान पान को हुआ है, और उनकी रूप माधुरी को हुआ है। तो निश्चित रूप से देखो, हमें तो पूरी आशा है कि हमारे जो भी श्रोता भैया बहना सुन रहे हैं उनके मन को भाई होगी।
0: जी हाँ चंपा, इतनी सुंदर सुंदर उदाहरण उनने दिए, मुकु तो पढ़ते पढ़ते ही बड़ो आनंद आ रहे हो।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, जो एक भाव बन जावे है ना, बाकी वानगी तो देखते ही बन रही हती। नृत्य गोपाल जी,
0: जी चंपा जी,
1: देखो जो ये हम उत्सवन की बात कर रहे हैं, इतनी लीलान की बात कर रहे हैं, तो जो ये जेठ मास को महीना अब चल रहे हो है ना, तो ये महीना ऐसा होवे कि बालकन को ज्यादा पढ़ाई लिखाई के काम काज से छुट्टी मिल जावे है। जो घर के अंदर और बाहर बालक क्रीडान ने करे ना, वो कहीं ना कहीं कृष्ण के व्यक्तित्व ते उनने ग्रहण करी हो, मैं ऐसा प्रतीत होवे है।
0: जी हाँ चंपा जी, देखो किशोर वय के जो बालक है वे तो या समय और ज्यादा अपनी परीक्षा की तैयारी या कोई ना कोई आगे बढ़वे की सोचे हैं, और जो छोटे बालक हैं वे तो कन्हैया स्वरूप ही है जाएं, उनको तो अपनी नानी अपनी दादी अपनी मौसी और गांव में सबके संग खेलवो, यही में उनकी रुचि हुई है।
1: और नृत्य गोपाल जी,
0: जी चंपा जी,
1: सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि जैसे जो ये जेठ मास को महीना है ना, तो ये जल पर्व को महीना है, क्योंकि हमें गंगा दशहरा अब आईवे बारो है, कितने मनोरथ है ब्रज में, वो नौका बिहार के होंगे, जल उत्सवन के होंगे, और फूल बंगलान के तो और फूल कलीन के तो जो उत्सव हैं उनकी जो विविधता है ना, वो श्रद्धा के धरातल पे ना खूब देखवे को रोज मिल ही रही है।
0: जी हाँ चंपा जी, और यही समय आप देखो ये जो जासों ब्रिज में कहें खरबूजो खानी एकादशी, या जल को दान करें पंखा दें, ये जो सब के काज है कि हम कौन कौन को जल पिवा दें, पूरे जेठ मास में तो या बात की प्रतीक्षा ही रहे कि हम कहूँ प्याऊ लगा में और जल पिवा में।
1: और नृत्य गोपाल जी, अब की बार जो जेठ मास ये खास न्यू है गो है, कई पूरे 60 दिन आन को है, क्योंकि जेठ के जो महीना है वो दो पड़ रहे हैं, उनमें ते 30 दिन यानी कि एक महीना पूरो अधिक मास को होएगो, तो बाकी पर्व उत्सवन की तो महिमा ही कछु और होगी। पर हम चलते चलते भी अपने श्रोता भैया बहनान को बता में तो हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे जो सालवर के उत्सव है उनमें होरी है, दिवारी है, शरद है, बसंत है, हिंडोरा है, पालना है, ये सब भी अधिक मास में होंगे।
0: हाँ जी चंपा, ये जो जेठ मास के उत्सव होंगे और अधिक मास में होंगे, इनकी छवि और इनका जो अपना स्वरूप है वह बहुत आकर्षित कर रहे हैं, उनकी ही तैयारी अब शुरू हो गई है।
1: नृत्य गोपाल जी ठीक है, वहाँ तैयारी शुरू हो रही है, और चलो हम तो अब तैयारी करें अपने प्यारे भैया बहनान को एक लोक गीत सुनाए वे की।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं यह प्यारा सा लोकगीत। और चंपा जी, आप तनिक देखो तो सही, कहूं घड़ी की ओर क्यों ना देखें आप।
1: नृत्य गोपाल जी, हमने देख लियो है और संकेत हो रहो है कि अब हमें कार्यक्रम समापन की ओर लेके चलना है। तो प्यारे भैया बहनाओं, इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है।

0: मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वीके तोमर के संग जाइवी की अनुमति प्रदान करें। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब कार्यक्रम का वक्त हुआ है एक नाटक का। नाटक का नाम है आओ झूठ बोलें। मूल लेखक हैं सादत हसन मंटो। निर्देशन प्रस्तुति है काजल सूरी की। तो आइए सुनते हैं ये नाटक।
1: सुनते हैं नाटक आओ झूठ बोले। इस नाटक के लेखक हैं सादत हसन मंटो। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आओ झूठ बोले।
2: अरे तुम्हें बैठे बैठे ये क्या सूझी?
1: कहा ना आओ झूठ बोले।
2: फिर वही झूठ बोले। अरे भाई किससे झूठ बोले? और फिर तुमने मुझे
1: कोई झूठा समझा है? यही कहना चाहते हैं ना?
2: हाँ, और क्या।
1: तो अपने अल्फाज फौरन वापस ले लो।
2: वो क्यों, मैंने झूठ थोड़ा ही बोला है।
1: बात को बढ़ाओ नहीं, मैं इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं हूँ। जो कह रही हूँ सीधे मुझसे मान लो। आओ झूठ बोले।
2: पर सवाल ये है कि हम झूठ क्यों बोले? भाई मेरा दिमाग फिरा है जो बैठे बैठे झूठ बोलना शुरू कर दूं।
1: ऐसा करो खड़े हो जाओ। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम ज्यादातर कोट पहनकर क्लब जाते वक्त ही झूठ बोला करते हो।
2: लाजवंती लाजवंती, तुम्हें आज क्या हो गया है?
1: मैं चाहती हूँ हम तुम दोनों झूठ बोलें। आओ कभी कभार मेरी बात मान भी लिया करो।
2: तुम अकेली झूठ बोलो, मुझे साथ क्यों मिलाती हो?
1: मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ और तुम इस फन में खूब ताक हो। मैं तुम्हारी शागिर्द बनना चाहती हूँ।
2: लाजवंती, मैं तुमसे एक बात कहूँ?
1: कहो।
2: क्या कहूँ, कैसे कहूँ?
1: ये तुम्हें बड़ी बुरी आदत है, बात करते करते बीच में रुक क्यों जाया करते हो?
2: तो कहूँ?
1: हाँ हाँ कहो।
2: नहीं नहीं, मैं नहीं कहता।
1: तो दफा, कैसी बुरी आदत है?
2: तुम समझोगी, मैं झूठ बोल रहा हूँ।
1: तो मुंह से फूटो तो, मैं तुम्हारे झूठ को भी सच मान लूंगी। लो अब कह भी डालो क्या कहना है।
2: मुझे तुमसे बहुत प्रेम है।
1: लगे चोचले बकार ने। चलो बहुत किया, मान भी लिया, पर वो चुड़ैल जिसका फोटो तुम अपने पॉकेट बुक में चिपकाए फिरते हो।
2: चुड़ैल पॉकेट बुक? कौन सी पॉकेट बुक में?
1: वही जो इस वक्त सरकार के कोट की अंदर वाली जेब में पड़ी है और जिसकी तरफ अभी अभी आपका दाहिना हाथ बेख्तियार उठ गया था।
2: कोट की अंदर वाली पॉकेट बुक? हाँ समझा समझा, तुम पॉकेट बुक की बात कर रही हो।
1: मैं पॉकेट बुक की ही बात कर रही थी, पर मैं दोबारा इसका जिक्र छेड़ना नहीं चाहती।
2: लेकिन मुझे तुम्हारे दिल से शुबा भी तो दूर करना है। कोट की अंदर वाली जेब में जो फोटो है ना, वो एक
1: एक्ट्रेस का है।
2: एक्ट्रेस एक्ट्रेस का है
1: जिससे कल ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसके घर में कल तुम दफ्तर से उठकर चाय पीने भी गए थे। नारायण साहब भी आपके साथ थे।
3: तो बड़ी उम्र है मेरी, इधर आपने मेरा नाम लिया और उधर मैं कमरे में दाखिल हुआ। जी हाँ भाभी जान, मैं इसके साथ था। पर किस्सा ये है कि मिस
1: उर्मिला देवी।
2: अरे
3: शुक्रिया भाभी जान। तो किस्सा ये है कि मिस उर्मिला देवी के यहाँ मेरा जाना ऐसा ही था
1: जैसा एक एक्ट्रेस की शैदाई का हो सकता है।
3: यकीनन यकीनन, आप फौरन ही समझ गई। दरअसल समझाने का सलीका होना चाहिए। किशोर तुम समझोगे मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, पर यह वाकया है कि तुम्हें बात करने का बिल्कुल बिल्कुल ढंग नहीं आता। मैंने

0: घंटे से, डेढ़ घंटे से मुझे इस बात पर मजबूर कर रही है और पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ गई है कि मैं झूठ बोलूं। अब तुमसे भी यही कहती है, मालूम होता है इनका
1: दिमाग दिमाग बहक गया है। कह दो कह दो, कहती क्यों नहीं?
0: अरे भाई, तुम तो नाहक बाल की खाल निकालती हो, खुद ही फाड़ती हो, खुद ही रफू करती हो।
2: ठहरो ठहरो ठहरो, अब तुम अपना लेक्चर शुरू मत करो, मुझे इनसे पूछने दो। हाँ तो भाभी जान, इरशाद,
1: मैंने आपसे कहा कि आइए झूठ बोले।
2: बंदा हाजिर है, पर शर्त यह है कि आप भी मेरा साथ दें।
1: शुरू कीजिए, मैं साथ दूंगी, लड़ से लड़ मिलाती रहूंगी।
2: तो लीजिए, इस वक्त 4 बजे हैं।
1: ये तो आप सच बोल रहे हैं।
2: हाँ जी हाँ, सच ही के बाद तो झूठ शुरू होता है, अब झूठ ही झूठ शुरू होगा।
1: फरमाइए।
2: इस वक्त 4 बजे हैं। अब मेरे और किशोर के दरमियान बातें शुरू होंगी। मैं किशोर से कहूंगा, चलो भाई चले, हॉकी का मैच देखने का वक्त हो गया है, उठो उठो जल्दी करो। और किशोर आपके मुंह की तरफ देखेगा, गोया इजाजत मांग रहा हूं। इस पर आप क्या कहेंगी?
1: मैं कहूंगी आप शौक से जा सकते हैं, मुझसे पूछकर जाने की क्या जरूरत है। मर्दों को खेल कूद में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, इससे सेहत भी अच्छी रहती है।
3: काश ये मीठे मीठे बोल सच्चे होते।
2: अरे भाई तुम बीच में ना बोलो, मुझे और इनको झूठ बोलने दो। हाँ,
0: मुझे भी इस झूठ में शामिल कर लो, इस तरह वो नरमी जो आज तक मुझे नसीब नहीं हुई शायद मिल जाए, गोया वो झूठ मूठ की ही होगी, पर ना होने से तो बेहतर है।
1: आपको रोका किसने है, बोलिए। पर ये तो झूठ मूठ का झूठ है और आप ठहरे सच्चा झूठ बोलने वाले, क्या आपको मुश्किल महसूस नहीं होगी?
2: भाभी जान, ऐसी सच्ची बातें बाद में शुरू कीजिएगा, इस वक्त हम सब झूठे के झूठे हैं।
1: आप फिर से शुरू कीजिए।
2: तो लीजिए, ध्यान से सुनिए, इस वक्त 4 बजे हैं। अब मेरे और किशोर के दरमियान बातें शुरू होगी। मैं किशोर से कहूंगा, चलो भाई चले, हॉकी का मैच देखने का वक्त हो गया है, उठो उठो जल्दी करो। और किशोर आपके मुंह की तरफ देखेगा, गोया इजाजत मांग रहा हूं। इस पर आप क्या कहेंगे?
0: ठहरो ठहरो ठहरो लाजवंती, तुमने जो कुछ कहा था मैं बोलता हूं, मुझे एक एक लफ्ज याद है। तुमने कहा था आप शौक से जा सकते हैं, मुझसे पूछकर जाने की क्या जरूरत है, मर्दों को खेल कूद में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है, क्यों यही कहा था ना तुमने?
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और इसके बाद हम दोनों मैच देखने चले गए। शाम के 7 बजे वापस आए तो आपने
1: चाय तैयार की, आप दोनों को पिलाई, क्योंकि ये थके हुए थे इसलिए मैंने इनकी बूट उतारे, जुराबे उतारे, इनके पैरों की उंगलियां चटकाई और
0: बस बस बस बस इतना ही काफी है, ज्यादा शक्कर न डालो लाजवंती, सब मजाक किरकिरा हो जाएगा। नारायण, क्या वो दिन भी आएगा जब मेरे लिए ये घर सचमुच स्वर्ग बन जाएगा?
2: देखो भाई, मुझे इस वक्त झूठ बोलना है समझे, ऐसी काबिले रहम सूरत मत बनाओ। तुम पर तरस खाकर अगर मेरे मुंह से कोई सच्ची बात निकल गई तो मेरा जिम्मा नहीं, समझे?
0: समझता हूँ समझता हूँ, लेकिन जिसे तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो बहुत चालाक है। जो बात तुम्हारे दिल में है ना, वो उसके नाखूनों में है।
1: देखो।

0: पहनकर बाहर निकला। मैं भी इसके पीछे चल दिया क्योंकि मेरा यहां बैठे रहना बिल्कुल फिजूल था। क्यों भाभी?
1: जी हाँ, फिर आपको भी तो किसी काम से जाना था ना।
0: अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ जो आपने याद दिला दिया। मेरा ख्याल है अब हमें सच बोलना चाहिए, झूठ हम काफी बोल चुके। क्या ख्याल है भाभी?
1: मेरा शौक तो पूरा हो गया। अब अगर आपका जी भर गया हो तो आप सच बोलना शुरू कर दीजिए, पर ये ध्यान रहे कि उसमें झूठ की थोड़ी सी भी मिलावट नहीं होनी चाहिए।
0: अरे तौबा तौबा तौबा कीजिए भाभी जान, ये तो मजाक मजाक में और आपको खुश करने के लिए मैंने झूठ के पुल बांधे थे ना। मुझे तो झूठ से सख्त नफरत है। हाँ
1: जी हाँ जी हाँ, मैं खूब जानती हूँ।
0: तो आप यकीन नहीं करती, पर आपको याद है कि पिछले हफ्ते जब आपको इन्होंने किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर रात को थिएटर जाने की तैयारी शुरू की थी तो मैंने आपसे साफ साफ बात कह दी थी। और अभी अभी जब आपने मुझसे पूछा कि मैं उर्मिला देवी फिल्म एक्ट्रेस के यहाँ चाय पीने गया था या नहीं, तो मैंने फौरन इकरार कर लिया था। दरअसल सच बोलने से मैं कभी नहीं घबराया। और देखिए, अगर आपके ये अब आपसे ये कहें कि इन्हें 6 बजे अपने बड़े साहब की कोठी पर कागजात तैयार करने जाना है तो मैं आपसे फौरन कह दूंगा कि यह गलत है। इसके बड़े साहब मेरे दोस्त हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज इसको 6 बजे नहीं बल्कि 7:30 बजे बुलाया गया है और ये 1.5 घंटा इधर उधर सैर सपाटे में गुजारना चाहता है।
1: मैंने कब कहा है कि आप झूठ बोलते हैं? वो तो मैं जरा इन्हें सता रही थी। आप में और इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है।
0: आपने कहा तो सच है पर किशोर खफा हो जाएगा। खैर कोई हर्ज नहीं। देखिए, कल जो इसने मुझे उस उर्मिला देवी के यहाँ जाने को कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, मियाँ तुम्हें अपनी बीवी का डर ना होगा पर मुझे है। मैं ऐसी औरतों के पास तक भटकना नहीं चाहता, मगर इसने इतना जोर दिया कि मुझे जाना ही पड़ा। मैं ठिठका भी था मगर ये मुझे घसीट कर ले गया।
2: नारायण, तुम झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ। तुम्हारी बात का अव्वल झूठ, आखिर झूठ।
0: जी हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। परमात्मा के लिए तुम सच न बोलना।
2: पर सवाल ये है कि झूठ बोलने से मेरा कौन सा काम बन गया जो अब मैं सच बोलना छोड़ दूं? ये देवी जो मेरे पास बैठी मेरे जीवन पर मार्शल लॉ बनकर रह गई है। झूठ बोलूं तो वो भी सेंसर हो जाता है और सच बोलूं तो उस पर भी दफा 144 लग जाती है। अब बोलो मैं करूं तो क्या करूं? मेरा तो ये हाल है जैसे पिंजरे में पंछी बस फड़फड़ा के रह जाता है। अब अगर इससे कहूं कि उठो और जल्दी से चाय बनाओ।
1: अच्छा,
2: क्योंकि मुझे 7 बजे साहब ने कोठी पर बुलाया तो बस समझ लो जैसे भिड़ों के छत्ते को छेड़ दिया और डंक पर डंक पढ़ने लगे।
1: अच्छा,
2: मुंह से उफ तक करने की भी तो इजाजत नहीं।
0: भाई तुम झूठ बोल रहे हो, बड़े साहब ने तुम्हें 7:30 बजे बुलाया है। इसी झूठ पर तो सारा फसाद है।
2: देखो देखो देखो, तुम भी इसकी तरफदारी करने लगे हो। हाँ मैं पूछता हूँ, 7 और 7:30 में फर्क ही क्या है?
0: वाह भाई वाह, 1/2 घंटे का तुम्हारे नजदीक कोई फर्क ही नहीं। अरे जनाब, 1/4 घंटे में तो दुनिया इधर की उधर हो सकती है और तुम 1/2 घंटे को यूं ही बेकार समझ रहे हो। सुना सुना भाभी आपने?
1: सुन रही हूँ, सब सुन रही हूँ।
0: ये बंदा वक्त में भी फजूल खर्ची करने से बाज नहीं आता।
1: मैं आपकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही हूँ नारायण भाई।
0: ये तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, ना बंदा किस लायक है।
1: नारायण साहब, इन्हें आज क्या सचमुच कहीं जाना है? और अगर जाना है तो ये साफ साफ कह दें, मैं क्यों रोकने लगी भला?
2: जाना है बाबा, जाना है, बड़े साहब की कोठी पर जाना है, कहीं ऐश करने नहीं जाना, समझी?
1: मैं मिस्टर नारायण से बात कर रही हूँ।
0: सुनो किशोर, भाभी जान मिस्टर नारायण से बात कर रही है, तुम खामोश रहो। हाँ तो भाभी जान, आपके सवाल का जवाब ये है कि इसे सचमुच बड़े साहब की कोठी पर जाना है, 7 बजे नहीं 7:30 बजे, और इसे वहां ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का काम है, यानी ठीक 11 बजे इसे यहाँ वापस पहुंच जाना चाहिए।
2: और अगर वहाँ 3 के बजाय 4 घंटे सर्फ हो गए तो?
0: ये हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हारा बड़ा साहब रात को ठीक 11 बजे सो जाया करता है, अगर वो 11 बजे न सोए तो फिर उसे रात भर नींद नहीं आती।
1: तो फिर मैं इन्हें इजाजत दे दूं?
0: मैं आपको मजबूर नहीं करता, पर हालात ही कुछ ऐसे हैं।

0: कि आपको इजाजत दे देनी चाहिए।
1: ठीक है, तो चाय पीने के बाद आप चले जाएं।
2: लाजवंती, क्या तुमने सचमुच इजाजत दे दी?
1: कहती तो हूँ जाइए, इसमें मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? आपको काम पर जाना है, कहीं ऐश करने थोड़ी जाना है। हाँ। तो चाय के साथ अंडों का हलवा बना दो, थोड़ी सी बिस्किट भी हैं। जाने वहाँ खाना मिले ना मिले, इसलिए अच्छा होगा ना, यहीं से कुछ खा के जाइए।
2: नहीं नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, मैं बस खाली चाय पीऊंगा।
1: और आप नारायण साहब?
0: मैं सहबहर को कुछ खाया नहीं करता, डाइटिंग कर रहा हूँ ना।
1: ओह, तो आपके लिए भी खाली चाय ही ले आऊं?
0: जी।
2: लाजवंती, चाय से ज्यादा जरूरी मेरा डिनर सूट है, उसको प्रेस करवाना है।
1: डिनर सूट?
0: हाँ भाभी जान, किशोर ठीक कह रहा है। दरअसल वहाँ कोठी पर दूसरे अफसर भी आएंगे और इसे भी उनके साथ डिनर खाना होगा। डिनर सूट में जाएगा तो अच्छा रहेगा, उन लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा।
2: तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो?
1: डिनर सूट?
2: हाँ।
1: आपका मतलब उसी सूट से है ना, जो काली सर्च का बना हुआ?
2: हाँ,
1: है दुम कटा सा।
2: हाँ हाँ, वही, उसी को डिनर सूट कहते हैं, उसे निकलवा कर प्रेस करवा दो।
1: वही सूट ना जो आपने 3 साल पहले बनवाया था?
2: हाँ।
1: वही जिसके अस्तर में एक बार आपने मुझसे रफू करवाया था?
2: हाँ हाँ वही।
1: और क्यों? वो जिसके साथ आप सफेद रंग वाली बो बांधा करते हैं?
2: वही वही, उसे ट्रंक में से निकालो और प्रेस करवा दो।
1: आपने पहले मुझसे क्यों नहीं कहा? अब वक्त के वक्त आपको याद आया है, ये तो बड़ी गलती हो गई ना।
2: पहले क्यों नहीं कहा? पहले क्या नहीं कहा?
1: अब मुझे क्या मालूम था कि वो आपके काम का है?
2: क्यों क्यों क्यों, उसे क्या हुआ? वो काम का नहीं था क्या?
1: अरे मैंने आज सुबह जब ट्रंक खोला तो देखा आपके सूट पे कीड़े लग रहे हैं, सो मैंने उसे उठाकर दर्जी को दे दिया और उसे काट छांट के मुन्ना के 2 कोट और 2 निक्कर बनवा दी।
2: मुन्ने के 2 कोट और 2 निक्कर बनवा दिए मेरे डिनर सूट में से? तुम ये क्या कह रही हो लाजवंती? मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरा सूट दर्जी को कैसे दे सकती हो, और वो भी मुन्ने के 2 कोट और 2 निक्कर बनवाने के लिए?
1: वाह, ये तो खूब कही आपने। अरे जनाब, जब हर दूसरे तीसरे महीने मेरी किसी ना किसी साड़ी से अपनी धोती बना लिया करते हो तो क्या मैं इसी तरह से चिल्लाया करती हूँ? और अब आप अपनी शेरवानी के नीचे अक्सर मेरा कुर्ता पहन लेते हैं तो भी मैं कुछ नहीं बोलती, बस चुप रह जाती हूँ।
2: अरे तुम्हारी साड़ी और कुर्ता गए भाड़ में, उनसे मेरे सूट का मुकाबला करती हो? लाजवंती, तुम्हारी ये हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने उस सूट पर पूरे 150 रुपए खर्च किए थे।
1: और जिस साड़ी से मैंने आपके कमरे की खिड़कियों के पर्दे बना दिए थे वो भी 150 रुपए की तैयार हुई थी। उसकी जरदोजी अगर नोच कर बेची जाती जब भी 30-40 रुपए तो कहीं नहीं गए थे। हाँ,
2: वो साड़ी 2 बरस पुरानी थी
1: और आपका सूट 3 और 3 9 बरस पुराना था। हाँ
2: लाजवंती, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, समझी? तुम बहुत हठ धर्म हो गई हो।
1: अच्छा,
2: आज तुमने मेरे डिनर सूट से मुन्ने के लिए 2 कोट और 2 नेकर बनवाने का ऑर्डर दिया।
1: हाँ दिया।
2: कल तुम मेरी मोटर से उसके लिए झूला बनवाने का हुक्म दे दोगी।
1: क्या?
2: परसों ये घर किसी के हवाले कर दोगी और तरसों मुझे नीलाम पर चढ़ा दोगी।
1: हाय राम,
2: मैं खूब मुफ्त का तुम्हारे हाथ लग गया हूँ। आखिर ये क्या तमाचा है?
1: तमाशा?
2: मेरा सूट वैसे का वैसा मौजूद है, जल्दी से उसे निकालकर प्रेस करा दो। मुझे बड़े साहब के घर 7 बजे पहुंच जाना चाहिए।
0: 7 नहीं 7:30।
2: लो, वो फोन भी आ गया।
1: ये आपका फोन नहीं, मेरी किसी सहेली का फोन है। हेलो जी, कौन? हाँ हाँ, 4 5 9 8 6। जी हाँ, मैं खैरियत से हूँ, मगर उनका मिजाज आज कुछ बिगड़ा हुआ है। हाँ, थोड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं। क्यों? जी हाँ, मैंने गलती से उनका डिनर सूट बेकार समझकर आज दर्जी को दे दिया। हाँ, और उसे मुन्ने के 2 कोट और निक्कर बनवा दी, इसलिए वो आज शाम को कहीं बाहर नहीं निकल सकते। क्या कहा? नहीं नहीं, अगर आप फरमाएं तो उनके बदले मैं हाजिर हो जाऊं। बस तो इधर से भी तस्लीम।
0: अरे 6 बज गए मुझे तो एक जरूरी काम से जाना था भाई।

0: मैं चला। अच्छा भाभी जान, अब फिर कभी हाजिर होऊंगा, मैं चलता हूँ।
1: अरे ठहरिए तो सही।
2: अरे जाने दो उसे। तुम ये बताओ फोन पर कौन था?
1: कोई नहीं, ऐसे ही।
2: आखिर मुझे क्यों नहीं बताती लाजवंती?
1: अरे कुछ नहीं भाई।
2: नहीं छिपाती क्यों हो? अरे बताओ तो कौन था?
1: आपको क्या, कोई भी हो जाइए, मैं नहीं बताती। और कहिए तो बता दूं, पर आप
2: बिगड़ तो ना जाइएगा। और अगर मैं बिगड़ भी गया तो तुम्हारा क्या बना लूंगा। अच्छा कहो कौन था?
1: लो बताए देती हूँ, पर देखिए हत्थे से उखड़ा ना जाइएगा, वचन दीजिए।
2: अब कहो भी कौन था?
1: अरे मेरी सहेली उर्मिला देवी, फिल्म एक्ट्रेस। नाराज हो गई है मुझसे, काश डिनर सूट की बजाय उसमें कीड़े पड़ जाते और आप बड़े साहब की कोठी तो जा पाते। क्यों जी, चोर कैसे पकड़ा ये उर्मिला देवी?
2: जाए भाड़ में और मैं जाऊं चूल्हे में।
3: बीबी जी।
1: अरे दुर्गा, हाँ बोलो क्या बात है?
3: बीबी जी मैं ले आई हूँ।
1: ले आई?
2: क्या ले आई हो?
3: बीबी जी आपने डिनर सूट इस्त्री करवाने के लिए दिया था ना, वो लॉन्ड्री से ले आई हूँ।
4: जाओ दुर्गा जाओ, इसे दीन मोहम्मद टेलर मास्टर को दे आओ कि वो इसमें से मुन्ने के दो कोट और नेकर बना दे।
5: अभी आप सुन रहे थे नाटक आओ झूठ बोले। इस नाटक के लेखक थे सादत हसन मंटो। भाग लेने वाले कलाकार थे डॉक्टर रितु राजपूत, किशोर सहजानी और सुनील लोहिया। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।
1: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

0: दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: 现在我们播送全印度广播电台昨天播出的英语节目 A Spotlight 的节选部分。
1: Spotlight

0: 听众朋友们，今天我们的普通话节目播送到这里，谢谢。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
2: नमस्कार खेल की दुनिया की हर हलचल हर जीत हर संघर्ष और हर कहानी के साथ आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ हैं चंद्रालोक आज के इस अंक में बात करेंगे बैडमिंटन में थॉमस और ऊबर कप के रोमांचक मुकाबलों की आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हो गया है टीम का ऐलान आईपीएल 2026 की देंगे आपको ताज़ा अपडेट्स साथ ही एशियन बॉक्सिंग और एथलेटिक्स से जुड़ी अपडेट्स भी रहेंगी फुटबॉल और टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी हैं कुछ बड़ी खबरें तो चलिए शुरू करते हैं खेल की दुनिया का ये खास सफर और सबसे पहले जानते हैं आलोक से थॉमस कप में कल भारत की जीत पर सुनते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट
3: कल का दिन भारतीय बैडमिंटन प्रेमियों के लिए एक सुनहरा दिन रहा जहां भारत ने थॉमस कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली भारत ने शुक्रवार को डेनमार्क के हॉर्सन्स में थॉमस कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 के हरा करके पुरुषों की टीम प्रतियोगिता में अपना 5वां पदक पक्का किया आयुष सेट्टी ने वर्ल्ड नंबर 8 और ऑल इंग्लैंड ओपन के विजेता लिंग चुंग यी को 48 मिनट में 21-16 21-17 से हरा करके यह काम पूरा किया इससे पहले पुरुषों की डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी और इसके अलावा वर्ल्ड नंबर 11 लक्ष्य सेन ने रोमांचक जीत हासिल की सात्विक साईराज और चिराग सेट्टी की जोड़ी ने वांग चीलिंग और च्यू सियांग सी को 75 मिनट में 23-21, 19-21 और 21-12 से हराया जबकि लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड नंबर 6 और 36 साल के अनुभवी खिलाड़ी ताओ तियन चेन को 1 घंटे 28 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 18-21, 22-20 और 21-17 से हराया भारत अब शनिवार के सेमीफाइनल में फ्रांस से भिड़ेगा जिसने जापान को 3-0 से हराया लक्ष्य और चाओ ने शुरुआती सिंगल्स मैच में 4-4 का हेड टू हेड रिकॉर्ड बनाया था लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने पिछले 4 मुकाबलों में से 3 बार चाओ को हराया था 24 साल के भारतीय खिलाड़ी ने अच्छी शुरुआत की पहले मिड गेम इंटरवल में 2 पॉइंट की मामूली बढ़त ले ली थी वह लगातार 3 पॉइंट गंवाने से पहले 15-10 से आगे भी था उस पॉइंट से चाओ ने लगातार अपने विरोधी पर दबाव बनाए रखा 18-16 से चीनी ताइपे के सटलर को लगातार 5 पॉइंट बनाकर पहला गेम अपने नाम कर लिया उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए चाओ ने दूसरे गेम में ज्यादातर समय दबदबा बनाए रखा और 13-7 से 6 पॉइंट तक की बढ़त ले ली हालांकि लक्ष्य ने मैच में बने रहने के लिए जबरदस्त हिम्मत दिखाई और पक्का इरादा दिखाया और 17-17 के स्कोर से बराबरी कर ली जब चाओ के पास 2 मैच पॉइंट थे तब भी भारतीय खिलाड़ी शांत रहे और मैच अपने पक्ष में कर लिया डिसाइडर में लक्ष्य ने पहला झटका दिया मिड गेम इंटरवल में 4 पॉइंट की बढ़त के साथ वापस कोर्ट पे आए और एंड बदलने के बाद चाओ ने 9-11 से 2 पॉइंट की कमी कर दी लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने न केवल अपनी बढ़त वापसी पाई बल्कि अंतर भी बढ़ाया और 18-12 से वो आगे हो गए चाओ बिना लड़े हारे नहीं और अगले 6 में से 5 पॉइंट हासिल करके जीतकर मुकाबले में वापसी की फिर भी यह काफी नहीं था क्योंकि लक्ष्य ने 20-17 पर 3 पॉइंट बनाए जिससे वह सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत थी क्योंकि चाओ का रिटर्न वाइड चला गया मैच के बाद लक्ष्य सेन ने अपने विचार साझा किए हम आपको सुनवाएंगे उन्होंने क्या कहा
4: इट वॉज अ रियली गुड फर्स्ट सेट एंड आई मीन आई फेल्ट ही वॉज मच मोर फियरलेस ऑन द फर्स्ट सेट एंड आई वॉज काइंड अ बिट ऑफ चेकिंग इफ आई कुड अटैक और लाइक प्रॉब्ली डिफेंड एंड आई मीन या एंड देन द फर्स्ट सेट वॉज ओवर सो आई मीन द सेकेंड एंड थर्ड गेम इवन दोज ऑल्सो वेंट टू ड्यूज बट आई जस्ट टुक एन अप्रोच ऑफ जस्ट नॉट वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन एंड ट्राई एंड अटैक अ बिट मोर एंड बी proactive in especially in the closing stages I didn't think so much about the last match and because I mean yeah it's a team event and there's a different kind of pressure that there is of your team and of everything so yeah I mean back of the mind I was thinking too much I felt in the first set closing and even in the second game start that what will happen but I think yeah it was important for me even my coach told me that you don't look very confident I mean you are thinking too much about your strategies as well so just stop thinking too much and just play and go with your instincts and I think yeah that's what I tried to do in the second and third set I know with the game style that I wanted to do I mean it was difficult for me to do that in the first set, and but then second and third game, even the tactic wise, I was able to get him into long rallies and then play my shots. Otherwise, in the first set, I was again checking a bit with my lifts and a lot of short lifts so that he could jump and

0: those kind of situations. But yeah, I mean, the past whenever we have played, it's always been like 3 games, or if even if it's 2 games, it's always dues that someone is winning, someone is losing. So yeah, the margins are very small. So yeah, you just have to be fight until the very end. And even though in the if it's like going 15 all, 16 all, you know that you got to give that extra 5-10% at the end.
1: बाद में बात करते हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की। तो उन्होंने वांग और चुई को खिलाफ ओपनर जीतने के बाद ओपनिंग सेट जीतने के लिए 2 गेम पॉइंट बनाए। इससे पहले चीनी ताइपे की जोड़ी ने पीछे से आगे आकर तीसरे गेम जो है खेलने को मजबूर कर दिया भारतीय भारतीय प्लेयर को, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। डिसाइडर सेट में भारतीय प्लेयर ने शानदार प्रदर्शन किया और मैच अपने पक्ष में कर लिया। अब बात करते हैं आयुष शेट्टी की, जिनका मुकाबला था लिंग चुन से। आयुष शेट्टी ने शांत और अटैकिंग परफॉर्मेंस देकर के लिंग को हराया, जो पैरों की चोट की वजह से 100% फिट नहीं थे और भारी स्ट्रैपिंग उसका इशारा भी था। शुरुआती गेम में 7-11 से पीछे चल रहे आयुष ने डिफेंस में सब्र दिखाया और फिर अपना अटैकिंग गेम दिखाया, कई विनर्स लगाकर स्कोर 13-12 कर दिया। जब लिंग उनके डिफेंस को भेदने की कोशिश कर रहे थे तो गलतियां कर रहे थे, तो भारतीय खिलाड़ी ने लगातार 7 पॉइंट लेकर के 17-13 की बढ़त बना ली और आखिरी में एक जोरदार क्रॉस कोर्ट स्मैश के साथ गेम खत्म किया। आयुष ने दूसरे गेम में भी इसी मोमेंटम के साथ अपना सिलसिला जारी रखा और शुरुआती कमी को दूर करते हुए 9-7 से कंट्रोल किया, ब्रेक तक इसे 11-8 कर दिया क्योंकि लिंग का अटैक लगातार लड़खड़ा रहा था। लिंग ने आखिरी में वापसी की जिससे अंतर 16-19 का हो गया, लेकिन आयुष आखिरी पंत में शांत रहे और मुकाबला जो है 21-16 और 21-17 से अपने नाम कर लिया। कल के मुकाबला जीतने के बाद आयुष शेट्टी ने अपने विचार प्रकट किए, तो आइए सुनते हैं कि आयुष शेट्टी ने कल का मुकाबला जीतने के बाद क्या कहा।
0: Yeah, definitely. Like I said, we believe that we can go all the way, and it's always been like this. We have a solid team, and everyone believes that we can do it. Definitely, yesterday was the group stage, and not yesterday. I think the day before. Yeah, but today, I mean, a bit more pressure, but I think we were 2-0 up, so you know that made it a bit easier. But yeah, I think I played with confidence, and happy to win it for the team. See, they keep you know pushing me. You have to shout more. So yeah, I mean I don't shout much, but I think now I've started shouting a bit more. Yeah, the game plan. I mean he's the All England champion, and he has some really good attack. The game plan was to attack more, you know, not give him much chances, and yeah, I think I did it pretty well. Yeah, happy. Yes.
1: तो अब बात करते हैं कल के खेले गए और जो मुकाबले थे क्वार्टर फाइनल, उसमें चाइना ने मलेशिया को 3-0 हराया थॉमस कप में और उन्होंने सेमीफाइनल अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। इसके अलावा जापान को फ्रांस के खिलाफ 3-0 से हार झेलनी पड़ी, तो आज भारत का मुकाबला फ्रांस से है। जबकि डेनमार्क, जो कि इस टूर्नामेंट की होस्ट है, मेजबान देश है, उन्होंने डेनमार्क ने शानदार जीत दर्ज की और डेनमार्क ने थाईलैंड को 3-1 से हराया। तो आज का जो सेमीफाइनल मुकाबला होगा उसमें डेनमार्क का मुकाबला होगा चाइना के साथ, जबकि भारत की टीम फ्रांस के साथ खेलती हुई नजर आएगी। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात के 9:30 बजे खेला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस की टीम ने भी इतिहास रचा है, वो पहली बार थॉमस कप के सेमीफाइनल तक पहुंचे और पहली बार उन्होंने मेडल भी सुनिश्चित किया है, जबकि भारत की टीम 2022 की चैंपियन रही है। और ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरह का मुकाबला जो है भारत की टीम आज करती है फ्रांस के सामने। अगर फ्रांस की बात किया जाए तो उनकी जो इस समय सिंगल्स प्लेयर की जो स्थिति पर अगर एक नजर डाला जाए तो काफी स्ट्रांग वो नजर आते, खास करके क्रिस्टोफ पोपोव जो हैं पिछले 6 से 8 महीने में काफी कंसिस्टेंट रहे हैं और पिछले वर्ष उन्होंने VWF वर्ल्ड टूर फाइनल का भी खिताब जीता था। इसके अलावा एलेक्स नेनियर, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 10वीं है, इसके अलावा टोमो जूनियर पोपोव भी 17वीं रैंकिंग के हैं, तो भारत के लिए ये काफी मुश्किल मुकाबला हो सकता है। और इसके अलावा भारतीय बैडमिंटन टीम कुछ समय जब तगड़ा झटका लगा जब लक्ष्य सेन चोट के कारण जो है आज का मुकाबला नहीं खेल रहे सेमीफाइनल जो मैच होने वाला भारत का आज फ्रांस के साथ, तो आज जो है भारतीय जिम्मेदारी जो है जो सीनियर प्लेयर हैं खास करके किदांबी श्रीकांत जो उन्होंने 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता उनके ऊपर और HS प्रणय के ऊपर, जबकि आयुष सेठी पहले सिंगल्स मुकाबले खेलेंगे जिनका मुकाबला होगा क्रिस्टोफ पोपो के साथ। तो देखना दिलचस्प होगा कि भारत की जो विजय का ये रथ है ये कहाँ तक पहुंचता है, क्या भारतीय टीम आज जो फ्रांसीसी चुनौती को पार पा पाती है नहीं। जी हाँ प्रेरणा, ये तो बात थी थॉमस कप की। और बात करते हैं आज उबर कप, जिसका सेमीफाइनल खेला जा रहा है। और जिसका प्रेरणा, आपको पता होगा पिछले वर्ष चाइना और जापान की टीम, तो जो इससे पहले 2024 में जो खेला गया था थॉमस और उबर कप चाइना में, तो उसमें कोरिया की टीम ने चाइना को हराया था फाइनल में। तो आज जो है चाइना का मुकाबला था जापान के साथ, और चाइना ने बड़े आसानी के साथ जो है जापान को 3-0

0: से हरा दिया। पहले मुकाबले में जापान के 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन अकानी यामागुची को वांग जीलिंग, जो चाइना के इस समय विश्व के नंबर 2 नंबर के खिलाड़ी हैं और लगातार जबरदस्त फॉर्म में उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है, उनके खिलाफ उन्होंने यामागुची को पहला सेट, हालांकि यामागुची ने 23-21 से जीता था, लेकिन दूसरे और तीसरे सेट में वो 21-11 और 21-16 से हार गए। जबकि विश्व के नंबर 1 जो अभी वुमेन्स डबल्स के प्लेयर हैं लियू और तान ने बड़े आसानी के साथ जो है जापानीज वुमेन्स डबल्स प्लेयर को हरा दिया। जबकि 2020 ओलंपिक खेलों के चैंपियन चेन यूफे ने बड़ी आसानी से अपना मुकाबला जीता, तरह से चाइना की टीम जो है उबर कप के फाइनल में पहुंची। जबकि दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो कोरिया और इंडोनेशिया का मुकाबला इस समय 2-1 से चल रहा है, जबकि कोरिया ने 2 मुकाबले जीत लिए, जबकि इंडोनेशिया ने 1 वुमेन सिंगल्स का मुकाबला। जो पहले मुकाबले में वर्ल्ड के नंबर 1 आन से योंग ने 21-19 और 21-5 से वर्धनी जो इंडोनेशिया से उनको हराया था। तो अभी स्थिति इसकी यह है कि कोरिया ने 2 मैचेस जीत लिए जबकि इंडोनेशिया ने 1 मैच जीता है। अब आपको हम सीधे लेके चलते हैं आपको क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए प्रेरणा के पास।
1: और तो श्रोताओं, आपको बता दें कि आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम का ऐलान हो गया है और जरूर आप लोग उत्सुक होंगे जानने के लिए कौन कौन रहेगा इस टीम का हिस्सा। तो टीम की कप्तानी संभालेंगी हरमनप्रीत कौर और वाइस कैप्टन रहेंगी स्मृति मंधाना। साथ ही आपको टीम में दिखेंगी शेफाली वर्मा, जेमीमा रॉड्रिस, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रियंका पाटिल और राधा यादव। और भारत के ग्रुप स्टेज मुकाबलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्या फिक्स्चर्स हैं ग्रुप स्टेज मुकाबलों के। तो सबसे पहला मुकाबला 14 जून इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, 17 जून को इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स, और इसके बाद 21 जून इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा, 25 जून होगा इंडिया और बांग्लादेश, और 28 जून को जो आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला होगा वो होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और अब आपको ले चलते हैं आईपीएल की दुनिया की तरफ, और कल के मुकाबले जो खेला गया था आरसी वर्सेस डीसी और काफी रोमांचक रहा, आइए जानते हैं क्या खास रहा उस मैच में। आईपीएल 2026 में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से एक बेहद रोमांचक और हाई स्कोरिंग मुकाबले की कहानी सामने आई, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने इतिहास रचते हुए 220 से अधिक रनों का लक्ष्य पहली बार सफलतापूर्वक हासिल किया। राजस्थान रॉयल्स को उनके घरेलू मैदान पर 7 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। मुकाबले में टॉस जीतकर राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने महज 1.5 ओवर में 12 रन के स्कोर पर अपने 2 अहम विकेट गंवा दिए। यशस्वी जायसवाल पहली ही गेंद पर छक्का लगाने के बाद जल्दी आउट हो गए, जबकि दूसरे छोर से भी विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। ऐसे मुश्किल हालात में कप्तान रियान पराग ने पारी को संभाला और एक जिम्मेदार लेकिन आक्रामक पारी खेली। उन्होंने ध्रुव जुरेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 102 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। जुरेल ने 30 गेंदों में 42 रन बनाए, जबकि पराग ने 50 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ 28 गेंदों में 53 रन जोड़ते हुए पराग ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अंत के ओवरों में डोनोवन फरेरा ने 14 गेंदों पर 47 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस तेज पारी की बदौलत राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 225 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। 226 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत शानदार रही। पथुम निसंगा और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.3 ओवर में 110 रन जोड़े, जो इस रन चेस की नींव साबित हुआ। उनके आउट होने के बाद केएल राहुल ने पारी को आगे बढ़ाया और नितिश राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 30 गेंदों में 61 रनों की साझेदारी की। 15.2 ओवर तक दिल्ली का स्कोर 177 रन पर 3 विकेट था और यहां से मैच पूरी तरह संतुलित नजर आ रहा था, लेकिन अंत के ओवरों में आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स ने बेहतरीन संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। दोनों ने तेज गेंदों में 49 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए

ही नींद एक स्वैली आकाशवाणी वाह पेंड वावस क्लिजाजी सा सा टुनौल टेनी तारीफा या हबारी मुसुमाती निमी में मंगजन कौनजनी मुक्ता सारी वाह के महकमा को या कटा को इंगली या वो मूजी वा टू में या उचा गोजी वा कुआ टे हुआ वा फन्या काजी सरकाली को पेके कामा वा सिमामीजी वा को हिसाबू को

0: जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गाँव बढ़ाना जिला बुलंदशहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: यशवीर को सुनवा देना,
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: और मेरे साथ ही आरती भारती स्वाति विशेष कविता देवी।
0: हेलो ग्राम संसार,
2: मैं खजान सिंह जोहलपुर से बोल रहा हूँ।
0: खजान भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: यशवीर को अच्छी से रागिनी सुनवा दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: कुछ नाम है जी, रामबती, चंद्रकांत, अजय, मोहन।
0: हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: इंद्रवीर तेवतिया डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: यशवीर की राय हुई, कोई आदमी सुनवा देना। कुछ नाम लेने चाहूँगा।
0: हाँ बोल दीजिए।
3: मंडोना जाफराबाद से मुंशी जी विक्रम सिंह और राजेंद्र सिंह, गुलाब सिंह से पिंटू सैनी, इस्पाल।

0: लेडी राम नट्टू बड़ी से सुमित प्रिंस छोटू प्रत्यक्ष निष्कर्ष हमारी बुआ जी है राजवीरी और गांव भटौना से मास्टर हरेंद्र सिंह।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर यशवीर से ये रागनी, किस्सा रहेगा सेठ ताराचंद का।

0: हेलो ग्राम संसार,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं मांगेराम बोल रहा जी, खेड़ा कुर्तान डिस्ट्रिक्ट शामली से।
0: मांगेराम जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: अजय ऋषिपाल नागर जी को सुनवा दिया, दो का नाम लूंगा जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: हमारे चाचा हैं पंडित महावीर शर्मा जी और भाई हैं डॉक्टर ब्रह्म शर्मा जी। हमारे पोते हैं नितिन, अक्षय, लक्ष्य, आयुष, पीयूष।
0: हेलो ग्राम संसार,
2: नमस्कार जी भाई जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं जयपाल सिंह, ग्राम घसौटी, तहसील रामपुर, मनिहारान, जिला धर्मपुर से यूपी से बोल रहा।
0: जयपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ऋषिपाल नागर को
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: नाम है जी श्रद्धा पवार, मिट्टू पवार, इनकी दादी है संतोष, इनकी मम्मी है मीनू। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार,
3: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ये ऋषिपाल नागर जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
3: जयपाल सिंह अध्यक्ष, जगदीश मोटा बादरपुर, मास्टर ब्रह्म सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर, आरव भाटी।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: शशि भैया नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: राजू जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ऋषिपाल नागर को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: केशव दक्ष, विवेक प्रजन।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: ऋषिपाल नागर को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
6: शशि भाई नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मैं जी गांव दोंगड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से बोल रहा हूँ, पंडित यादराम पटवारी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज सुनाओ जी ऋषिपाल नागर जी को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: बच्चों के नाम भी बोलूंगा जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
6: चौहानी शर्मा है जी पति, और पता है जी भव्य शर्मा और यश शर्मा।
0: हेलो ग्राम संसार।
7: नमस्ते जी, सुमन बोल रही।
0: सुमन जी नमस्ते, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगी?
7: ऋषिपाल नागर को जी।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
8: हेलो ग्राम संसार, शशि जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
8: हिसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ शशि जी।
0: राजेंद्र जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: ऋषिपाल नागर को सुनना चाहूंगा। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार
9: जी। नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
9: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी।
0: राम शरण जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
9: आज सर ऋषिपाल नागर जी को सुनना चाहेंगे सर।
0: जरूर सुनवाएंगे।
9: घर के सदस्य सर?
0: हाँ, नाम बोल दीजिए।
9: साहिल विश्वकर्मा, मंजी, रंजना, वंदना और प्रियल विश्वकर्मा, सभी कार्यक्रम बढ़िया लगते हैं सर।
0: चलिए, कार्यक्रम पसंद करने के लिए और फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल नागर से ये रागनी। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731, और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीट के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए

0: केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं समझा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में सम्पन्न हो गया। सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और 1 जवान घायल हो गया। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्ण कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना चोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए रवाना की गई टीम के साथ ये घटना हुई। घायल जवान का उपचार हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। जयपुर में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आईपीएल इतिहास में 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, अक्सर देखा जाता है कि अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे अत्यधिक लागत हमारे किसान बहन भाइयों की लग रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो जैविक खेती करने की सिफारिश हमारे किसान बहन भाइयों से कर रहे हैं। भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं।
1: बिल्कुल सचिव भाई, रासायनिक उर्वरकों के बेतहाशा प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जैविक उर्वरक काफी कारगर है, तो किसान भाई जैविक खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है तो किसानों को जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीकों से भली भांति परिचित होने की। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, इसके साथ ही किसान भाइयों को आय भी अधिक प्राप्त होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में किसान भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है।
0: तो नीलम बहन, इसी क्रम में अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक जानकारी, जिसका विषय है जैविक खेती द्वारा पर्यावरण संरक्षण। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर RPS यादव और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खेती हम पुरातन समय से ही करते आ रहे हैं, लेकिन पहले जो खेती होती थी निश्चित तौर पे वो हमारी प्राकृतिक खेती होती है। धीरे धीरे उसमें विकास हुआ तो उसमें जो हमारे जैविक उर्वरक डाले गए और जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया गया, लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया जब वो रासायनिक खेती होने लगी, जिसमें ज़्यादातर उर्वरक रसायनों का प्रयोग किया गया, जिसमें चाहे उर्वरक हों और चाहे दवाएँ हों, उनका भी खेती में ज़्यादातर प्रयोग किया, जिसके कारण हमारी जो मृदा की संरचना है, मृदा का उत्पादन है, उसमें धीरे धीरे कमी आती गई। और जब यह कमी आ गई तो उसको किस तरीके से सुधारा जाए, उसको सुधारने के लिए एक हमारा विकल्प वही है कि किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती की तरफ दोबारा आए। तो जैविक खेती क्या है और किस तरीके से इसे दोबारा कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर RPS यादव जी को, जो उप महाप्रबंधक हैं इफ्को नई दिल्ली में। यादव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, रासायनिक उर्वरक भी डालते हैं, अगर वो जैविक खेती की तरफ मुड़ना चाहें तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जैविक खेती है क्या।
3: मेरा किसान भाइयों को नमस्कार जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैविक खेती की बात करें उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जिस जमीन में हम पैदावार कर रहे हैं उस जमीन के बारे में जान लें। कि अगर आप किसान भाई देखते हैं तीन तरीके से अगर हम अपनी मृदा को विभाजित कर सकते हैं, एक तो देखते हैं कि हमारी जमीन जो है वो कैसे है, बलुई है, दोमट है या चिकनी मिट्टी है, मुख्य रूप से इन तरह से देखते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये मिट्टी की भौतिक ताकत है या भौतिक उर्वरता है इसको। और दूसरी चीज आती है जिसमें कि हमारी जमीन के अंदर पोषक तत्व कितने हैं, जैसे हमें फसल के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग रासायनिक उर्वरता के नाम से जानते हैं कि हमारी जमीन के अंदर ताकत क्या है
2: जी।
3: तो जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये कितनी मात्रा में, उसको हम आकलन करके देखते हैं। तीसरी जो कि अछूती रही है, जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है हमारे किसान भाइयों ने, वो है हमारी जैविक शक्ति, जैविक उर्वरता क्या है हमारी जमीन की। तो आप देखते हैं कि हमारी जो जमीन है वो बहुत सारे उसके अंदर जीव जंतु होते हैं जिनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते और कुछ को हम देख लेते हैं। तो बहुत सारी जरूरत ये है कि हम अपनी जो जमीन है उसकी जैविक शक्ति को बढ़ाएं और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि हमने बहुत सारा रसायन उर्वरकों का उपयोग किया, चूंकि उसकी आवश्यकता थी कि हमें ज्यादा अनाज पैदा करना

0: था, लेकिन उसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीजों के साथ समझौता किया और उस समझौते में हमारी जो जमीन की जैविक शक्ति थी वो कमजोर हुई, और इस जैविक शक्ति के कमजोर होने के कारण हमारी जो उर्वरता थी वो कम हुई और हमारी जो लागत उत्पादन होता था जमीन में से उसमें घटता गया। अब समय ये आ गया है कि अगर हम इस जमीन को ऐसे ही खराब करते रहेंगे, अत्यधिक कृषि रसायनों का उपयोग करेंगे, तो ये जमीन हमारे हाथ से बिल्कुल खराब हो जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि हम ऊपर से तो हम उर्वरक दे सकते हैं, लेकिन जमीन की जो एक अपनी ताकत है, जो अपनी जैव शक्ति है, उसको हम खो रहे हैं। तो मेरा किसान भाइयों से ये कहना है कि अगर हमें ये समय बहुत चेतावनी का है और हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी जमीन की जैविक शक्ति कैसे बढ़ाएं।
1: बिल्कुल, जैविक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे किसान भी जैविक खेती करना चाहते हैं
0: जी
1: और इस पे हमारी सरकार भी जोर दे रही है,
0: जी
1: कृषि वैज्ञानिक भी आगे आ रहे हैं, लेकिन दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं किसको अपनाने में, किसानों को?
0: बहुत सही आप कह रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो समझने लग गए हैं कि जो पहले खाद देते थे और अब खाद दे रहे हैं, तो उसमें जो पैदावार आता था वो उसमें गिरावट आई है। तो उन्होंने धीरे धीरे से ही अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हमारी ये जैविक शक्ति मजबूत नहीं होगी तो हमारी उर्वरता या जो हमारा उत्पादन है वो अच्छा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार ने इसके लिए जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय कदम है, और इसमें जो हमारे किसान भाई हैं उनको जागरूकता की कमी है और कुछ जानकारी नहीं है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, हमारे किसान भाई कहते हैं कि हम रासायनिक खेती में तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं कि हम यूरिया डाल देंगे, DAP डाल देंगे, बहुत सारे खाद डाल देंगे, लेकिन जैविक खेती करने के लिए हमारे पास ये जानकारी नहीं होती कि हम इनको जो पोषक तत्व वो कैसे दिए जाएं। तो एक व्यवस्था यह है कि जैविक पोषक तत्वों को देने के लिए हमारी एक एकीकृत प्रणाली व्यवस्था है, जिसमें कि हमारी बहुत सारी चीजें हैं। एक तो हमारे किसान भाई जो होते हैं देखते हैं कि जो फसल अवशेष होते हैं
1: जी
0: उन फसल अवशेषों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते और या तो उनको जला देते हैं। एक बहुत बड़ी ताकत में या एक बहुत बड़ी मात्रा में उनके अंदर पोषक तत्व होते हैं, और उनको अगर हम सड़ा करके, उनका अपघटन करा के, उनका हम डिकम्पोज करा करके उपयोग करेंगे तो हमारी जो जमीन में जो उर्वरता है, जो जैविक शक्ति है वो बढ़ेगी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी सरकार ने इस पर जोर भी दे रही है कि जैव उर्वरक बाजार में उपलब्ध है। ये कोई रासायनिक उर्वरक नहीं है, इनके अंदर जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु जमीन में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको घोल करके पौधों की जड़ों के माध्यम से उनको उपलब्ध कराते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि बहुत सारे फास्फोरस को लेके आते हैं, पोटास को लेके आते हैं, जिंक को लेके आते हैं, आयरन को लेकर के आते हैं। तो जमीन के अंदर ये तत्व हैं जो हमारे पौधों की जड़ उसको नहीं ले पाती हैं, उसमें ही जैव उर्वरक काम करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाई हमारे लेके तो आते हैं जैव उर्वरक, उपयोग
1: जी
0: भी करते हैं, लेकिन कहते हैं सर इसका असर नहीं आ रहा। तो मैं किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा कि उनमें जब हमारे जैव उर्वरकों का उपयोग करें उसमें दो तीन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखें। एक तो ये है कि जब भी आप जैव उर्वरक उपयोग कर रहे हैं तो उसकी सही मात्रा जरूर उपयोग करें, क्योंकि हमारी जानकारी में हम जब देखते हैं किसान भाइयों से तो कहते हैं सर हमने तो 500 ml जो है ना पूरा एक एकड़ में डाल दिया। तो जब तक सही मात्रा में जीवाणु जमीन के अंदर नहीं जाएंगे तो उनका जो काम है उनका असर नहीं दिखेगा। तो मेरी ही गुजारिश है कि कम से कम 1 लीटर बायो फर्टिलाइजर एक एकड़ में डालें, क्योंकि ये सही तरीके से अगर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी जमीन के अंदर, जमीन में जीवांश में नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, रासायनिक खादों का उस पर दुष्प्रभाव है, तो जो भी हम उसके अंदर उपयोग करते हैं तो उसमें 50% बैक्टीरिया काम नहीं कर, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जैव उर्वरक की मात्रा जो बताई जा रही है उसकी दोगुनी मात्रा करेंगे तो हमारी सही मात्रा में जैव उर्वरक जमीन के अंदर पहुंचेंगे, जिससे हमारी जो जैविक खेती को मुश्किल हैं कि हमारे पैदावार कम हो जाती है या हमारे जो है सही पोषण नहीं मिल पाता है, उससे हमारा छुटकारा मिलेगा और पौधों को सही पोषण मिलेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो मात्रा की बात रही और इसको डालने का तरीका भी तो है।
0: बहुत सही आपने कहा है कि हमारे किसान भाई सही तरीके से नहीं डालते हैं। जैसे कि अगर हम तीन तरीके से इनका उपयोग कर सकते हैं, एक तो अगर हमारे किसान भाई गेहूं या चना मटर इसकी बुवाई कर रहे हैं उसको हम बीज शोधित कर दें, अगर बीज बोने से पहले उनके बीज में मिला दें जिसको से हम सीड कोटिंग के नाम से कहते हैं, और उसके बाद बुवाई करें। दूसरा तरीका ये होता है कि बुवाई से पहले हम गोबर की खाद के साथ मिला करके, गोबर की खाद में हम जो 1 लीटर बायो फर्टिलाइजर है उसको मिला दें और उसको छाया में रहने दें, और एक हफ्ते के अंदर उसमें करोड़ों की संख्या में जीवाणु पैदा हो जाएंगे और उस गोबर की खाद को हम पूरे एक एकड़ में फैला दें और उसको जमीन में मिला दें। तीसरी चीज आती है कि जो फसलें सब्जी वाली हैं या धान की फसलें जिसको हम रोपाई की तरह से लगाते हैं, उसमें किसान भाइयों से कहना है कि वो जो हमारा बायो फर्टिलाइजर होता है उसमें उनकी जड़ों को डुबोएं और जड़ों की डुबो करने के बाद

0: करीब आधा घंटे बाद वो अपना पौधरोपण कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ी चीज है कि जो जीवाणु है वो जड़ के पास काम करते हैं, और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम उनका उपयोग करें जड़ के आसपास हो। जड़ के आसपास होंगे तो उनका प्रभाव अच्छा होगा और ज्यादा मात्रा में वो पोषक तत्वों को घोल करके या मोबिलाइज करके पौधों को दे पाएंगे।
1: डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे फसलें होते हैं कि जिनकी जड़ों में ही जैव कीटाणु होते हैं जो उर्वरकों का वायुमंडल से एकत्रीकरण करते हैं।
0: बहुत सही कहा है आपने कि नाइट्रोजन को करने के लिए तीन तरह से अगर देखा जाए तो, एक तो जो दलहनी फसलें हैं जिनमें हमारे किसान भाई देखते हैं कि उनको उखाड़ के देखेंगे तो उनकी जड़ों में गांठें होती, नाइट्रोजन है उसको लेते हैं और वो पौधे को देते हैं। दूसरे जो हमारे गेहूं है जिसमें दलहनी फसलें नहीं है उनके लिए हम अजोटोबैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, वो स्वतंत्र फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, वो गांठ नहीं बनाते हैं लेकिन जड़ के आसपास काम करते हैं। तीसरे हैं जिसमें कि हमारे पानी में बहुत फसल रहती है उनमें हम जो करने के लिए उसमें एजो स्पिरिलियम बोलते हैं उनको जीवाणुओं को करना चाहिए। तो किसान भाई, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सही फसल के लिए सही जीवाणु उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो फायदा होगा। नहीं तो मैंने देखा है कि किसान भाई दलहन की फसल में अजोटोबैक्टर डालते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो सही जैव उर्वरक का जरूर चुनाव करना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब आपने सही तरीके से डाल लिया सही उर्वरक का, लेकिन सही उर्वरक लिया कहाँ से जाए?
0: बहुत सही सवाल कह रहे हैं कि हमने इस पे बहुत काम किया है और ये देखा गया है कि जो जीवाणु है वो जमीन से हम लोग निकालते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके उनकी बढ़ोतरी करके फिर उनका जैव उर्वरक बनाया जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, जहां गरम गरम रहता है, गुजरात है, वहां के सॉइल से बैक्टीरिया निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर उनको हम ठंडे प्रदेश की जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू है, इधर करते हैं तो उनका उतना प्रभाव नहीं होता। मेरा ये कहना है कि जिस जमीन में उपयोग कर रहे हैं वहां की क्लाइमेट की सॉइल से अगर हम बैक्टीरिया निकाल करके बायोफर्टिलाइजर बनाएंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसी जगह से खरीदें जो कि उसमें पता हो कि हाँ उसके अंदर बैक्टीरिया कितने, मात्रा कितने में और कहाँ की जमीन से वो निकाला गया है, तब ये किसान जानकारी जरूर ले लें। इससे हमारी जमीन को सही पोषण मिलेगा और सही तरीके से जैव उर्वरकों का उपयोग हो पाएगा।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो जैव उर्वरक हैं और जैविक खेती दोनों किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण में सहयोगी है?
0: बहुत सही बात है कि जैविक खेती से तो हम अपने मृदा स्वास्थ्य को ठीक करेंगे ही, लेकिन जैविक खेती अपना करके बहुत सारा जो केमिकल हमारा उपयोग होता है जिसमें बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं उस तरह की चीजों से हम बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा किसान भाई जो फसलों का अवशेष है उसको जला देते हैं, उसके जलाने से वातावरण में जो धुआं आता है तो इससे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हम उसी कूड़े करकट को जलाने से रोकते हैं और उसको सड़ा देते हैं तो हमें दोनों तरीके से फसल की भी हमारी ताकत मिलती है और जो हम पर्यावरण खराब कर रहे हैं उसके लिए भी हमारा बचाव होता है। दूसरे तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ पौधे हैं जिनको हम लगाते हैं और उन पौधों को काट करके हम अगर कंपोस्टिंग कर दें और कंपोस्टिंग के तौर पे अगर हम उसका उपयोग कर लेंगे तो भी हम पर्यावरण के लिए बचाने का काम जैव उर्वरक अपना करके कर सकते हैं।
1: यानी अगर हम जैविक खेती करते हैं मृदा का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण भी ठीक रहेगा और मानव स्वास्थ्य का भी इस पे असर पड़ेगा।
0: जी, मानव स्वास्थ्य का देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने अपनी इस विकास की यात्रा में बहुत सारे चीजों के साथ समझौता किया जिसमें हमने अपनी जमीन, पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य को लेकर के समझौता किया। आज किसान जागरूक हो रहे हैं क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि अगर स्वस्थ या रासायनिक रहित अगर हम भोजन करेंगे तो हमारा हम बीमार भी कम होंगे। तो निश्चित रूप से अगर जैव उर्वरक उपयोग करेंगे और जैविक खेती अपनाएंगे तो जमीन का स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों ही चीजों में सुधार होगा जो कि हमारी देश की जरूरत है।
1: जैविक खेती द्वारा जो उत्पादन मिलेगा वो भी तो जैविक होगा।
0: निश्चित रूप से मैं वही कह रहा हूँ कि जो जैविक खेती, जैविक तरीके से जो उत्पादन होगा उसके अंदर जो रासायनिकों की मात्रा नहीं होती है तो हम उसका जब उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर पर उसका दुरुपयोग नहीं होता या दुष्प्रभाव उसके नहीं आते, इससे हम बच सकते हैं और आने वाली जो बीमारियां हैं, कैंसर है, इस तरह की बीमारियों से हमारा स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। और मुझे लगता है कि सरकार ने और किसानों ने अब इसको आगे बढ़ाने की अपनी एक मुहिम चला रखी है और बहुत सारे क्लस्टर हैं। एक और चिंता की विषय यह है कि हमारे जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान भाइयों को उनको व्यापार नहीं मिल पाता, तो व्यापार के लिए भी मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि वो संगठित होकर के क्लस्टर के रूप में अगर जैविक खेती करेंगे तो व्यापार भी वहां होगा, अगर छुटपुट करेंगे तो व्यापार नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मिलकर के खेती को बढ़ाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल कहते हैं कि अगर कोई कार्य आप संगठित होकर करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी।
0: जी,
1: जैविक खेती द्वारा

0: किस तरीके से हमारे किसान भाई अपनी मृदा का स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर आरपीएस यादव जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे अभी ये बातचीत जैविक खेती द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आरपीएस यादव और इनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक रागनी, कलाकार हैं करमपाल शर्मा और उनके साथी, तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: को भाया।
1: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे रागिनी और कलाकार थे कर्मपाल शर्मा और उनके साथी।
2: नीलम बहन, भारत सरकार हमारे युवाओं के लिए बहुत तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इस योजना को यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।
1: बिल्कुल शशि भाई, कौशल विकास योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यता अनुसार रोजगार देना है।
2: बिल्कुल नीलम बहन, तो हमारे जो भी युवा साथी हैं, युवा किसान हैं, और हो सकता है कि अब उनके अंदर कोई ऐसी रुचि जागृत हो गई है जिस क्षेत्र में वो रोजगार हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी कौशल विकास केंद्र में जाकर के अपनी रुचि के अनुसार कोई भी कोर्स चुन सकते हैं और रोजगार हासिल कर सकते हैं। और नीलम बहन, आजकल तो देखिए खेती में ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल होता है, तो ड्रोन पायलट बनने के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी कोर्स चलाया जा रहा है, जिसको पूरा करने के बाद आप ड्रोन के पायलट बन सकते हैं और अच्छा खासा रोजगार हासिल कर सकते हैं। तो नीलम बहन, ये तो बात रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, और अब नीलम बहन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। कहा, शहर को ट्रांजिट नहीं डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर और व्यापार लाइसेंस शुल्क को एकीकृत करने का फैसला किया। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम शुरू किया और राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज पर्यटन हितधारक सम्मेलन 2026 में भाग लिया। इस दौरान पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक पैनल चर्चा हुई। इसमें महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए गए।
2: इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को केवल ट्रांजिट शहर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी विशिष्ट पहचान और पर्यटन क्षमता है। मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली की सबसे बड़ी विशेषता इसका राष्ट्रीय राजधानी होना है। इसी कारण यहां संसद, राष्ट्रपति भवन

0: और शहीद स्मारक जैसे प्रमुख स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं।
1: इस शहर में जिस तरीके से ऐतिहासिक गौरव को संभाल के रखा है, लाल किला मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार से लेकर के मेहरौली किला तक, जो कि लोगों का अट्रैक्शन का एक पॉइंट है। और जब यहाँ की कहानी सुनी जाती है दिल्ली की, तो इंद्रप्रस्थ से लेकर के आज तक की कहानियों में जो प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों के साथ में लोग अटैच होते हैं, लोग उसको देखना चाहते हैं।
0: वहीं श्री मिश्रा ने कहा कि राजधानी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री खुद नेतृत्व कर रही हैं और लगभग हर महीने पर्यटन नीति की समीक्षा भी करती हैं। उन्होंने बताया कि इसी दिशा में दिल्ली सरकार दिल्ली टूरिज्म बोर्ड लाने जा रही है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। श्री मिश्रा ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू करने पर बल दे रही है, जिससे फिल्म शूटिंग और इवेंट्स को बढ़ावा मिलेगा।
2: दिल्ली की जितनी भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है और बाकी दिल्ली में भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, इंफॉर्मेशन सेंटर एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस टर्मिनल पर और प्रोमिनेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन पर कोई दिल्ली टूरिज्म का इंफॉर्मेशन सेंटर फंक्शनल नहीं है। उन इंफॉर्मेशन सेंटर्स को हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक फैसिलिटीज पूरी दिल्ली में बनाई जाए। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, उनमें शानदार दिल्ली की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हुए एंट्री गेट बनाने की जिम्मेदारी भी दिल्ली टूरिज्म कॉरपोरेशन को दी गई है।
0: दिल्ली सरकार का उद्देश्य दिल्ली को एक संगठित, आधुनिक और वैश्विक स्तर का पर्यटन केंद्र बनाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
3: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज सेंट स्टीफंस कॉलेज में वार्षिक विदाई समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि कॉलेज के परिचित गलियारों से गुजरते हुए उन्हें समृद्ध चर्चाओं, कक्षाओं, बहसों और मित्रताओं का याद ताजा हो गई। उपराज्यपाल ने वर्ष 2026 के स्नातक विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें उत्कृष्टता हासिल करने और क्षमता तथा चरित्र के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे कॉलेज की समृद्ध विरासत, बौद्धिकता और विशिष्ट पहचान को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन की नई यात्रा की शुरुआत करें। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज ग्राम कटेवड़ा में फिरनी रोड और आरसीसी नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा यह कार्य सुशासन और अंत्योदय के मंत्र को साकार करता है। श्री सिंह ने कहा कि आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर प्रत्येक नागरिक का जीवन सुगम बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि विकास की धारा बवाना क्षेत्र के सभी गांवों तक पहुंचाई जाएगी। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर और सामान्य व्यापार तथा भंडारण लाइसेंस शुल्क को एकीकृत करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
4: इसके अंतर्गत अब अलग से सामान्य व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी और संपत्ति मालिक विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड यूपीआईसी के माध्यम से संपत्ति कर के साथ ही लाइसेंस शुल्क जमा कर सकेंगे। नई व्यवस्था के अंतर्गत लाइसेंस शुल्क संपत्ति कर का 15% तय किया गया है, जो हर वर्ष कर भुगतान के समय देना होगा। भुगतान की रसीद एक वित्तीय वर्ष के लिए ही वैध डिम्ड लाइसेंस मानी जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी व्यापार संचालकों को अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय का उद्देश्य नागरिकों की सुविधा बढ़ाना, व्यवसाय को सरल बनाना तथा अनुपालन के बोझ को कम करना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है। इसके लागू होने पर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और चिकित्सकों के लिए हर नए मामले की जानकारी जिला कुष्ठ रोग अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। इससे प्रभावी निगरानी, शीघ्र पहचान और मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से समय पर उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। एक रिपोर्ट।
5: इस बीमारी को अनिवार्य सूचना प्रणाली में शामिल करने से इसका शीघ्र पता लगाने और उपचार करने में आसानी होगी, जिससे विकलांगता का जोखिम कम हो जाएगा। साथ ही अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में निगरानी को मजबूत किया जा सकेगा और संपर्क ट्रेसिंग के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकेगा। यह पहल कुष्ठ रोग को एक सामान्य और उपचार योग्य बीमारी के रूप में स्थापित करते हुए उससे जुड़े भेदभाव

0: को कम करेगी तथा उपचार अनुपालन को बेहतर बनाएगी। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मामलों में लगभग 59% भारत में पाए जाते हैं, जिनमें 44% से अधिक मरीज निजी संस्थानों में इलाज कराते हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। इस निर्णय के साथ दिल्ली भी उन राज्यों में शामिल हो जाएगी जहां कुष्ठ रोग अधिसूचित है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह कदम छिपे मामलों की पहचान और बीमारी के नियंत्रण में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राजधानी को कुष्ठ मुक्त बनाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में जन सुनवाई के दौरान नागरिकों की समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
2: जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जनता की अपेक्षाओं को समझने और उनका समाधान करने का प्रभावी माध्यम है। श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर नीतियां और योजनाएं अधिक लोक केंद्रित बनती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शालीमार बाग को आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत सड़कों का सुदृढ़ीकरण, निर्बाध जल आपूर्ति, अटल कैंटीन की स्थापना, आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का विस्तार, वाटर एटीएम, पार्कों का आधुनिकीकरण और बेहतर पार्किंग जैसी सुविधाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, वहीं लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपात स्थिति की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली का परीक्षण आज दोपहर करीब 12 बजे किया गया। नागरिकों के मोबाइल फोन पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है। इसके लिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे।
4: मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम आज के दिन पर किया गया है। एक एक गांव तक, एक एक कस्बे तक लोगों की जान और माल की सुरक्षा निश्चित करने के लिए ये सुविधा बहुत उपयोगी रहेगी। इस सुविधा के लिए ना फोन की डेटाबेस की जरूरत है, ना डेटा सिस्टम की जरूरत है और ये संपूर्ण रूप से ऑपरेटर एग्नोस्टिक है।
3: दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ब्लू लाइन में सुप्रीम कोर्ट से इंद्रप्रस्थ के बीच निर्धारित मरम्मत कार्य के कारण आज रात से कल सवेरे तक कुछ मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगी। कल सुबह कुछ मार्गों पर पहली मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया गया है। वैशाली से द्वारका सेक्टर 21 के लिए पहली रेल सेवा सवेरे 6:05 पर चलेगी। वहीं लक्ष्मीनगर से द्वारका सेक्टर 21 के लिए पहली मेट्रो 6:21 पर शुरू होगी। इसके अलावा यमुना बैंक से द्वारका सेक्टर 21 के लिए पहली मेट्रो सेवा सवेरे 5:50 पर चलाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 3 अलग अलग मामलों में 2 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस ने पूर्वी जिले से एक आरोपी को 1 किलो 900 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में आनंद विहार बस अड्डे के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 280 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। साथ ही एक अन्य मादक पदार्थ मामले में पुलिस ने एक आरोपी को 100 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गाजीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को पूर्वी जिला से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित से सेकेंड हैंड कार बेचने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेकेंड हैंड कार तलाश रहे लोगों को निशाना बनाता था और अग्रिम भुगतान लेकर संपर्क तोड़ देता था। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को संगीतमय राम कथा का विशेष आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रसिद्ध वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास अपनी प्रस्तुति अपने अपने राम प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुति में भगवान श्री राम के जीवन, आदर्शों और मानवीय मूल्यों को संगीतमय शैली में प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को मर्यादा, सत्य और कर्तव्य निष्ठा के मूल्यों से जोड़ना है। राजधानी में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की हैं। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ये सुविधाएं सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार की ओर से बसों और बस स्टॉप पर पानी तथा ORS की व्यवस्था की जा रही है।
5: DTC की बसों में भी पानी उपलब्ध रहे ये व्यवस्था कर रहे हैं। हर बस शेल्टर पे हमारे जल सेवक पानी और ORS के साथ में रहें, ये भी लगातार किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में हीट वेव से रिलेटेड हर मेडिसिन और ट्रीटमेंट उपलब्ध करा दिया गया है। वहाँ कूलिंग एरिया बना करके लोगों को रिलीफ भी दिया जाएगा। स्कूलों में ऑलरेडी ORS और पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं।
1: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत जलदूत पहल शुरू की गई है। इसके अंतर्गत हजरत निजामुद्दीन टर्मिनल, नेहरू प्लेस टर्मिनल और जल विहार टर्मिनल जैसे कुछ स्थानों पर शीतल जल व्यवस्था की गई है। राजधानी में आज दिन के समय धूप तेज रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल दोपहर और शाम के समय हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक छठे ओवर में 1 विकेट पर 53 रन बना लिए थे। कल जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। कहा, शहर को ट्रांजिट नहीं डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर और व्यापार लाइसेंस शुल्क को एकीकृत करने का फैसला किया। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम शुरू किया। और राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में फरहीन इकबाल का पुरखलूस आदाब। सामईन अल्फाज को तरतीब देकर वजन के साथ पेश करने को ही शायरी नहीं कहा जा सकता, बल्कि शायरी में बुलंद ख्याली और रमजियत भी ज़रूरी है। यानी जो बात शेर में कही गई है उसका लहजा शायराना हो, ज़ाहरी तौर पर जो शेर का मफहूम समझ में आ रहा है उसके हकीकी मायने उससे किसी कदर बुलंद हों और कारी या सामع अपने बेदार जहन से फौरन समझ जाए कि शेर में जो बात कही गई है वो किन माने में कही गई है। यही शेर की खूबी भी है। यह भी हकीकत है कि शायरी ऐसा फ़न है कि किसी को सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि ये जज्बात और एहसासात के नतीजे में किसी शख्स पर इल्हाम की शक्ल में उतरती है। वो जज्बात खुशी और मुसर्रत के भी हो सकते हैं और अफसरदगी के भी। समय आइए सुनते हैं मुशायरा। आज के मुशायरे की निजामत कर रही

0: हैं जनाब तसनीफ हैदर।
1: आकाशवाणी के इस मुशायरे में आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं शहबाज रिजवी, उसामा जाकिर, विपुल कुमार और खाकसार तसनीफ हैदर। आइए इस मुशायरे की इब्तिदा करते हैं शहबाज रिजवी साहब के कलाम से। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपना कलाम हम सबको सुनाएं।
2: बहुत शुक्रिया तसनीम भाई। एक गज़ल से चंद अशआर समात करें। धूप ढल जाती है साए पे जवाल आता है, मिटने लगता हूँ तो बनने का ख्याल आता है।
1: वाह,
2: रात कट जाती है आँखों को चरागाह करते, रात कट जाती है आँखों को चरागाह करते, दिन निकलता है तो चेहरे पे जमाल आता है।
3: वाह वाह वाह
2: दिन
1: वाह,
2: निकलता
1: चेहरे
2: है
1: पे
2: तो
1: चेहरे
2: चेहरे
1: पे
2: पे
1: जो
2: जमाल आता है। पहले उड़ता है मोहब्बत के चमन में तन्हा, पहले उड़ता है मोहब्बत के चमन में तन्हा, फिर किसी शाम बहुत हो के निढाल आता है,
1: वाह
2: फिर
1: वाह
2: किसी शाम बहुत हो के निढाल आता है। पहले जम जाता है आँखों के दरीचे में कहीं, फिर मेरे खून में यकदम से उछाल आता है। जंगलों से जो गुजरता हूँ तो आती है सदा,
1: वाह,
2: पेड़ पौधों को भी रोने का कमाल आता
1: बहुत
2: है।
1: खूब शाबाश।
2: मैं चला जाता हूँ सयाद का साथी बनकर,
1: आय है
2: मैं चला जाता
1: जाता
2: हूँ
1: हूँ सयाद
2: सयाद
1: का
2: का साथी
1: साथी बनकर।
2: बनकर, पीछे पीछे मेरे सयाद का जाल आता है।
1: अरे
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह, फिर
2: वाह,
1: से पढ़िए, फिर
2: पीछे
1: से।
2: पीछे
1: वाह,
2: मेरे
1: ये
2: सयाद
1: सयाद
2: का
1: का
2: जाल
1: जाल
2: आता
1: आता है,
2: है।
1: क्या कहने
2: वाह,
1: भाई,
2: मैं चला जाता हूँ सयाद का साथी बनकर,
1: क्या बात है,
2: पीछे पीछे मेरे सयाद का जाल
1: जाल
2: आता
1: आता
2: है।
1: है।
2: धूप ढल जाती है साए पे जवाल आता है, मिटने लगता हूँ तो बनने का ख्याल
1: ख्याल
2: आता
1: आता है।
2: है।
1: वाह
2: वाह
1: वाह, क्या अच्छी गजल है भाई,
2: बहुत शुक्रिया। और एक
1: बहुत
2: गज़ल
1: उम्दा
2: देंगे
1: वाला।
2: कि ऐ मेरी बादे सबा चल तो ज़रा ज़ेरे नगीं,
1: ऐ
2: ऐ
1: मेरी
2: मेरी
1: बादे
2: बादे
1: सबा
2: सबा
1: चल तो जरा
2: चल तो
1: ज़ेरे नगीं।
2: ज़रा ज़ेरे नगीं,
1: वाह
2: शहरे इफ़लाक से लौटे हैं अभी खाक नसीं।
1: क्या बात
2: वाह
1: है,
2: वाह वाह
1: बहुत अच्छे,
2: वाह,
1: बहुत अच्छे।
2: अपने जलने पे हूँ नादिम के मेरे शहर के लोग,
1: अपने जलने पे
2: अपने
1: हूँ नादिम
2: जलने
1: के
2: पे
1: मेरे
2: हूँ
1: शहर के
2: नादिम,
1: लोग।
2: अपने जलने पे हूँ नादिम के मेरे शहर के लोग, बस चिरागों को समझते हैं सितारों को नहीं।
1: क्या बात है भाई,
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: क्या
1: वाह,
2: क्या कहने
1: बहुत
2: भाई,
1: अच्छा,
2: चिरागों
1: बहुत
2: को
1: अच्छा शेर है
2: समझते
1: भाई,
2: हैं सितारों
1: सितारों,
2: को
1: बहुत अच्छा
2: नहीं।
1: शेर है, क्या
2: ये जो
1: शेर,
2: रोने की सदा आती है दीवारों से,
1: ये
2: ये
1: जो
2: जो
1: रोने
2: रोने
1: की
2: की
1: सदा
2: सदा
1: आती
2: आती
1: है
2: है
1: दीवारों
2: दीवारों,
1: से।
2: मेरी आवाज़ पे आवाज़ लगाती हो कहीं, मेरी
1: हाँ,
2: आवाज़ पे आवाज़ लगाती
1: लगाती
2: हो
1: हो कहीं,
2: कहीं, हाथ छूटा तो कलेजे से लगी हिज्र की धूप,
1: हाँ,
2: हाथ
1: छूटा तो
2: छूटा
1: कलेजे से
2: तो
1: लगी हिजर
2: कलेजे
1: की
2: से
1: धूप,
2: लगी हिजर की
1: धूप,
2: धूप, रंग बिखरे तो नजर आई मुझे मेरी जमीं।
1: क्या
2: वाह
1: बात है
2: वाह
1: भाई,
2: वाह,
1: वाह वाह,
2: रंग
1: बहुत
2: बिखरे
1: अच्छा
2: तो
1: शेर है,
2: नजर आई मुझे
1: मेरी
2: मेरी
1: जमीन।
2: जमीं, ख्वाब टूटा तो खुले आँख के शह पर मुझ पे,
1: ख्वाब
2: ख्वाब
1: टूटा
2: टूटा तो
1: खुले
2: खुले
1: आँख
2: आँख
1: के
2: के शह
1: शह
2: पर
1: पर
2: मुझ
1: मुझ
2: पे,
1: पे,
2: नींद आई तो उड़ा दूर खलाओं में कहीं,
1: क्या वाह वाह
2: नींद
1: वाह,
2: आई तो उड़ा दूर खलाओं में
1: क्या
2: कहीं, याद रहता ही नहीं मुझको तेरे घर का पता, ढूंढता फिरता हूँ मैं अपना खुदा अपनी जबीं।
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: बहुत
1: वाह,
2: शुक्रिया। और एक गज़ल देखें कि तहलील हुए जाते हैं आवाज़ के सम में,
1: तहलील हुए जाते हैं
2: तहलील हुए
1: आवाज के
2: जाते
1: सम
2: हैं
1: में,
2: आवाज़ के सम में,
1: टायर
2: तायर तो चले आए थे गंदम के भरम में,
1: तो चले आए
2: हाय
1: थे
2: हाय
1: गंदम के
2: हाय,
1: भरम में।
2: टायर तो
1: वाह वाह,
2: चले आए थे गंदम के भरम में,
1: बहुत अच्छे शाबाश।
2: आवाज़ लगाती है मुझे मेरी खामोशी, आवाज़
1: लगाती
2: लगाती
1: है
2: है
1: मुझे
2: मुझे
1: मेरी
2: मेरी
1: खामोशी,
2: खामोशी, और शोर मचाती है सबा दीदे नम में,
1: क्या
2: वाह
1: बात है,
2: वाह
1: बहुत
2: और
1: अच्छा,
2: शोर मचाती है सबा
1: सबा
2: दीदे
1: दीदे
2: नम
1: नम में।
2: में, तन्हाई चली आई थी एक रोज़ मेरे घर, अब खाक उड़ाती है मेरे दस्ते अलम में,
1: आय है,
2: अब
1: वाह वाह
2: खाक
1: वाह,
2: उड़ाती है मेरे दस्ते अलम में, जो लोग मुझे ढूंढने निकले थे उन्हें अब,
1: जो लोग मुझे
2: जो
1: ढूंढने
2: ढूंढने
1: निकले
2: निकले
1: थे
2: थे
1: उन्हें,
2: उन्हें अब, सब ढूंढने निकले हैं मेरे नक्शे कदम में।
1: अरे वाह,
2: वाह
1: फिर
2: वाह
1: से पढ़िए,
2: वाह
1: वाह
2: वाह,
1: वाह
2: क्या
1: वाह,
2: जो लोग
1: ढूंढने
2: मुझे
1: निकले थे
2: ढूंढने
1: उन्हें,
2: निकले
1: निकले
2: थे
1: थे
2: उन्हें
1: उन्हें अब,
2: अब, सब ढूंढने निकले हैं मेरे नक्शे कदम में,
1: वाह,
2: हम कैसे यहाँ ख्वाब के अंबार लगाते, हम
1: हम कैसे
2: कैसे यहाँ ख्वाब
1: ख्वाब
2: के
1: के
2: अंबार
1: अंबार,
2: लगाते, आंखें तो लगा रखी थी वीरान शिकम में,
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: आंखें तो
1: वाह,
2: लगा रखी थी। और आखिर में गजल और देख लें कि जमी से देखते रहते हैं आसमान का दुख,
1: जमीन से देखते
2: हमारे दुख से बड़ा तो नहीं जहान का दुख,
1: दुख, वाह वाह
2: बदन सराय से आती है बेनवा चीखें,
1: वाह,
2: हमारी रूह में पिन्हा है इस मकान का दुख,
1: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह,
2: हमारी
1: बहुत अच्छा,
2: रूह में पिन्हा
1: पिना
2: है
1: है
2: इस
1: इस
2: मकान
1: मकान
2: का
1: का दुख,
2: दुख, दिखाए फिरते रहो सबको चाक दामानी,
1: दिखाए फिरते रहो,
2: दिखाए फिरते।

0: रहो सब कुछ आँख दामानी, छुपाए फिरते रहो सबसे साहिबान का दुख, छुपाए फिरते रहो सबसे साहिबान का दुख। नशिस्तें ख़त्म हुई और चराग बुझने लगे,
1: नशिस्तें ख़त्म हुई और चराग बुझने लगे,
0: समझ में आएगा किसको चराग दान का दुख। ज़रूरतों के मुताबिक घटे बढ़ाए गए, मकान दिल से जुड़ा है यहाँ जमान का दुख। चढ़ो पहाड़ तो पत्थर भी पांव चूमेंगे, उतरने वाले से पूछो कभी ढलान का दुख।
2: हाय हाय हाय, बहुत अच्छा शेर।
0: चढ़ो पहाड़ तो पत्थर भी पांव चूमेंगे, उतरने वालों से पूछो कभी ढलान का दुख। दरख्त काटने वालों कभी सुनो तो सही, दरख्त काटने वालों कभी सुनो तो सही, परिंदे बोलते रहते हैं बेजबान का दुख। परिंदे बोलते रहते हैं बेजबान का दुख। ये गजल और देख लें। मैं खुश हूँ मेरे पास ये तन्हाई बहुत है,
1: मैं खुश हूँ मेरे पास ये तन्हाई बहुत है,
0: मुझको मेरे होने की ही रुसवाई बहुत है, मुझको मेरे होने की ही रुसवाई बहुत है। उस आँख से कहता हूँ मेरा दिल न टटोले,
1: सांख से कहता हूँ मेरा दिल न टटोले,
0: इस दिल में चुभे तीर की गहराई बहुत है, इस दिल में चुभे तीर की गहराई बहुत है। पत्थर पे उगा रखा है इस दिल का सबूचा, पत्थर पे उगा रखा है इस दिल का सबूचा, खिलने के लिए दर्द को पुरवाई बहुत है, खिलने के लिए दर्द को पुरवाई बहुत है। कब मैंने कहा तुझसे मेरे सर पे रहे हाथ, कब मैंने कहा तुझसे मेरे सर पे रहे हाथ, को तेरे चादर की चौथाई बहुत है। उस शोक के हाथों से जला भी हूँ बुझा भी, अपना है कभी वो कभी हर जाई बहुत है। तुम चाहो तो एक फूल मुझे फेंक के मारो, तुम चाहो तो एक फूल मुझे फेंक के मारो, देखो मेरी मिट्टी अभी पथराई बहुत
1: है।
0: तुम चाहो तो एक फूल मुझे फेंक के मारो,
2: क्या कहने में,
0: देखो मेरी मिट्टी अभी पथराई बहुत है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। जो लोग मुझे ढूंढने निकले थे उन्हें अब सब ढूंढने निकले हैं मेरे नक्शे कदम में। सामईन, अभी आप सुन रहे थे शहबाज रिजवी को, बड़े ही उम्दा अशार से उन्होंने हमें नवाजा। अब मैं यहाँ मौजूद शौरा की इजाज़त से अपना कलाम पढ़ना चाहूँगा। मतला पेश खिदमत है। न तेरे पास कोई संग है न सर साई,
0: न तेरे पास कोई संग है न सर साई,
1: न तेरे पास कोई संग है न सर साई, चला है धुन में मोहब्बत की तू किधर साई, चला है धुन में मोहब्बत की तू किधर साई। निकल के देख कभी वहशतों के सहरा से,
2: निकल के देख कभी
1: वहशतों के सहरा से, तुझे बनाना है सचमुच का एक घर साईं, तुझे बनाना है सचमुच का एक घर साईं। और जरा सी ठेस से मिल जाएगा ये मिट्टी में, जरा सी ठेस से मिल जाएगा ये मिट्टी में, तेरा बदन है कोई कांच का हुनर साईं, और कदम में डूब का खतरा कदम में पार का रंग, कदम में डूब का खतरा कदम में पार का रंग, यही किनारे दरिया यही भंवर साईं, यही किनारे दरिया यही भंवर साईं। और खुद अपने आप को पहचानना जरूरी है, खुद अपने आप को पहचानना जरूरी है, खुद अपने आप से थोड़ी सी बात कर साईं, खुद अपने आप से थोड़ी सी बात कर साईं। और शिकस्ते ज़ात भी उम्दा शिकस्ते दुनिया भी, शिकस्ते ज़ात भी उम्दा शिकस्ते दुनिया भी, मिला है जो भी मोहब्बत के नाम पर साईं, मिला है जो भी मोहब्बत के नाम पर साईं। और एक दूसरी गजल है कि दिल उसी शख्स के ध्यान में है, दिल उसी शख्स के ध्यान में है, वो जो मसरूफ इम्तिहान में है, दिल उसी शख्स के ध्यान में है, वो जो मसरूफ इम्तिहान में है। खूबरूई में खाल खाल एक दिल, खूबरूई में खाल खाल एक दिल, नाक के ऐन दरमियान में है, खूबरूई में खाल खाल एक दिल, नाक के ऐन दरमियान में है। और बात से कबल बुए खुश का हुनर, बात से कबल बुए खुश का हुनर, उन लबों के गुलाब दान में है, उन लबों के गुलाब दान में है। और एक हरे रंग की परी शायद,

0: एक
1: हरे
0: हरे
1: रंग
0: रंग
1: की
0: की
1: परी
0: परी
1: शायद
0: शायद
1: मेरे ख्वाबों के आसमान में है, और एक गुलाबी तरंग का अफसूं,
0: एक
1: एक
0: गुलाबी
1: गुलाबी
0: तरंग
1: तरंग
0: का
1: का अफसूं
0: आसमान
1: उसकी भीगी हुई जबान में है। नींद मेरी मेरा सुकून तसनीफ, नींद मेरी मेरा
0: मेरा
1: सुकून
0: सुकून
1: तसनीफ
0: तसनीफ
1: उसी आगोशे मेहरबान में है। एक गज़ल कुछ यूं है कि किस बहारा से होकर आए थे, किस
0: किस
1: बहारा
0: बहार
1: से
0: से
1: होकर आए थे, कौन
0: कौन सी
1: सी
0: फसल
1: फसल
0: हो
1: हो
0: गए
1: गए हैं
0: हैं।
1: हम, कोई भी ठीक बात कहने पर वाजिबुल कत्ल हो गए हैं हम,
0: वाह वाह वाह वाह
1: कोई
0: वाह
1: भी ठीक बात कहने पर वाजिबुल
0: वाजिबुल
1: कत्ल
0: कत्ल
1: हो
0: हो
1: गए
0: गए
1: हैं
0: हैं।
1: हम। और कुछ भी कहने से डरते रहते हैं, बात इशारों में करते रहते हैं, कुछ भी
0: करते
1: कहने से डरते रहते
0: रहते
1: हैं,
0: हैं बात
1: बात
0: इशारों
1: इशारों
0: में
1: में करते
0: करते
1: रहते
0: रहते हैं।
1: हैं, भीड़ की नजर हो गए हैं हम, खौफ की नस्ल हो गए हैं हम,
0: वाह वाह
1: भीड़
0: वाह
1: की
0: वाह
1: नजर हो गए हैं हम,
0: खौफ की
1: खौफ की
0: नस की
1: नस्ल हो
0: नस्ल
1: गए हैं
0: हो गए
1: हम,
0: हैं।
1: और उसकी सब बददिमागियों पर हम हुस्न को दे रहे हैं बस तरजीह, उसकी
0: सब
1: सब
0: बददिमागियों
1: बददिमागियों पर
0: पर
1: हम
0: हम
1: हुस्न
0: हुस्न
1: को
0: को
1: दे
0: दे
1: रहे
0: रहे
1: हैं
0: हैं
1: बस तरजीह,
0: तरजीह।
1: इश्क तेरी इनायतों से ही दुश्मने अक्ल हो गए हैं हम,
0: वाह वाह वाह वाह
1: इश्क तेरी इनायतों से ही दुश्मने अक्ल हो
0: दुश्मने
1: गए
0: अकल
1: हैं
0: हो गए
1: हम। और
0: हैं।
1: डालियों पर फुदकने वालों को किसने दी है सजाए यकरंगी,
0: वाह डालियों
1: डालियों पर
0: पर
1: फुदकने
0: फुदकने
1: वालों
0: वालों
1: को
0: को
1: किसने
0: किसने
1: दी
0: दी
1: है
0: है
1: सजाए
0: सजाए यकरंगी
1: यकसमती,
0: यकसमती।
1: बंदरों की सिफात वाले थे भेड़ की नकल हो गए हैं हम, बंदरों की सिफात वाले थे भेड़
0: भेड़
1: की
0: की
1: नकल
0: नकल
1: हो
0: हो
1: गए
0: गए
1: हैं हम।
0: हैं।
1: कुछ एक अशार और पढ़
0: क्या
1: देता हूँ। ये गज़ल के चंद अशार यूं हैं कि जुर्म है राहे अदब में ये हुनर पाना भी,
0: जुर्म है राहे
1: राहे
0: अदब
1: अदब
0: में
1: में
0: ये
1: जुर्म
0: हुनर
1: है
0: पाना
1: राहे
0: भी।
1: अदब में ये हुनर पाना भी, अपने बारे में बहुत धीरे से चिल्लाना भी,
0: वाह वाह वाह
1: अपने बारे में बहुत धीरे से चिल्लाना भी।
0: वाह
1: इतना बेफहम हूँ बेरंग हूँ बेफायदा हूँ, इतना
0: इतना
1: बेफहम
0: बेफहम
1: हूँ बेरंग
0: बेरंग
1: हूँ
0: हूँ
1: बेफायदा
0: बेफायदा
1: हूँ,
0: हूँ।
1: कि समझना मुझे बेकार है समझाना भी,
0: बहुत
1: कि
0: अच्छा
1: समझना
0: इतना मुझे
1: मुझे बेकार
0: बेकार है
1: है समझाना
0: समझाना
1: भी,
0: भी।
1: और तुझसे मुमकिन हो तो उस सांस पे कर रक्स बदन,
0: वाह तुझसे
1: तुझसे
0: मुमकिन
1: मुमकिन
0: हो
1: हो तो उस सांस पे कर रक्स
0: रक्स
1: बदन,
0: बदन।
1: जिसको आता हो किसी दीप सा जल जाना भी, जिसको आता हो किसी दीप सा जल
0: जल
1: जाना
0: जाना
1: भी।
0: भी।
1: काहली मेरी तबीयत है अमल इश्क मेरा,
0: वाह
1: काहली
0: काहली
1: मेरी
0: मेरी
1: तबीयत
0: तबीयत
1: है
0: है।
1: अमल इश्क मेरा, कुछ न होने से ही होगा यहाँ हो जाना भी,
0: वाह वाह वाह
1: कुछ
0: वाह
1: न
0: होगा
1: होने से ही होगा
0: यहाँ
1: यहाँ
0: हो
1: हो
0: जाना
1: जाना
0: भी
1: भी।
0: अभी क्या।
1: और ये सलीका ये अदा और ये बातों का रचाओ, ये सलीका
0: ये
1: ये
0: अदा
1: अदा
0: और
1: और
0: ये
1: ये
0: बातों
1: बातों
0: का
1: का रचाओ,
0: रचाओ।
1: तुझसे कुछ जल तो रहा है तेरा दीवाना भी,
0: वाह
1: तुझसे
0: तेरा
1: कुछ जल तो रहा है तेरा दीवाना
0: दीवाना
1: भी।
0: भी।
1: और लहर खाती हुई साड़ी की कसम जाने अदा, लहर
0: वाह
1: खाती
0: खाती
1: हुई
0: हुई
1: साड़ी
0: साड़ी
1: की
0: की
1: कसम
0: कदम
1: जाने
0: जाने
1: अदा,
0: अदा।
1: तेरी पोशाक का एक नाम है पैमाना भी, तेरी पोशाक का एक नाम है पैमाना भी। बहुत शुक्रिया। मैं अब हमारे दरमियान मौजूद उसामा जाकिर साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो अपनी गजल के अशआर सुनाएं।
0: एक गजल से इब्तिदा करता हूँ, पेश खिदमत है।
1: अरशाद
0: अपने नूर को मिट्टी कर और
1: और
0: मेरी
1: मेरी मिट्टी
0: मिट्टी
1: पानी
0: पानी
1: कर,
0: कर। मौला मेरी मूरत को 16
1: 16 आने
0: आने मनमानी कर।
1: मेरा
0: और मेरा नाम ठिकाना हो
1: नाम ठिकाना हो,
0: सब खुश आवाज़ परिंदों का।
1: क्या बात है, मेरा
0: मेरा
1: नाम
0: नाम
1: ठिकाना
0: ठिकाना
1: हो,
0: हो मेरा नाम ठिकाना हो
1: सब
0: सब
1: खुश
0: खुश
1: आवाज
0: आवाज़
1: परिंदों
0: परिंदों
1: का। हाँ
0: का। मेरी जात को जंगल कर और जंगल कोहिस्तानी कर।
1: क्या बात है
0: बहुत
1: भाई,
0: अच्छा।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: वो मेरा होना
1: मेरा
0: अपने होने की पहचान बनाकर गूंद।
1: मेरा होना अपने होने की पहचान
0: पहचान
1: बनाकर
0: बनाकर
1: गूंद,
0: गूंद। मेरा होना अपने
1: अपने हो
0: होने की पहचान बनाकर गूंद। मेरी मिट्टी चाक पे धर और कुन की कारस्तानी कर।
1: क्या बात है भाई,
0: बहुत
1: वाह
0: अच्छा
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है।
0: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद। मेरी मिट्टी चाक पे धर
1: क्या बात है,
0: और कुन की कारस्तानी कर। और क्या तेरा दिल बहलाएगी सूखे घुटनों की चटपट।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या तेरा दिल
0: क्या
1: बहलाए
0: तेरा दिल बहलाएगी
1: सूखे
0: सूखे
1: घुटनों
0: घुटनों
1: की
0: सूखे
1: चटपट।
0: घुटनों की चटपट। मन में प्रेम का रस भर मौला हर सजदा नूरानी कर।
1: क्या बात है,
0: वाह,
1: बहुत ही अच्छे भाई, वाह
0: मन
1: वाह।
0: में प्रेम का रस भर मौला,
1: हर
0: हर
1: सजदा
0: सजदा
1: नूरानी,
0: नूरानी कर। और या तो कम कर दिल की तह में हर एक चाह की गहराई,
1: हाय हाय हाय, चाह की गहराई का जवाब दे। वाह वाह
0: और या तो कम कर दिल
1: वाह,
0: की तह में
1: हर एक
0: हर एक
1: चाह
0: चाह की
1: की गहराई,
0: गहराई, या फिर मेरे तन के भीतर दमखम भी लाफानी
1: क्या बात है
0: कर।
1: भाई, वाह
0: दमखम,
1: वाह वाह।
0: या तो कम कर दिल की तह में हर
1: हर एक
0: एक
1: चाह
0: चाह की
1: की गहराई,
0: गहराई, या फिर मेरे तन के भीतर दमखम भी
1: लाफानी
0: लाफानी
1: कर,
0: कर। और पीले रेगिस्तान से सुनकर नीले पानी की गाथा,
1: पीले रेगिस्तान से सुनकर,
0: पीले रेगिस्तान से सुनकर
1: नीले पानी
0: नीले
1: की
0: पानी की
1: गाथा।
0: गाथा, चिकनी चिकनी मिट्टी चीख रही है बाबा खत्म कहानी कर।
1: चिकनी मिट्टी चीख रही है,
0: चिकनी मिट्टी चीख रही है
1: बाबा
0: बाबा
1: खत्म
0: खत्म
1: कहानी
0: कहानी कर। एक और गजल के कुछ
1: जी बाबा,
0: शेर,
1: ऐसा फरमाए।
0: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूं मैं,
1: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूं मैं,
0: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूं मैं, सूखी आंखों में पानी भरने वाला हूं
1: क्या
0: मैं।
1: बात है भाई,
0: वाह,
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूं,
1: एक नदी के तूफानों
0: तूफानों
1: का
0: का
1: चौकीदार
0: चौकीदार,
1: भी
0: एक
1: हूँ,
0: नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूं, एक जंगल के आसेबों का रखवाला हूं मैं,
1: आए वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा,
0: एक
1: फिर से
0: नदी के
1: पढ़िए।
0: तूफानों का चौकीदार भी
1: वाह
0: हूं,
1: वाह,
0: एक जंगल के आसेबों का रखवाला हूं मैं, और मेरे ख्वाब की कोख से जन्मी तू नवजात शिशु,
1: आया है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
0: मेरे
1: मेरे
0: ख्वाब
1: ख्वाब
0: की
1: की
0: कोख से जन्मी
1: तू
0: तू
1: नवजात,
0: नवजात शिशु, तेरी किलकारी से फूट रही ज्वाला हूं
1: क्या बात है,
0: मैं,
1: वाह वाह वाह, बहुत
0: तेरी
1: अच्छा, क्या
0: किलकारी
1: जबान है,
0: से
1: वाह
0: फूट
1: वाह,
0: रही ज्वाला हूं मैं,
1: क्या बात है।
0: और मेरी आंख में टूटने वाली एक किरण है तू,
1: मेरी आंख
0: मेरी
1: में
0: आंख
1: टूटने वाली
0: मेरी आंख में टूटने वाली एक
1: एक
0: किरण
1: किरण
0: है
1: है
0: तू,
1: तू, वाह,
0: तेरे ख्वाब में गढ़ने वाला एक भाला हूं
1: हाय हाय, वाह वाह,
0: मैं,
1: फिर से पढ़िए, वाह वाह वाह वाह,
0: मेरी आंख में टूटने वाली एक किरण है तू,
1: वाह,
0: तेरे ख्वाब
1: ख्वाब
0: में
1: में
0: गढ़ने
1: गढ़ने वाला
0: वाला
1: एक
0: एक
1: भाला
0: भाला हूं
1: हूँ।
0: मैं। और एक और गजल के चंद शेर,
1: जी,
0: अपने तेवर थाम संवरिया,
1: ने तेवर थाम सवरिया,
0: कांप कांप बल खाए सड़क,
1: क्या बात है, अपने
0: अपने
1: ते
0: तेवर
1: तेवर
0: थाम
1: थाम सवरिया,
0: संवरिया,
1: कांप कांप बल,
0: कांप कांप बल खाए सड़क, चलने वाली तेरी चाल पे जालिम मर ना जाए सड़क।
1: क्या बात है भाई,
0: वाह,
1: वाह।
0: और पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में धूल,
1: पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में
0: पड़े
1: धूल,
0: पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में धूल, रात को एक साए के पीछे पीछे चलती जाए
1: हाय हाय, वाह
0: सड़क।
1: वाह वाह, क्या बात है।
0: और चलते चलते सोच रहे हो,
1: चलते चलते सोच रहे हो,
0: चलते चलते मत सोचो,
1: वाह वाह वाह, चलते चलते सोच रहे हो, चलते चलते मत सोच,
0: चलते चलते सोच रहे हो,
1: चलते चलते मत
0: चलते
1: सोचो,
0: चलते मत सोचो, सोच की अंधियारी खाई में गिरकर डूब न जाए सड़क।
1: क्या बात है भाई,
0: वाह,
1: वाह वाह वाह,
0: सोच की अंधियारी खाई में गिरकर डूब न जाए सड़क, और दीवानों को चूमने वाले,
1: दीवानों को चूमने वाले,
0: दीवारों को चूमने
1: दीवारों,
0: वाले तुझ पर कमरे तारी हो,
1: दीवारों को चूमने वाले तुझ पर कमरे
0: कमरे
1: तारी हो,
0: तारी,
1: वाह, तुझ
0: दीवारों को चूमने वाले तुझ
1: पर
0: पर कमरे तारी हो, घर को लौटने वाले तुझको रस्ते में मिल जाए सड़क।
1: क्या बात है,
0: वाह
1: वाह
0: भाई
1: वाह
0: साहब,
1: वाह,
0: वाह,
1: बहुत अच्छे भाई,
0: घर
1: क्या
0: को
1: बात,
0: लौटने
1: क्या
0: वाले
1: लहजा है, वाह,
0: तुझको रस्ते में मिल
1: मिल
0: जाए
1: जाए
0: सड़क।
1: सड़क, हाँ,
0: एक और गजल है, दुनिया भर से ऊब गए हो आओ पधारो
1: दिल हारो, वाह वाह
0: दिल
1: वाह,
0: हारो,
1: क्या बात है, बहुत अच्छी गजल है,
0: दुनिया भर से ऊब गए हो
1: आओ पधारो,
0: आओ पधारो
1: दिल
0: दिल दिल
1: हारो,
0: हारो, खुद से भी बेजार हुए हो
1: क्या बात है,
0: मौका मारो
1: दिल हारो,
0: दिल
1: वाह
0: हारो।
1: वाह, बहुत
0: वाह
1: अच्छे भाई, वाह
0: वाह,
1: वाह वाह,
0: और हर बंदूक की काली नाल के अंदर रख के लाल गुलाब,
1: क्या बात है, हर बंदूक की काली
0: हर
1: नाल,
0: बंदूक की काली नाल के अंदर रख के लाल
1: लाल गुलाब,
0: गुलाब, हर अंधी सरहद की आंख में गोली मारो,
1: वाह वाह,
0: दिल
1: दिल
0: हारो।
1: हारो, क्या
0: बहुत
1: बात है भाई,
0: अच्छी,
1: वाह वाह,
0: बहुत अच्छी।
1: कमाल की गजल है, क्या शेर
0: जो
1: है।
0: भी धड़कता दिल मिल जाए उससे टूट के प्यार करो।
1: है,
0: वाह वाह,
1: जो भी धड़कता दिल।

0: जाए।
1: जो भी धड़कता दिल मिल जाए उससे टूट के प्यार करो, ख्वाब भरी सारी आंखों की नजर उतारो,
0: दिल हारो,
1: और दिन निकले तो सूरज की हर एक किरण का मुंह चूमो।
0: क्या बात है, वाह वाह, दिन निकले तो
1: सूरज की हर एक किरण का मुंह चूमो, और रातों को चांद का कोमल नूर निहारो,
0: दिल हारो। वाह वाह वाह, क्या बात है, उसमें कमाल।
1: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है।
0: क्या बात, सच्चाई है बिल्कुल, वाह।
1: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है, दुनिया एक है दुनियादारो, इसे संवारो, दिल हारो। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है, दुनिया एक है दुनियादारो, इसे सवारो, दिल हारो। सामईन, आप सुन रहे थे अभी उसामा जाकिर को, जिन्होंने बड़े कमाल के अशआर सुनाए, और उनका लहजा आपने महसूस किया होगा कि बेहद मुनफरिद था। अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे दरमियान मौजूद इस महफिल के आखिरी शायर जनाब विपुल कुमार से कि वो अपने कलाम से हमें महसूस फरमाए
2: कुछ शेर।
0: इरशाद।
2: खाने सोखते दिल का मकीन कोई नहीं,
0: खाने सोखते दिल का मकीन,
2: खाने सोखते दिल का मकीन कोई नहीं, तू नहीं है तो मेरे शोला नशीन कोई नहीं।
0: क्या
1: बात, वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: तू नहीं है तो मेरे शोला नशीन
0: कोई नहीं, क्या बात है, वाह वाह।
2: चांद चेहरे भी चमकते हैं गुलो सुंबुल भी,
0: चांद चेहरे भी चमकते हैं,
2: चांद चेहरे भी चमकते हैं गुलो सुंबुल भी, तेरी दुनिया में मगर दिल सा नगी कोई नहीं। एक आवाज लगाता हूँ कोई है भी यहाँ,
0: एक आवाज लगाता हूँ,
1: एक आवाज लगाता,
2: एक आवाज लगाता हूँ कोई है भी यहाँ, एक आवाज सी आती है कहीं कोई नहीं।
0: क्या बात है, वाह वाह, क्या शेर है, बहुत अच्छा।
2: एक आवाज लगाता हूँ कोई है भी यहाँ,
0: बहुत अच्छा।
2: एक आवाज सी आती है कहीं कोई नहीं,
0: वाह वाह वाह।
2: एक आलम है फरावानी मर्दुम से मगर,
0: एक
2: आलम है फरावानी मर्दुम से मगर, मैं जहाँ जिसको बुलाता हूँ वहीं कोई नहीं।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह।
2: मैं जहाँ जिसको बुलाता हूँ वहीं कोई
0: नहीं। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह।
2: सवाद शाम में सब वैशियों का जलसा हो,
0: सवाद शाम में सब वैशियों का जलसा,
2: सवाद शाम में सब वैशियों का जलसा हो, लहू का राग हो और सुरतराज प्यासा हो। सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां उसकी,
0: सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां,
2: सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां उसकी, इस एतमाद से जैसे किसी ने देखा हो। सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां उसकी, इस एतमाद से जैसे किसी ने देखा हो।
0: क्या बात है, वाह वाह।
2: किसी के होंठ सुरों में कलाम करते हूँ,
0: किसी के होंठ सुरों में कलाम करते,
2: किसी का रंज उदासी की तान लेता हो, किसी कनार की खुशबू से शेर खुलने लगे कि बात बात नहीं हो बस एक इशारा हो।
0: क्या बहुत अच्छा।
2: अब आ गए हैं कि आखिर तेरी गली का भरम,
0: अब आ गए हैं कि,
2: अब आ गए हैं कि आखिर तेरी गली का भरम, कहीं किवाड़ की दस्तक ही से न खुलता हो। अब आ गए हैं कि आखिर तेरी गली का भरम, कहीं किवाड़ की दस्तक ही से न खुलता हो।
0: क्या जबान है, बहुत अच्छे भाई।
2: मैं ये समझ के रगे गुल से बात करता हूँ,
0: मैं ये समझ के रगे गुल से बात करता,
2: मैं ये समझ के रगे गुल से बात करता हूँ, कोई तो बाग में मेरा हिसाब लिखता हो।
0: बहुत अच्छा।
2: इस धमक से तू अगर पाँव रखेगा मुझ में,
0: इस धमक से तू अगर पाँव रखेगा मुझ में,
2: इस धमक से तू अगर पाँव रखेगा मुझ में, फिर कोई चश्मा नया फूट बहेगा मुझ में। क्यों न कुछ शोर उठाऊं कि वो खामोश मिजाज,
0: क्यों न कुछ शोर उठाऊं कि वो खामोश,
2: क्यों न कुछ शोर उठाऊं कि वो खामोश मिजाज, बे इरादा ही सही ध्यान तो देगा मुझ में। क्यों न कुछ शोर उठाऊं कि वो खामोश मिजाज, बे इरादा ही सही ध्यान तो देगा मुझ में। घर में चलते हुए डरता हूँ कि कोई साया आके टकराएगा और आ ही बसेगा मुझ में। घर में चलते हुए डरता हूँ कि कोई साया आके टकराएगा और आ ही बसेगा मुझ में।
0: बहुत अच्छे।
2: इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से,
0: इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से,
2: इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से, सैर अच्छी है मगर कौन रहेगा मुझमें,
0: क्या बात है,
2: वक्त झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर,
0: वक्त झाड़ेगा नए हिजर के,
2: वक्त झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर, और एक लम्हा कोई आन गिरेगा मुझमें, और एक लम्हा कोई आन गिरेगा,
1: दोबारा पढ़ो यार, बहुत अच्छा,
2: वक्त झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर, और एक लम्हा कोई आन गिरेगा मुझमें, एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर,
0: एक ही बुत से निकल जाएगा,
2: एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर, सांस में नाद जो अटका है बजेगा मुझ में,
0: आए हैं, वाह वाह वाह, क्या बात, फिर से बड़ी, वाह वाह,
2: एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर,
0: आए हैं,
2: सांस में नाद जो अटका है बजेगा मुझ में,
0: क्या बात है,
2: मेरे नाजुक मेरी मिट्टी पे बहुत रक्स न कर,
0: मेरे नाजुक
2: मेरी मिट्टी पे बहुत रक्स न कर, ध्यान की रुत है कोई फूल खिलेगा मुझ में, आंखों की स्याही बरती है ख्वाब रकम करने के लिए,
0: आंखों की स्याही बरती है ख्वाब रकम करने के लिए,
2: आंखों की स्याही बरती है ख्वाब रकम करने के लिए, इस पर भी वो कहता है कम है सुरमे की कलम करने के लिए, मेरे खुश्क बदन की ख्वाहिश में कई बादल उड़ते फिरते हैं, मेरे खुश्क बदन की ख्वाहिश में कई बादल उड़ते फिरते हैं, कई नदियां बहती रहती हैं मेरी खाक को नम करने के लिए, कई नदियां बहती रहती हैं मेरी खाक को नम करने के लिए, तू किन बागों का हुस्न लिए इस तपती रेत पे बैठा है, तू किन बागों का हुस्न लिए इस तपती रेत पे बैठा है, ऐ आहुए मस्ती होश में आ एक दश्त है रम करने के लिए, कहता है वो जालिम सब्र करो क्या तेग के नीचे गर्दन है,
0: कहता है वो जालिम,
2: कहता है वो जालिम सब्र करो क्या तेग के नीचे गर्दन है, और एक इशारा होता है मुझे गर्दन खम करने के लिए, बहुत
0: शुक्रिया। सामईन, आप सुन रहे थे विपुल कुमार को, इसी के साथ ये मुशायरा अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ता है, और हमारे साथ मौजूद थे जनाब शहबाज रिजवी, जनाब उसामा जाकिर और जनाब विपुल कुमार, साथ में खाकसार तसनीफ हैदर। उम्मीद है कि आपको ये मुशायरा पसंद आया होगा, शुक्रिया।
3: सामईन, अभी आप मुशायरे से महजूज हो रहे थे, मुशायरे की निजामत कर रहे थे जनाब तसनीफ हैदर। इसी के साथ अपनी मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओ, अब सुनते हैं फिल्म संगीत। मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में। आइए चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की तरफ। तेरी दोस्ती हम इस तरह निभाएंगे, तेरी दोस्ती हम इस तरह निभाएंगे, तुम रोज खफा होना हम रोज मनाएंगे, पर मान जाना मनाने से, वरना ये भीगी पल के लेके हम कहाँ जाएंगे।

श्रोताओं, जो आपने ये गीत सुना वो हमने लिया था फिल्म जो जीता वही सिकंदर से, और आवाज जतिन जी की थी। आइए चलते हैं अगले नगमे की तरफ। कुछ अधूरी चीजें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। अब चांद को ही देख लो।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म जख्म से और आवाज अलका याग्निक जी की थी। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे।

0: पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
2: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,52,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
3: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज CDOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस CDOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी

0: एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीबीएस का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
2: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम सीबीएस सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है, जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक एसएमएस आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है, जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: आपदा को हम अवसर में बदलें, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
4: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड़ और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की, जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
5: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक

0: Formula One for 5 seasons and achieved a best finish of 6th at the 1993 Brazilian Grand Prix before a major crash in 2001 resulted in both his legs being amputated. The racing legend recovered from his life-changing operation to become a Paralympic champion, first competing in the London Games in 2012 and claiming 2 gold medals in the paracycling category before 2 more followed in Rio de Janeiro 4 years later. The Board of Control for Cricket in India today announced the Indian women's squad for the ICC Women's T20 World Cup 2026. Harmanpreet Kaur will lead the side with Smriti Mandhana named as vice-captain. The tournament will be hosted by England beginning on the 12th of June, with the final scheduled at Lord's Cricket Ground on the 5th of July. India's 15-member squad features a strong batting lineup, including Shefali Verma, Jemima Rodrigues, Bharati Phulmali and Richa Ghosh. Yastika Bhatia and Radha Yadav have returned to the side, while uncapped pacer Nandini Sharma has earned a surprise call-up. In IPL cricket, Mumbai Indians were 142 for 6 in 18 overs against Chennai Super Kings at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai when reports last came in. Earlier, Mumbai Indians won the toss and opted to bat. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Mahe, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. Thunderstorms and hailstorms will prevail over Ladakh and Jammu and Kashmir tomorrow, Delhi, Bihar, Punjab, Haryana, Chandigarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Rayalaseema, Uttarakhand, Vidarbh and West Bengal will experience thunderstorms and lightning for the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Nearly 90% voter turnout recorded in re-polling at 15 booths of 2 assembly constituencies of West Bengal. Counting of votes on Monday for assembly polls in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and Puducherry. Election Commission deploys additional counting observers and police observers in West Bengal. Government launches cell broadcast system to strengthen India's emergency communication systems and enhance public safety infrastructure. 4 security personnel killed in an IED blast near Kanker Narayanpur district border in Chhattisgarh. Renowned lyricist Prasoon Joshi appointed chairman of Prasar Bharati. And in cricket, BCCI announces Indian squad led by Harmanpreet Kaur for ICC Women's T20 World Cup. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शगुफ्ता यास्मीन। मगरबी बंगाल में 2 असेंबली हलकों के 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग में तकरीबन 90% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती पीर के रोज होगी। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के लिए इजाफी मुशाहिद और पुलिस मुशाहिद मुतायन किए हैं। सरकार ने मुल्क के इमरजेंसी मुआसलाती निजाम को मुस्तहकम बनाने और पब्लिक सेफ्टी बुनियादी ढांचे को वसूत देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट निजाम का आगाज किया है। छत्तीसगढ़ में कानकेर नारायणपुर जिला सरहद के नजदीक देसी साख्त के एक बम धमाके में 4 सिक्योरिटी अहलकारों की मौत हो गई है। नामवर नगमा निगार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने आईसीसी खवातीन टी20 वर्ल्ड कप के लिए हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय खवातीन टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में जुनूबी 24 परगना जिले में आज 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग में तकरीबन 90% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इनमें मगराहाट पश्चिम हलके में 11 बूथ जबकि डायमंड हार्बर हलके के 4 बूथ शामिल हैं। दोनों असेंबली हलकों में दोबारा पोलिंग बड़ी हद तक पुरअमन रही। मुतालिका रिटर्निंग अफसरों और मुशाहिदीन की तरफ से मौसूला रिपोर्ट की बुनियाद पर इंतखाबी कमीशन ने वहां दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। इन पोलिंग मराकज पर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती पीर के रोज होगी। असम में सभी 100

बैंक ऑफ इंडिया के तहत आने वाले बैंकों को कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आज गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक इंडियन इंस्टीट्यूट के 63वें यौमे तासीस के मौके पर कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने भारत के बैन अल्कवामी तिजारती और मैनेजमेंट मंजरनामे के फरोग में मजकूरा इदारे की मुसलसल शानदार कारकर्दगी को सराहा और इदारे को मुबारकबाद दी। वजीर मौसूफ ने आलमी तिजारत में पॉलिसी तहकीक और सलाहियत साजी में एक सरकर्दा इदारे के तौर पर उसके रोल को भी उजागर किया। भारतीय रेलवेज ने रेलवे पुल से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और मेट्रो रेल पावर निजाम को वसत देने की खातिर 895 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे और सलाहियत बढ़ाने के अहम प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। अर्जियाती साइंस के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने आज आवाम को यकीन दहानी कराई है कि मई के महीने के दौरान गर्मी में तेजी आने की वजह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब सिंह ने कहा कि कुछ खित्तों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रह सकता है और गर्मी में शिद्दत आ सकती है, लेकिन मुल्क भर में मौसम एक जैसा नहीं रहेगा। आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप 2026 के लिए भारतीय खवातीन टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत कौर कप्तान होंगी, जबकि स्मृति मंधाना को नायब कप्तान बनाया गया है। इंग्लैंड की मेजबानी में यह टूर्नामेंट 12 जून से शुरू होगा और इसका फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। 15 रुकनी भारतीय टीम में शिफाली वर्मा, जमेमा रॉड्रिग्स, भारती फुलमाली और ऋचा घोष शामिल हैं। बैडमिंटन में आज डेनमार्क के हॉर्सन्स में थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में मर्दों की भारतीय टीम का मुकाबला फ्रांस से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मगरबी बंगाल में दो असम्बली हलकों के 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग में तकरीबन 90% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और पुदुचेरी में असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती पीर के रोज होगी। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के लिए इजाफी मुशाहिद और पुलिस मुशाहिद मुतय्यन किए हैं। सरकार ने मुल्क के इमरजेंसी मवासलाती निजाम को मुस्तहकम बनाने और पब्लिक सेफ्टी बुनियादी ढांचे को वसत देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट निजाम का आगाज किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर नारायणपुर जिला सरहद के नजदीक देसी साख के एक बम धमाके में 4 सिक्योरिटी एहलकारों की मौत हो गई। नामवर नगमा निगार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने आईसीसी खवातीन टी20 वर्ल्ड कप के लिए हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय खवातीन टीम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

करूं,

कुछ दर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय

0: बताइए बताइए
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी और तुमसे
0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो,
1: ना, ना,
0: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।

قبل أن يأتي الحمام، فاغتنم حظك فيه.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि फलता विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को हुए मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना क्षेत्र कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय मौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालासुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़वाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 1:10 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम।

0: Anil! Idhar aao na. उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है। फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

अभी आपने गीत सुना फिल्म अर्पण से, 1982 में आई फिल्म, स्वर लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर के, और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। गीत सुनहरे कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म रिफ्यूजी।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए यह धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

अभी आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक को फिल्म रिफ्यूजी में। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में अगला गीत फिल्म तुम बिन से।

आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। अभी आपने गीत सुना कोई फरियाद जगजीत सिंह के स्वर में फिल्म तुम बिन से, और आइए आप सुनते हैं जीत फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में अगला गीत।

श्रोताओं माफी कीजिएगा कि जो शब्द बोल मैंने आपके बताए थे कि चोरी चोरी आप मेरे दिल के मेहमा हो गए, वो गीत नहीं, गीत जो आप सुन रहे हैं ये गीत है फिल्म आखिरी बाजी का अमित कुमार और साधना सरगम की आवाज़ में। अपनी भूल के लिए हम माफी चाहते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये आखिरी गीत फिल्म हीरो हिंदुस्तानी से दीवाना दीवाना मैं तेरा, शब्द के बोल कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम हमारा समाप्त होगा और मुझे आपसे लेनी होगी अनुमति। इतना कहना चाहूँगा कि अपना अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी में प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्त मोहन को याद रखिए, साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे गीत सुनहरे कार्यक्रम। श्रोताओं, रात्रि के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल है, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए देखा गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमाल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालासुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर,

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 और ठीक 35 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार, जिसमें आप सुनेंगे बेहतरीन फिल्म संगीत, फिल्मी गीत लगातार एक के बाद एक बिना रुकावट के।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है। इस गीत के साथ गीत बहार कार्यक्रम संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरी के जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बाला सुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र पर दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला एलपीजी वाहक पोत एमटी सर्वशक्ति, जिसमें भारत के लिए 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है, होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 13 मई को इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani.

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3:10 हो चुके हैं। ये वक्त होता है कार्यक्रम गीत और गजलों का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गोदवाद्यम उषा विजय कुमार, कलाकार हैं, और रागम है चारुकेसी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म कर्नाटक म्यूजिक। इस कार्यक्रम में आपने सुना गो टू वैद्यम, उषा विजय कुमार कलाकार थी और रागम था चारू केसी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 मई 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। आइए सुनते हैं कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में यानी 5 बजे होंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे। 5:10 पर कार्यक्रम आओ योग करें में आज अश्वथासन और तितली क्रिया के बारे में जानेंगे। 5:20 पर हिंदी देशभक्ति गीत होंगे और 5:30 पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कार्यक्रम स्वर रंजनी में आप सुनेंगे बेमल मुखर्जी का सितार वादन राग भतियार में। सुबह 6:10 पर कार्यक्रम वंदना होगा और 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन। श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ आप सुनेंगे 6:45 पर और 6:55 पर होंगे संस्कृत में समाचार। सात बजकर 10 मिनट में संगीतिका में आज आप सुनेंगे भजन बाय ऐश्वर्या आनंद का। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर और साहित्यिकी होगा 8:45 पर। हमारे अतिथि डॉक्टर दीविक रमेश की ये भेंट वार्ता और प्रस्तुति होगी, भेंटकर्ता और प्रस्तुति करनी होगी काजल सूरी की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर से इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों को उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप

0: ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरे की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उससे विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 202 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने रोहित जैन को रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the repolling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. Repolling remained

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारे कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए,

थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी के जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें, चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई कंप्यूटर कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो

印度特里广播电台，现在我们播送禅宗故事，题目是猫头，一诗歌和书法。